मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

भोर की किरणों ने छेड़ा है नया मधुर राग, गर्मी की इस सुबह में छिपा है जीवन का अनुराग। दिन भले ही तपन लेकर आए पर उसकी शुरुआत हमेशा शीतलता, आशा और उत्साह से होती है।

नमस्ते लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए

लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। धरती की गोद में सपनों को बोता है किसान, अपनी मेहनत से हर सूनी रात संजोता है किसान। अपने इन्हीं किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार राय से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां जायद की फसलें आपके खेत में खड़ी हैं तो उनमें कीट रोग प्रबंधन इस समय कैसे करें, क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि रक्षा विशेषज्ञ अरुण कुमार राय साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। राय साहब, ये बताएं कि इस समय जो जायद की फसलें हैं तो इनमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
2: किसान भाइयों नमस्कार। मुख्य रूप से जिन फसलों की बात हुई है जायद की, इनमें कीट और रोग इनके प्रबंधन बेहद आवश्यक होते हैं। सामान्यतया अगर बीमारियों की बात करें, पर्णीय बीमारियों में जो आएंगे इसमें फोमा दाग और अल्टरनेरिया बीमारी होती है, अगेती झुलसा जिसको बोलेंगे, और इसके अलावा चूड़िल आशिता, मृदुरोमिल आशिता, ये दो अन्य मुख्य बीमारियों में आएंगे। तो ये मुख्य रूप से बीमारियां हैं जो हमारे इस क्षेत्र में आती हैं और जिनके नियंत्रण के लिए हमें बचावकारी छिड़काव करने आवश्यक हो जाते हैं, अन्यथा उत्पादन पर असर आते हैं।
1: इसी तरह कुछ हानिकारक कीट भी हैं जो अपनी दुश्मनी करते हैं।
2: सामान्यतया कीटों को अगर देखें तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक रस चूसक कीट जो पौधे से रस चूसते हैं, जिसमें व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी जिसको बोलते हैं। दूसरे काटने और चबाने वाले कीट, कटवर्म, जिसमें हेलियोथिस या स्पोडोप्टेरा या लेपिडोप्टेरियन सारे पेस्ट आते हैं, जो भी काटते हैं और चबाते हैं, पत्तियों को खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।
1: तो शुरुआत करें कि सफेद मक्खी, इस हानिकारक कीट का प्रकोप चाहे वो उर्द मूंग है या अन्य फसलें हैं उन पर होता ही होता है।
2: इसका उर्द मूंग, मूंगफली और सूरजमुखी सभी फसलों पर इसका प्रभाव होता है और यह कीट दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। एक तो पौधे का रस चूसकर उसके भोजन लेके नुकसान पहुंचाता है और दूसरा यह कीट वाहक है बीमारी, वायरस जनित बीमारी का,
1: जैसे पीला सिरा मोज़ेक
2: या लीफ कर्ल वायरस जिसको पत्ती मोड़ने वाला मोज़ेक बोलेंगे या वायरस बोलेंगे, तो उसका वाहक भी होता है। इसलिए इसका नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए जब भी किसान भाई खेत में जाएं, पौधे को हल्का सा हिलाएं, अगर कुछ उड़ता हुआ दिखता है सफेद सा,
1: छोटा छोटा
2: नन्हा नन्हा खेत में उड़ता हुआ, दिन में जब आप पौधे को हिलाएंगे कहीं से भी घुस के, तो तत्काल इसके नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अन्यथा एक बार अगर मोज़ेक फैल गया तो उसका

0: कोई नियंत्रण नहीं है और आज तक बाजार में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं उसके लिए।
1: तो सुरक्षात्मक छिड़काव में क्या करें?
0: सुरक्षात्मक छिड़काव में हम कुछ आसानी से उपलब्ध दवाएं बाजार में हैं, जैसे इमिडा क्लोरोप्रिट 17.8%, 17.8% इमिडा क्लोरोप्रिट, 100 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं
1: जी।
0: या अगर ज्यादा परेशानी है, ज्यादा कीटों का प्रकोप है, तो डाइनोटे फ्यूरान 20% ESG
1: जी
0: आता है दानेदार,
1: हाँ।
0: इसको थोड़े से पानी में, 1 ग्लास पानी में घोल बना लें और फिर इसको 10 ग्लास पानी में घोल बढ़ा दें, उसमें 9 ग्लास पानी और मिला के
1: जी।
0: और 10 टंकी से 1 एकड़ खेत में छिड़काव करें, इससे बेहतरीन नियंत्रण हो जाएगा सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों का।
1: और अगर पहली बार इमिडा क्लोप्रेट का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी बार दूसरी दवा का प्रयोग कर दें?
0: हाँ, हमेशा दवा अदल बदल कर प्रयोग करें, इससे दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता डेवलप नहीं कर पाते कोई भी कीट हो या बीमारी। यह हमेशा किसान भाइयों को सलाह रहेगी कि दवाओं को अदल बदल कर प्रयोग करें।
1: राय साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94509-322-36, 94509-32-236, 94509-32-236। हानिकारक कीटों के लिए रस चूसक के लिए हमने इमिडा क्लोरोप्रिड बोला है, और अगर काटने चबाने वाले कीट हैं तो उसके लिए इमेमेक्टिन बेंजोएट बाजार से ले लें 100 ग्राम प्रति एकड़ और प्रयोग कर दें, तो काटने चबाने वाले कीटों का भी नियंत्रण किया जा सकता है।
1: अरुण कुमार राय साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप डॉक्टर अरुण कुमार राय से की गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय था जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़, और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। जब हम रोज अच्छे विचार सुनते या पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है, हम समस्याओं में भी समाधान ढूंढने लगते हैं। तो आज के सुविचार में सुनिए सुंदरकांड का महत्व के बारे में, स्वर प्रेम नारायण मेहरोत्रा का है।
3: यो तो महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 7 कांडों में प्रभु राम के पावन चरित्र का वर्णन है, इसलिए प्रभु के बाल रूप से लेकर राजा राम तक की पूरी कथा का अद्भुत आनंद और पूर्ण प्रदान करने वाली है। परंतु सुंदरकांड में प्रभु राम के सबसे प्रिय भक्त और सेवक हनुमान जी की वीर गाथा का वर्णन है, इसलिए उसे मानस का हृदय कहा जाए तो अतिशयोक्त न होगी। तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा कि इसमें कई चीजें बहुत सुंदर हुई हैं, जैसे देवताओं द्वारा सुरसा के माध्यम से हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा और उसमें उनका पूर्ण सफल होना, लंका में हनुमान जी की विभीषण से भेंट जिसके माध्यम से राम रावण युद्ध में कई रहस्य प्राप्त हुए और अंततः प्रभु राम की विजय, हनुमान जी का माता सीता से भेंट और राम जी के संदेश को बुद्धिमत्ता पूर्वक सुनाकर माता के दुख का निवारण, माता सीता का अंतर मन से हनुमान जी को अजर अमर होने का और प्रभु राम की अविरल भक्त प्राप्त करने का वरदान दिया जाना, हनुमान जी ने राम जी की महिमा बताकर रावण को सद्ज्ञान देने का प्रयास किया परंतु रावण के अहंकार ने किसी सद्ज्ञान को मानने नहीं दिया और उसने हनुमान जी की पूछ में कपड़ा बांधकर और घी तेल डालकर आग लगाने का आदेश दे दिया। इससे रामदूत हनुमान जी को अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देने का एक उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। वो अपनी पूछ को तब तक बढ़ाते रहे जब तक लंका का सारा कपड़ा और घी तेल समाप्त नहीं हो गया। ज्यों ही उनकी पूछ में आग लगाई गई वो अपनी पूछ से लंका की अट्टालिकाओं

0: को जलाने लगे। इस कार्य में उन्होंने विभीषण के महल को छोड़ दिया क्योंकि वो प्रभु राम का भक्त था। प्रभु के कार्य में हनुमान जी के पिता पवन देव ने भी 49 हवाओं को चलाकर हनुमान जी को अपना आशीष प्रदान किया और इससे जरा सी देर में रावण की सोने की लंका जलकर खाक हो गई। तत्पश्चात हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूछ की आग बुझाई और अशोक वाटिका में माँ सीता से विदा लेने पहुंचे। माँ ने उन्हें अपने अंतर मन से अजर अमर और सर्वश्रेष्ठ राम भक्त होने का वरदान दिया। अजर अमर गुणनिष्ठ हो करो सदा रघुनायक छोहु। हनुमान जी लंका से लौटकर जामवन जी और अंगद आदि के साथ जब श्री राम के पास पहुँचे और माता सीता के दुख की कथा सुनाई तो राम और लक्ष्मण जी की आंखें भर आईं और प्रभु ने सुग्रीव को तत्काल बानर सेना बुलाकर लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश दे दिया। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने इतना कठिन कार्य कैसे किया, तो उनके चरण पकड़कर हनुमान जी ने केवल इतना कहा कि सो सब तब प्रताप रघुराई। इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि जो कार्य प्रभु को अर्पित करके किया जाए उसमें सिर्फ सफलता मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तों को सुंदरकांड का पाठ नित्य करना चाहिए और यदि नित्य संभव न हो तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य करना चाहिए।
1: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे सुंदरकांड का महत्व के बारे में, स्वर प्रेम नारायण मल्होत्रा का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

आराधना का ये सुंदर पल मानो शिव ध्यान की एक सुगंध हो। आप सभी अपने मन को स्थिर करें और इस शिव भक्ति से सुवासित भजन को सुनें।

कृष्ण के प्रेम में मीरा इस कदर खो गई, ऐसी लगन जगी कि फिर ना कोई बंधन था न लोकलाज, बस एक धुन तो प्रभु श्याम की।

ईश्वर अनंत है और सभी प्राणियों की अंतरात्मा उसी का अंश है। हम सब उस ईश्वर से मिलने से ही तो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 196।

यह वृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वे श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो

0: संपर्क करें 8700001-4242 पर
1: 8700001-4242।
2: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीयसंघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोपदेशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तनप्रबन्धनव्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीयमल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य अमूल्य है, क्योंकि यह हमें कार्य करने की शक्ति देता है, सपनों को साकार करने की ऊर्जा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस। आज की स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए विश्व महासागर दिवस, समंदर की सेहत से हमारी सेहत, इस विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज का विषय बहुत ही सुंदर, गहराई भरा और जिंदगी से जुड़ा है। आज है 8 जून यानी विश्व महासागर दिवस। ये दिन समर्पित है उस विशाल जल राशि को जो हमारी पृथ्वी के 70% हिस्से को ढकती है और जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा, पेड़ और मिट्टी। महासागर हमारे जीवन का आधार है। ये केवल समुद्र तटों की खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे लिए भोजन, ऑक्सीजन, जलवायु संतुलन और जैव विविधता का सबसे बड़ा स्रोत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 2 सांसों में से 1 सांस हमें समुद्रों की वजह से मिलती है। समुद्री शैवाल और प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन वातावरण में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमारे महासागर अस्वस्थ हो जाएं, तो ये असर केवल समुद्री जीवों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हम सबकी सांसों पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में महासागरों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन ने समुद्री जीवन को संकट में डाल दिया है। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली विविध प्रजातियां, जो हमारी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। और ये समस्या केवल तटवर्ती देशों की नहीं है, बल्कि हर उस देश की है, हर उस व्यक्ति की है जो पृथ्वी पर सांस लेता है। भारत जैसे देश जहां सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री तट फैला है, वहां समुद्र केवल व्यापार और यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। मछुआरे समुदाय, तटीय किसान और जल आधारित पर्यटन, ये सभी समुद्र पर निर्भर हैं। यदि समुद्रों की सेहत बिगड़ती है, तो ये केवल प्रकृति का नुकसान नहीं करते, बल्कि मानव जीवन और आर्थिक संरचना पर भी सीधा प्रभाव डालता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य का संबंध हमेशा से रहा है, और जब हम जल की बात करते हैं तो ये संबंध और भी गहरा हो जाता है। समुद्र से मिलने वाली ताजगी, वहाँ की नमी, वहाँ की जलवायु, ये सभी हमारे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समुद्री हवा में मौजूद नमी, आयोडीन और अन्य खनिज तत्व हमारे श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी माने जाते हैं। समुद्र किनारे की सैर मानसिक तनाव को कम करती है और मूड को अच्छा बनाती है। विश्व महासागर दिवस पर हमें ये समझने की जरूरत है कि महासागर की रक्षा केवल समुद्र के पास रहने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हम चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक, केमिकल युक्त उत्पाद या कचरा कभी न कभी नदी और नालों के रास्ते समुद्र तक पहुँच ही जाता है। इसलिए हमें अपने उपभोग की आदतों में बदलाव लाना होगा, समुद्री जीवों का अधिक दोहन रोकना होगा और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। समुद्र हमें जीवन देता है। मछलियाँ, नमक, समुद्री जड़ी बूटियाँ और कई औषधीय तत्व, ये सब हमें समंदर से मिलते हैं। हमारी रसोई से लेकर दवाखानों तक समंदर की देन हमारे जीवन में छाई हुई है। ऐसे में क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम इसके अस्तित्व की रक्षा करें? यदि हम समुद्र को सम्मान देंगे तो वो हमें बदले में और भी सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध जीवन देगा। श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा के इस विशेष अंक में आप सभी से एक अनुरोध है, आइए हम सब इस दिवस को केवल जानकारी तक सीमित न रखें, अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जो महासागरों की रक्षा में सहायक हो। बच्चों को समुद्रों के महत्व के बारे में बताएं, स्कूलों में जागरूकता बढ़ाएं और स्वयं भी जिम्मेदार उपभोक्ता बने। यही छोटे प्रयास मिलकर हमारे महासागरों को एक बार फिर से स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, जब समंदर लहराता है तो ये केवल पानी की तरंग नहीं होता, वो हमारे जीवन की गहराई को दर्शाता है। उसकी हर लहर में प्रकृति की पुकार छिपी होती है, एक पुकार जो कहती है मुझे बचाओ ताकि तुम्हें जिंदगी मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए और महासागरों से अपने रिश्ते को फिर से जीवंत बनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।

अभी आप विश्व महासागर दिवस, समंदर की सेहत से हमारी सेहत, इस विषय पर नीना सुनकर की ये जानकारी सुन रही थी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी रात 11:10 पर। विषय है किसान सशक्तिकरण। आप सुनेंगे सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 10:20 से केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रसारित होगा। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:00 मुक्तिनाथ झा की कहानी सुनिएगा उलझन। रात 10:00 रूपक प्रसारित होगा विकल्पों के द्वार, आलेख कीर्ति श्रीवास्तव का, स्वर कुमकुमधर और नवनीत मिश्र का और प्रस्तुति अतिश श्रीवास्तव की। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश सुनिएगा नगमगी प्रोग्राम। पेशकश आसिफ इकबाल की है। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व महासागर दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर उस्ताद राशिद खान का गायन प्रसारित होगा। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर निशांत खान का सितार वादन श्रोता सुनेंगे। घनांगन कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर अलका गुप्ता का कविता पाठ बहने सुनेंगी। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में धान की सीधी बुआई तकनीक विषय पर डॉक्टर दीक्षा मिश्रा से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नेशन नेक्स्ट के अंतर्गत ओबी पर आधारित कार्यक्रम भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत कल की अर्थशक्ति भारत आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में गुर्दे की पथरी कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर विवेक कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर काजल चक्रवर्ती से की गई भेंटवार्ता का विषय है मत्स्य तालाब की तैयारी और मिश्रित मत्स्य पालन। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें डॉक्टर ओपी पटेल की वार्ता आप सुनेंगे, दवाओं को लेने का सही तरीका। साथ ही गर्मियों में आंखों की देखभाल विषय पर डॉक्टर रचना अग्रवाल की वार्ता आप सुनेंगे। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर विमला कठेरिया के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर पंडित कैलाश श्रीवास्तव के गाए गीत और भजन आप सुनेंगे। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित

कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना ना भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पृथ्वी के मानचित्र का हिस्सा नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के अस्तित्व का आधार है। यह विषय है विश्व महासागर दिवस। हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व, उनके संरक्षण की आवश्यकता और मानव जीवन से उनके गहरे संबंध के प्रति जागरूक करना है। जब हम महासागर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में दूर दूर तक फैला नीला जल, ऊंची ऊंची लहरें और अनंत क्षितिज की छवि उभरती है। लेकिन महासागर केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, वे पृथ्वी के फेफड़े हैं, जलवायु के नियंत्रक हैं, करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार हैं और जीवन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका हुआ है और हमारी सांसों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा समुद्री वनस्पतियों द्वारा निर्मित होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो महासागर हम सभी के लिए जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित कर उसे विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करते हैं जिससे मौसम और जलवायु संतुलित रहती है। यदि महासागर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी कठिन हो जाएगा। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में महासागर एक विशाल प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रोताओं, आज जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है तब महासागरों की उपयोगिता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। समुद्र केवल जल का भंडार नहीं बल्कि वे खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और जैव विविधता के प्रमुख स्रोत हैं। लाखों मछुआरों और समुद्री उद्योगों से जुड़े लोगों की आजीविका महासागरों पर निर्भर है। समुद्री व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। विश्व के अधिकांश देशों के बीच होने वाले व्यापार समुद्री मार्गों से ही तो संपन्न होता है। महासागरों की गोद में अनगिनत प्रकाश के जीव जंतु और वनस्पतियां निवास करती हैं। सूक्ष्म पल्लवकों से लेकर विशालकाय व्हेल तक असंख्य जीव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। यह जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। समुद्र हमें भोजन, औषधियां और अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उपयोग होने वाली कई महत्वपूर्ण दवाओं के स्रोत समुद्री जीव और वनस्पतियां हैं। शुद्ध दुख की बात यह है कि जिन महासागरों ने सदियों से मानवता को जीवन दिया आज वही महासागर मानव गतिविधियों के कारण संकट में हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, रासायनिक अपशिष्ट, अत्यधिक मत्स्य दोहन और जलवायु परिवर्तन महासागरों के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं। प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है।

जिससे समुद्री जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अनेक जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निकल जाते हैं और असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि महासागरों की रक्षा केवल समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं, हम चाहे समुद्र तट से हजारों किलोमीटर दूर क्यों न रहते हों, हमारी दैनिक आदतें महासागरों को प्रभावित करती हैं। जब हम प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग करते हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं या पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो उसका प्रभाव अंततः महासागरों तक पहुंचता है। विश्व महासागर दिवस हमें यह संदेश देता है कि विकास और संरक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि हम टिकाऊ जीवन शैली अपनाएं, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, जल संरक्षण को बढ़ावा दें और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने, तो महासागर को सुरक्षित रखा जा सकता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर महासागर संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, रासायनिक अपशिष्ट, अत्यधिक मत्स्य दोहन और जलवायु परिवर्तन महासागरों के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं। प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अनेक जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं और असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि महासागरों की रक्षा केवल समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं। हम चाहे समुद्र तट से हजारों किलोमीटर दूर क्यों न रहते हों, हमारी दैनिक आदतें महासागरों को प्रभावित करती हैं। जब हम प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग करते हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं या पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो उसका प्रभाव अंततः महासागरों तक पहुंच जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित महासागर छोड़कर जाएं। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी, पर्यावरण संतुलित रहेगा और मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। महासागरों की रक्षा वास्तव में अपने भविष्य की रक्षा है। आइए इस विश्व महासागर दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति के इस अमूल उपहार की रक्षा करेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में भागीदारी निभाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, महासागर केवल जलराशि नहीं, वे जीवन की धड़कन हैं, पृथ्वी की शक्ति हैं और मानव सभ्यता के मौन संरक्षक हैं। इन्हीं प्रेरणादायी विचारों के साथ विश्व महासागर दिवस के अवसर पर यही संदेश है, महासागर सुरक्षित होंगे तो जीवन सुरक्षित होगा, समुद्र स्वच्छ रहेंगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा। आइए महासागर के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुंदर बनाएं। इसी के साथ मैं अंजलि श्रीवास्तव कार्यक्रम विविधा से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान

0: करने को तैयार रहता है वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान,

0: آگے بڑھایا جاتا تو یہ دنیا رہنے کے لیے کہیں اچھی جگہ ہوتی. اے پی جے عبد الکلام.
1: بڑھتے ہوئے یا دھویں سے ہے سب پریشان, شدھ وایو درلبھ خطرے میں ہے منشیہ کی جان. کوڑا اور پلاسٹک جو لوگ جلائیں پردوشن کے کارن بن جائیں, سانس لینے میں تکلیف آئے آروگیہ کو ہانی پہنچائیں.
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक. पहले मुख्य समाचार. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की. कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा. अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित. कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित. और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा. 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम. अब समाचार विस्तार से. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण ने कल अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की. रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है. श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की. श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया. इस अवसर पर उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए.
3: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो. ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है.
2: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
4: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश विकास का नेतृत्व है. किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है. उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा.
2: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्राविधानों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए. एक रिपोर्ट.
5: मुख्यमंत्री

0: अपने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा करते हुए कहा कि डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर अग्रिम बधाई दी।
2: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने बस के किराए में भी 50% छूट देने का फैसला लिया है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कल से घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश भर में एक बार फिर तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए उस्ताद राशिद खान का राग भटियार और राग बहार में गायन। पहले हम आपको सुनवाते हैं उस्ताद राशिद खान का राग भटियार में गायन।

अभी आप उस्ताद राशिद खान का राग भटियार में गायन सुन रहे थे, और अब हम आपको सुनवाते हैं उस्ताद राशिद खान का ही राग बहार में गायन।

0: अभी आप उस्ताद राशिद खान का राग बहार में गायन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने

0: किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा

0: लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
1: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द है, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन

का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टेगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी तेज जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजनल 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमायां तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदामात और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, दलदली ज़मीनों, मैंग्रोव्स और साहिली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने उससे बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक क्लीदी सतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगैनियो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात के गहरे तहजीबी राबतों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया का जामे क्लीदी शराकतदारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुगैनियो ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजिर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का ये पहला हमला है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम नितिन्याहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाब

0: अपनी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाज़ें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंगबंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की थी, जिसने इतवार को बेरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बेरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मजाहमत की एक मुनजम कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातिमुन्नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लेबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वह खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहिदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने इटली के फेलियो कोबिलियो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलवियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकेल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए इम्तहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीद नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

और श्रोताओं, देखिए आपके मेल आने शुरू हो गए हैं। पहला मेल आया है हमारे पास मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई का। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं गुलामी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनपद हरदोई से विजयलक्ष्मी कुशवाहा सुनना चाहती हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत मोहम्मद असलम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास एक मेल है, उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवारकर राही श्रीमती सरिता गवारकर, प्रिंस एकांश गवारकर का, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवारकर, सिद्धांत गवारकर, लाडला टुक टुक गवारकर, बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवारकर, सुमित गवारकर, कुमारी ध्वनि गवारकर परी। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेखा मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाला और सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश, लक्सर हरिद्वार से मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आप सभी सुनना चाहते हैं सागर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास एक मेल है फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा जी का। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।
1: यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हमारे पास मेल है ललवा जरा खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव का। विजयपाल जी लिखते हैं कि इन्हें यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आज का स्वास्थ्य चर्चा और विविधा कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में अगर किसी को सबसे अनमोल तोहफा देना है तो दुआ, वक्त और ईमानदारी का दीजिए। पैसे तो हर कोई दे सकता है और दुआ वह दौलत है जो बिना दिखाई दिए भी मन को शक्ति देती है। बहुत खूबसूरत बात लिखी है इन्होंने और फरमाइश की है विश्वात्मा फिल्म का गीत सुनने की। आवाज़ है साधना सरगम की और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास एक मेल और है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

और देखिए हमारे पास अगला मेल है बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जयदेव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया का और मास्टर अल कबीर। और एक मेल है हमारे पास मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया का, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, आप सभी सुनना चाहते हैं नमक हराम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

और कार्यक्रम का अंतिम मेल है हमारे पास ऊंचगांव मीठी से मोनू सेठ, परी, गन्नू, मानवी, अर्जित, अर्पित, हर्षित, अनीता, बिनीता, सुनीता, आंचल और सोनू परवाना का। और हमारे पास एक मेल है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। आप सभी सुनना चाहते हैं शोले फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में।

और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास एक मेल आया है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियम और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।

0: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव अनुमति चाहेंगी। आप अपना साथ आकाशवाणी के साथ यूं ही बना के रखिएगा और भेजते रहिएगा हमें अपने प्यारे प्यारे मेल, और बनाए रखिएगा ये दोस्ती अंजलि श्रीवास्तव के साथ। तो दीजिए इस कार्यक्रम से हमें अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
2: प्रदेश के

0: मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा में 24 व 25 मई को दो दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में प्रतिभाग किया। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री केपी मलिक की उपस्थिति में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गर्मी के कारण डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि
1: धूप में निकले, सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट मोड पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अस्पताल का रख रखाव और चिकित्सकों का व्यवहार IPD OPD अच्छी स्थिति में है।
0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना डोर टू डोर अमरोहा में 22 मई से शुरू हो चुकी है, जो कि 20 जून तक चलेगी। जिले में अब तक 3,518 प्रगणकों द्वारा 95,000 मकानों का सूचीकरण व गणना कर ली गई है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि
2: हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सेंसस कर्मचारी आपके घर पे आए, आप उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दें। आप उनको पूरा डेटा एकदम शुचिता से अवेलेबल कराएं। इस डेटा का जो उपयोग है भारत के जनगणना में जो डेटा मिलता है उसका पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में उसका रोल होता है। जितना शुचितापूर्ण डेटा होगा उतनी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी और उतनी अच्छी लोकोन्मुखी स्कीमों का धरातल पे क्रियान्वयन किया जा सकेगा। लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन पूरी और एकदम एक्यूरेटली दें, इससे कोई भी प्रोसिक्यूशन वाली कार्रवाई किसी के भी नहीं की जाएगी। ये केवल एक डेटा कलेक्शन की एक एक्सरसाइज है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा हर समय कायम रखें।
0: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में अमरोहा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विकास भवन सभागार में 1 जून को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद स्तर पर कुल 18 मेधावी विद्यार्थियों को प्रत्येक को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर अमरोहा के 6 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 29 मई को अमरोहा में अनेक स्थानों पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा गजरौला में हवन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसान एवं क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ से हुआ। इसके उपरांत आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्ष, किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों की आशा और विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनके विचार और सिद्धांत प्रासंगिक हैं तथा देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग दिखाते हैं। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर 1 जून को अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनौरा, गजरौला एवं हसनपुर ब्लॉक के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर ए मिश्र ने कहा कि समय की मांग है कि सभी किसान अपने खेत को बचाने के लिए अपने खेत की मिट्टी को पहचानने और उसमें आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य, भूजल स्तर एवं वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शीशपाल सिंह ने फसलों के साथ साथ सब्जियों एवं बागवानी में कृषकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग करने के कारण इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ गया है। इसके कारण लाभदायक कीट एवं मधुमक्खियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित तोमर ने जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक एवं विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहे।
3: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल, आलेख और

0: है देवेश सिंह का।
1: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाए और कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। मंत्री ने पौधारोपण को प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले में रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ भोगनीपुर तहसील के अमरौधा ब्लॉक के स्थित रनिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरे के

0: वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले में रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ भोगनीपुर तहसील के अमरौधा ब्लॉक के स्थित रनिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरे के दौरान मंत्री संजय निषाद ने जन सुनवाई में लापरवाही करने पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध और गांवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रात्रि चौपाल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद की पहल को और मजबूत किया गया। जनपद कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों में पिछले हफ्ते हुई बारिश और गरज चमक से भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन राहगीरों और किसानों को राहत का एहसास हुआ है। पिछले सप्ताह हुई बौछारें और बादलों की आवाजाही ने चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं लू से काफी हद तक निजात दिलाई। बारिश के कारण पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक और हवाओं में ताजगी महसूस हुई। प्री मानसून की इस बारिश ने खेतों और पेड़ पौधों को नई जान दी है, जिससे किसानों और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद तापमान में उतार चढ़ाव और उमस बढ़ने की स्थिति भी देखी गई है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस तिस्ती रसूलाबाद से केंजरी रूरुआ होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट के नाम पर हुए 400 करोड़ के जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मूसानगर थाने में FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी कपिल सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद कानपुर कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम सभाओं की जमीनों का पुनर्ग्रहण निरस्त कर दिया है। 761.41 एकड़ जमीन को वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके ग्राम सभा के नाम निहित करने का आदेश जारी हो चुके हैं। कानपुर देहात के गौसगंज भोगनीपुर मूसानगर में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अहिल्या आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। अहिल्या आर्मी भारत एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर के अनेकों मंदिर घाटों धर्मशालाओं कुओं और सड़कों का निर्माण कराया था। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महेश्वर को सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और महेश्वरी साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। कानपुर देहात में हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं में जनपद स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन को दिया। राज्य मंत्री ने कहा, ऐसे सम्मान से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य छात्रों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले के हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
3: तुमने दी आवाज, मैं आ गया।
2: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: हम आकाशवाणी

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
1: ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे

शकील ने लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आपको उर्दू, हिंदी और अरबी फारसी का अच्छा इल्म था। दिल्ली में शुरू में सरकारी नौकरी करने के बाद आप मुंबई चले गए, जहां आपकी मुलाकात मौसीकीकार नौशाद से हुई और यहीं से शकील का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। शकील ने दर्द, बैजू बावरा, मदर इंडिया, गंगा जमुना, मुगल आज़म और मेरे महबूब जैसी फिल्मों के लिए तराने लिखे। 20 अप्रैल 1980 को आप इस दुनिया फ़ानी से विदा हो गए।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के, जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

आप उर्दू में लिखते रहे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे। सोचिए ऐसे शख्स की जहानत का आलम क्या होगा। आप आज़ादी की मुहिम से भी जुड़े रहे। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुले नगमा, मशाल, रूह कायनात, नगमाए साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज व कायनात, चिरागां, हजार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयां और तराना इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की तख्लीक फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखीं। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर हुए। आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज़।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय

0: किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज सुनिए विमला कठेरिया के गाए अवधि लोकगीत। इनकी आवाज में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये सोहर।

द्वारे से आए हैं। अभी आपने विमला कठेरिया के स्वर में ये सोहर सुना और इनकी आवाज में अब हम आपको सुनवाते हैं गंगा गीत।

अभी आप विमला कठेरिया के स्वर में ये गंगा गीत सुन रहे थे। संगत कर रहे थे नायल पर राजकुमार, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर थे मुकेश कुमार और साइड रिदम पर शैलेंद्र सिंह।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सागर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सागर फिल्म का ये गाना, और अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के

0: एलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरिवंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। जवाब में इसराइल ने आज ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इसके बाद से ईरान की कई शहरों में जोरदार विस्फोटों की खबरें हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के इस्फहान में 3 विस्फोट हुए हैं।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: इराक के शिया मिलिशिया कटायब हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों में शामिल होता है तो वे इराक और क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ये चेतावनी समूह ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर जनरल सेंटोन्स शहर से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर आया। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूटान में बीती रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर

0: की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। इससे किसी भी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग आज उत्तर कोरिया की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये 7 वर्षों में पहली उत्तर कोरिया की यात्रा होगी। इस यात्रा से चीन का उत्तर कोरिया पर प्रभाव बढ़ेगा और चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
1: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अपने 2 दिन की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। विदेशी विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बैठक का द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोनों देश अमेरिका के साथ अलग अलग टकरावों के मद्देनजर अपने पारंपरिक गठबंधन को पूरी तरह से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का आर्थिक व मुख्य राजनयिक समर्थक रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आर्मेनिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना जारी है। आर्मेनिया के चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान लगभग 2000 मतदान केंद्रों पर हुआ, जहां 24 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी लगभग 57% वोटों के साथ आगे चल रही है। रूस समर्थक स्ट्रांग आर्मेनिया गठबंधन लगभग 21% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर और पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोरचियान के नेतृत्व वाला आर्मेनिया गठबंधन लगभग 8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये चुनाव वर्ष 2023 में अजरबैजान से आर्मेनिया की सैन्य हार के बाद पहला चुनाव है। नेपाल में कलिंग साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण कल काठमांडू में संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय सीमाओं से परे बदलते विश्व में दक्षिण एशियाई साहित्य है। इस महोत्सव में नेपाल सहित पूरे दक्षिण एशिया के साहित्यकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने उपन्यास कारा के बारे में बताया। उन्होंने साहित्य को समाज, मानवीय अनुभवों और भावनाओं का प्रतिबिंब बताया। कार्यक्रम में अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा, गायिका इला अरुण, लेखिका प्रतिभा रॉय, लेखक और फिल्म निर्माता राजशेखर, लेखक आचार्य प्रशांत और अन्य कई प्रमुख साहित्यिक हस्तियों ने शिरकत की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा भारतीय पहलवानों ने मंगोली में चल रहे उलान बतोर ओपन 2026 टूर्नामेंट में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना सफल अभियान समाप्त किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ। अप्रैल के युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे, केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए फैसलों और नीतियों से आए परिवर्तन पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर शचि राय से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
4: केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। वर्ष 2014 से अब तक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला

0: कल्याण के साथ ही महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, पोषण और आजीविका जैसे अवसरों तक महिलाओं की पहुंच को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले और नीतियां लागू की जा रही हैं, जो महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के विजन और प्रयासों के बारे में क्या कहा।
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा।
0: इन 12 वर्षों में

0: सेना लेकर के
1: भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा।
2: इन 12 वर्षों में महिलाओं के जीवन में आए परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर शचि राय। शचि जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। शचि जी, वर्ष 2014 के बाद भारत में महिला कल्याण से महिलाओं के नेतृत्व वाले यानी विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में किस तरह का परिवर्तन देखती हैं आप?
3: अर्थशास्त्र के दृष्टि से यह सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचा में परिवर्तन है। कल्याण के मॉडल में महिला एक लाभार्थी हुआ करती थी, यानी विकास उस तक पहुंचाया जाता था, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि महिला नेतृत्व वाले विकास में ज्यादा जोर दिया गया है। 2023 में जब भारत की अध्यक्षता में G20 घोषणा पत्र ने विमेन लेड डेवलपमेंट को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था
4: जी,
3: तो यह वैश्विक मंच पर इस सोच की पुष्टि की थी। आर्थिक भाषा में कहें तो हम महिला को केवल उपभोग की इकाई नहीं बल्कि उत्पादन, उद्यमिता और निर्णय की इकाई मान रहे हैं। जब आधी आबादी श्रम बल, उद्यम और परिसंपत्ति स्वामित्व में पूर्ण भागीदारी बनती है तो यह केवल न्याय का प्रश्न नहीं रहता, यह विकास दर का प्रश्न बन जाता है। इसी कारण से हम अगर विकसित भारत 2047 में बनना चाहते हैं तो महिलाओं का बड़ा योगदान होगा और वह केवल विमेन लेड डेवलपमेंट से ही पाया जा सकता है
4: जी। अगर हम बेसिक से शुरुआत करें कि सबसे पहले बेटियों को बचाना और बेटियों को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी सरकार ने ली और उसको आगे बढ़ाने के लिए नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह की जो योजना है इससे बच्चियों के संरक्षण और उनकी शिक्षा में किस तरह का परिवर्तन आया है?
3: जी, 2015 में पानीपत से शुरू हुई यह योजना मूलतः एक व्यवहार परिवर्तन अभिनय थी और अर्थशास्त्री इसे ऐसे ही देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आंकड़ों में दिखती है। जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 में 918 थी, जो कि सुधरकर 2023-24 में लगभग 930 बन गई थी। शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात लगभग 75% से बढ़कर 78% हुआ है। पर असली बात यह है कि योजना ने एक सामाजिक मानसिकता को छुआ, बेटी को बोझ नहीं अवसर के रूप में देखने की दृष्टि बनाई है और जब इसके साथ सुकन्या समृद्धि योजना जुड़ जाती है तो संरक्षण के साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती है। माता पिता बेटी के नाम पर बचत करते हैं जिससे उसकी शिक्षा और विवाह की चिंता वित्तीय रूप से सुलझती है, यानी एक तरफ संरक्षण, दूसरी तरफ शिक्षा और तीसरी तरफ बचत के जरिए दीर्घकालिक सशक्तिकरण, यह एक समग्र चक्र है। हाँ, कुछ जिलों में लिंगानुपात अब भी चुनौती है लेकिन इसमें निरंतर सुधार हो रहा है
4: जी। जिस तरह से आपने कहा कि पहले तो उनका संरक्षण हुआ है और फिर सशक्तिकरण हुआ है, तो एक जो समाज की सोच में जो बदलाव आता है, जैसे कि कहा जाता था कि बेटियों को बोझ समझा जा रहा है कई जगहों पर, उसमें आपको लगता है कि कितने हद तक सुधार हुआ है?
3: उसमें काफी सुधार हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि जो सेक्स रेशियो है वो काफी इम्प्रूव हुआ है, वो अब 918 से 930 हो गया। तो यानी कि जो समाज था, जो परिवार था, परिवार स्तर पे लड़कियों को अब सशक्त बनाया जा रहा है, उनकी पढ़ाई पे फोकस किया जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि आंकड़ों में भी देखा जा सकता है
4: जी। शचि जी, एक बहुत अहम पहलू है महिलाओं से जुड़ा हुआ, उनके स्वास्थ्य का। अक्सर ये देखते हैं हम कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग नहीं होती हैं या बहुत प्राथमिकता नहीं दे पाती हैं, कई चीजों में उलझी होती हैं, तो ऐसे में सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं की शुरुआत की, चाहे हम प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की बात करें या हम आयुष्मान भारत की बात करें, इस तरह की कई योजनाएं हैं जिनके जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं से आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन आया है?
3: जी, महिलाओं की स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, स्पेशली मातृ स्वास्थ्य किसी भी देश के मानव पूंजी निर्माण की नींव होती है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ अगली पीढ़ी की गारंटी हो सकती है। यह तीनों योजनाएं जो है, मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना और मातृ स्वास्थ्य योजना जो है, वो रीढ़ है हमारे स्वस्थ भारत की। जननी सुरक्षा योजना संस्था

0: अगर प्रसव को नकद प्रोत्साहन देती है और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की निश्चित तारीख को मुफ्त प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करती है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भावस्था में मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए सशर्त नकद सहायता देती है ताकि महिला आराम और पोषण ले सके। ये तीनों योजनाएं जो 2014 के बाद दी गई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई हैं मातृ स्वास्थ्य को आगे और बेहतर बनाने में। इसका ठोस परिणाम यह है कि संस्थागत प्रसव लगभग 61% से बढ़कर 97% से ऊपर पहुंच गया है और मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है। यही आयुष्मान भारत की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच गरीब परिवार की महिला के लिए एक कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी इलाज पर होने वाली विनाशकारी खर्च से बचाव है। अक्सर परिवार में महिला का इलाज सबसे आखिर में होता है। यह कवच इस प्राथमिकता को बदलता है और महिला को बिना कर्ज में डूबे गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाता है।
1: जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि आपने कहा कि काफी परिवर्तन आया है और महिलाएं अब निशुल्क या फिर बहुत ही कम खर्च के साथ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रही हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि एक महिला एक परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, और ऐसे में शिक्षा को लेकर हमने अभी बात करी कि जो बेसिक शिक्षा बच्चियों को मिल रही है, इसके अलावा बच्चियों को उच्च स्तर पर अगर शिक्षा की बात करें, विज्ञान प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देने की बात करें, तो इसमें भी भागीदारी के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनको आप किस तरह देखती हैं?
0: सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान और गति प्रोग्राम और कई प्रौद्योगिक क्षेत्र में लड़कियों का भागीदारी बढ़े उसमें काफी स्कीम्स लाई गई हैं। समग्र शिक्षा अभियान में पूर्व प्राथमिकता में 12वीं तक की शिक्षा को एक सूत्र में पिरोया है, अलग अलग योजनाओं को जोड़ा है। बालिकाओं के लिए इसका विशेष में महत्व है, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, अलग शौचालय दिया गया, साइकिल और छात्रवृत्ति जैसे हस्तक्षेपों ने ड्रॉप आउट रेट को घटाया है।
1: जी
0: हम देखेंगे कि शौचालय जैसी छोटी चीज जो है स्कूलों में मैंडेटरी तरीके से उपलब्ध कराई गई है, जिसकी वजह से लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफी हद तक घटा है। उसी तरह स्टेम यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में भी हमने देखा है कि काफी लड़कियों को प्रोत्साहन दिया गया है। स्टेम स्नातकों में महिलाओं का हिस्सा लगभग 40% से ऊपर है, जो कोई विकसित देशों से भी अधिक है।
1: जी शची जी, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सरकार इस पर बल दे रही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके अलावा सुरक्षा, सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। जैसे हम मिशन शक्ति की बात करें तो मिशन शक्ति के तहत सरकार ने काफी प्रयास किया है और ये लगातार चल रहा है, चाहे उनको जागरूक करने की बात हो, उनकी जो सुरक्षा को लेकर अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पुलिस से संपर्क करने की जहां पर जरूरत है उन नंबर्स की जानकारी देना हो, इस तरह की काफी अभियान लगातार चल रहे हैं मिशन शक्ति के तौर पे। तो इसके जरिए आपको क्या लगता है कि क्या महिलाएं या बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं?
0: मिशन शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार की। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्कूल और विद्यालय में जाने वाली छात्राओं को काफी उनकी अवेयरनेस बढ़ाई गई है। डिजिटल फ्रॉड या फिर जितनी भी मोलेस्टेशन हो या कुछ भी हो उसको लेके उनकी जागरूकता काफी हद तक बढ़ाई गई है। स्कूल में अवेयरनेस किया गया है और कई प्रोग्राम्स किए गए हैं सरकार द्वारा, जिससे लड़कियों को बताया गया है कि किस तरह से अगर कोई डेंजर हो या कुछ भी असुरक्षा महसूस करे तो उनको क्या करना चाहिए और किसको फोन करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार की और इससे लड़कियों को काफी अच्छा लगा इस पहल से, और फ्यूचर में काफी अच्छा इसका परिणाम भी होगा।
1: जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कौशल विकास की, तो जिस तरह से अभी तक ही हम देखते रहे हैं कि आम तौर पर घर के जो बालक होते हैं उनको कौशल विकास से जोड़ा जाता है या फिर डिजिटली अवेयर कहा जाता है कि ज्यादा किया जाता है, सरकार का ये मानना है कि महिलाओं को और बालिकाओं को भी उतना ही कौशल विकास से जुड़ने की जरूरत है जितना कि पुरुषों को या लड़कों को है, तो इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इनको आप किस तरह से देखती हैं और क्या लगता है कि आने वाले, जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है, लड़कियों का डिजिटली सशक्त होना और कौशल विकास के जरिए सशक्त होना, ये आने वाले टाइम में कितना अहम कदम है?
0: जी, कौशल विकास को बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने काफी स्टेप्स उठाए थे। नाव्या एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है काफी लड़कियों के

0: कौशल पे ध्यान दे रही है। नाव्या का पूरा अर्थ है किशोरियों की आकांक्षाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण में संवारना। तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ये स्टार्ट हुआ था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। यह कौशल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जो 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देती है। और शुरुआती चरणों में 19 राज्यों के 27 जिलों में लगभग 4,000 लड़कियों को जोड़ चुकी है। इस तरह नव्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसी तरह की और भी पहले आ चुकी हैं पहले सरकार द्वारा। यह नव्या इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में लोगों के बीच जो गैप है उसको कम करती है।
1: जी
0: यह पारंपरिक नहीं है, जबकि नई डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा और एआई आधारित सेवाओं पर ज्यादा फोकस करती है। इसमें लड़कियों की ट्रेनिंग और कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और देखा गया है कि लड़कियां ही अगर ट्रेनिंग पाएंगी तो अपना फ्यूचर जो है, फैमिली इनकम और ये सब फ्यूचर में बढ़ सकती है।
1: जी जिस तरह से आपने कहा महिलाएं अगर इस तरह से सशक्त होंगी डिजिटली और उनकी इनकम होगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अगर इसी कड़ी में हम आगे बात करें कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने सबसे पहली जो हम कहें कि एक बड़ा मैसिव कदम उठाया वो ये था कि जो जनधन योजना के तहत महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि महिलाओं के हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास अपने बैंक अकाउंट ही नहीं थे, उनको इसके बारे में उसके संचालन को लेकर कोई जानकारी ही नहीं थी। इस योजना के तहत महिलाओं को औपचारिक रूप से एक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। इसने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायता की है?
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण की सबसे महत्वपूर्ण पहल थी और मैं स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन प्रयोगों में इसे गिनती हूँ। आज लगभग 56 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं और इनमें से लगभग 55 से 56% यानी 30 करोड़ लगभग खाते महिलाओं के नाम है। एक अर्थशास्त्री के लिए यह आंकड़ा बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी आंकड़ा है क्योंकि महिलाएं ही बैकबोन होती हैं फैमिली की। अगर महिलाओं के नाम खाता खुला है तो वह एक पहली सीढ़ी है। जब सरकारी लाभ चाहे मातृ वंदना की राशि हो या उज्ज्वला की सब्सिडी हो या मजदूरी सीधे महिला के खाते में आती है यानी डीबीटी के जरिए पहुंचती है तो दो बातें होती हैं। एक बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और दूसरी यह कि ज्यादा गहरी बात है कि पैसा महिला के नियंत्रण में रहता है। और ये देखा गया है कि जब पैसा महिला के नियंत्रण में रहता है तो बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही खर्च होता है। तो इस वजह से देखा गया है कि जो जनधन योजना जो सरकार ने लागू की थी जिसको हम जैम ट्रिनिटी भी कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल, यह एक बहुत ही क्रांतिकारी पहल थी जो मोदी जी लाए थे और उससे बहुत सशक्तिकरण हुआ था, वित्तीय सशक्तिकरण हुआ था औरतों का और उससे सारे परिवार को लाभ मिला था।
1: क्षति जी, जिस तरह से हम आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके जरिए अगर हम आंकड़े देखें तो महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पर लोन दिया जा रहा है, जिससे काफी हद तक महिलाएं जो हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, जो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, वो इससे जुड़ रही हैं। ये योजना जो है ये महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आपको लगता है कि किस तरह की भूमिका निभा रही है?
0: जी, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि योजना तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये और तीनों अलग अलग स्तरों को छूती है और यही इनकी खूबसूरती है। मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी ऋण देती है और उल्लेखनीय यह है कि लाभार्थियों में बहुसंख्या महिलाएं ही है। यह उस छोटी सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर या किराना की दुकान को पूंजी देती है जहाँ से लाखों महिलाओं की उद्यम यात्रा शुरू होती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करें तो यह एक स्तर ऊपर है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमों को ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल नए उद्यम के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देती है ताकि वे नौकरी देने वाली बन सकें। और पीएम स्वनिधि जो है वो सबसे हाशिए पर खड़ी है, रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक ऋण से जोड़ती है जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले जो महिलाओं को ऋण नहीं मिल पाता था

0: वो ये स्कीम्स जो है, ये जो गवर्नमेंट की जो पहल है ये पूरा करती है, और महिलाओं के पास प्रायः गिरवी रखने की संपत्ति की जरूरत नहीं है, वो बिना गारंटी ऋण दे रही है सरकार, जिसके द्वारा वह उद्यमिता की तरफ बढ़ रही हैं।
1: जी, जिस तरह से महिलाएं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, और इसी तरह से कई ऐसे स्वयं सहायता समूहों को भी सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है, जिसके जरिए महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं, और ये बहुत तेजी से इन दीदियों की संख्या बढ़ रही है। चाहे हम लखपति दीदी की बात करें या बैंकों में जो बैंकिंग प्रणाली में काम करने के लिए बैंक सखी सरकार ने निर्धारित की है कि उनको काम दिया जा रहा है, बैंक सखी के तौर पर महिलाएं बाहर आ रही हैं, और पति दीदी या ड्रोन दीदी इस तरह के काम कर रही हैं जो कभी शायद पहले महिलाओं ने नहीं किए होंगे। तो ये सारे जो प्रयास हैं ये किस तरह से एक महिला के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं और उनको ये हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ वो भी घर से निकलकर, घर घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर कुछ कर सकती हैं।
0: स्वयं सहायता समूह, बैंक सखी और लखपति दीदी भी बहुत ही जरूरी पहल है, उससे औरतों में काफी सशक्तिकरण हुआ है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत की एक तरीके से मौन क्रांति है। आज दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ महिलाएं इन समूहों से जुड़ चुकी हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक संगठनों में से एक है। बैंक सखी मॉडल इसका अद्भुत विस्तार है। लगभग 66,000 ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में तैनात किया गया है, जो अपने ही गांव में जमा निकासी पेंशन और मनरेगा मजदूरी जैसी सेवाएं पहुंचाती हैं। यानी महिलाएं यहाँ पे सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, सेवा प्रदाता बन गई हैं। और लखपति दीदी पहल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जो इसका शिखर है। लक्ष्य था 2 करोड़, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया, और जून 2025 तक लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी का दर्जा पा चुकी हैं। यानी सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय है इनकी। साथ ही शी मार्ट जैसी पहल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मंच इन समूहों के उत्पादों को बड़े बाजार और ई कॉमर्स से जोड़ती है।
1: जी
0: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी, और इनके थ्रू क्या होता है कि बाजार तक पहुंच गई हैं ये औरतें, और आगे और भी उनको सशक्तिकरण मिलेगा लखपति दीदी योजना और स्वयं सहायिका समूह से।
1: जी शशि जी, एक बहुत अहम पहलू होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि हम महिलाओं को हर तरह से सशक्त बना रहे हैं, लेकिन एक जो नई पहल जो हमें देखने को मिली वो ये है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को घर का मालिक बनाया, उनको मालिकाना हक देने का काम शुरू किया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर हम बात करें, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 96% जो घर हैं वो महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं। तो ये जो कदम है ये महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी को कितना मजबूत बनाता है?
0: जी, ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत लगभग 96% घर महिलाओं के नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और अकेले या संयुक्त रूप से उनके नाम किया गया है, जिससे उनकी जो घर के अंदर जो हम कहते हैं बार्गेनिंग पावर, यानी कि घर में उनकी जो आवाज है उसको मजबूती मिली है। परंपरागत रूप से भारत में संपत्ति पुरुष के नाम होती है, और महिला के पास पर संपत्ति का स्वामित्व प्राय नड़ होता है, नहीं होता है। पर जब घर का पट्टा महिला के नाम होता है तो उसकी स्थिति परिवार के भीतर बदल जाती है, और वह उसकी आवाज को एक नई पावर मिलती है, और वो निर्णय लेने में भी ज्यादा सशक्त रहती है। वो अपने बच्चों के शिक्षा पे, पोषण पे ज्यादा बुलंद आवाज से बोल सकती है, और पैसे को भी अपने हिसाब से खर्च कर सकती है।
1: तो इससे ऐसा लगता है कि महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास और बढ़ रहा है।
0: जी, उनकी आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, क्योंकि जब घर का पट्टा उनके नाम रहता है तो वह और उनका जो वित्त सशक्तिकरण है वो और बढ़ता है, वित्तीय सशक्तिकरण।
1: जी शचि जी, अगर हम कुछ और ऐसी बेसिक योजनाओं की बात करें, क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो कुछ जो बेसिक योजनाएं हैं जो महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव लाए हैं, अगर हम हर घर में शौचालय निर्माण की बात करें या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें कि किस तरह से घरों में पहले महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती थी, जिसके धुएं से लगातार उनकी सेहत पे खराब असर पड़ता था और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। इस तरह की जो बेसिक चेंजेस सरकार लाई है छोटे स्तर पर, जो शायद बहुत बड़े पैमाने पर नोटिस नहीं होते।

0: लेकिन महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बने हैं। ये सारी योजनाएं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से महिलाओं, खास करके ग्रामीण इलाकों में इन योजनाओं से क्या बदलाव आया है?
1: जी, आपने जैसे कहा शौचालय और उज्ज्वला, यह दोनों बुनियादी ढांचा है ग्रामीण भारत का, और इससे तीन चीजों पे बहुत असर पड़ा है, जो कि है सम्मान, समय और स्वास्थ्य। इन तीनों पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है। घर में शौचालय का मतलब है महिला और किशोरी की गरिमा और सुरक्षा। खुले में शौच की मजबूरी से जुड़ी असुरक्षा और शर्म का अंत हुआ है। यह बालिकाओं को स्कूल छोड़ने की भी एक बड़ी वजह हुआ करती थी, जो अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन मुख्यतः महिलाओं के नाम दिए गए हैं। इसका स्वास्थ्य लाभ बहुत बड़ा है। चूल्हे के धुएं से होने वाली श्वसन बीमारियां घटी हैं, जो वर्षों से महिलाओं की चुप्पी बनी हुई थी। और एक छिपा हुआ पर बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है, जो कि है समय। ईंधन बीनने और धुएं में खाना पकाने से जो भी स्वास्थ्य में खराब असर पड़ता था, वो कम हुआ है। और उसकी वजह से जो समय बचा है, यानी कि जो टाइम पॉवर्टी उसको हम कहेंगे अंग्रेजी में, वह कम हुई है। तो महिलाएं जो समय जो बचा है, क्योंकि पहले वो लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी और फिर उसको यूज करती थी, फिर उससे उनकी तबीयत भी खराब होती थी, तो इन सब का जो लाभ जो समय में पड़ा है, उससे औरतें अपना बाकी काम पे फोकस कर पाई हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रही हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दे पा रही हैं, और दिन भर में मतलब काफी समय दूसरे कामों में लगा पा रही हैं।
0: जी, हमने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या हायर स्टडीज की बात हो या कौशल विकास की बात हो, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात हो। एक जो अहम पहलू है इन सब के बीच की, समाज में महिलाओं को नेतृत्व की शक्ति प्रदान करना, कि महिलाएं भी अपने विचार रखें, आगे आए, लीडरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, इसके अलावा हाल ही में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए भी महिलाओं को राजनीति में और सरकार का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये प्रयास कितने महत्वपूर्ण है?
1: जी, राजनीतिक सशक्तिकरण जो है सभी सशक्तिकरणों में सबसे बड़ा ताज है, क्योंकि जब महिला निर्णय की मेज पर बैठती है तो नीतियों की प्राथमिकताएं ही बदल जाती हैं। जैसे कि पंचायती राज संस्थानों में देखा गया है, जहाँ पे 50% तक आरक्षण लागू किया गया है, आज लगभग 14 लाख निर्वाचित महिलाएं जन प्रतिनिधि हैं। शोध स्पष्ट दिखाता है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतें पेयजल, स्वच्छता, बच्चों के पोषण और स्कूलों पर अधिक निवेश करती है, यानी नेतृत्व का स्वरूप ही बदल गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इसी दिशा का ऐतिहासिक विस्तार है। यह लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। हाल ही में अप्रैल में सरकार ने इसे 2029 के चुनाव से पहले लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया है। हालांकि इसके स्वरूप और समय पर राजनीतिक बहस भी अभी जारी है। मेरी दृष्टि में जब विधायी संस्थानों में हर त्री आवाज महिला की होगी, तो विकसित भारत की परिकल्पना केवल एक नीति नहीं, बल्कि आधी आबादी की सहभागी परिकल्पना बन जाएगी। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि मिशन शक्ति जैसे छात्र योजना, इन सब प्रयासों को सुरक्षा से लेकर सशक्तिकरण तक एक सूत्र में जोड़ता है।
0: जी शची जी, हमने हर तरह के पहलू पे बात करी कि पिछले 12 वर्षों में किस तरह की योजनाएं आई हैं और किस तरह से महिलाओं को हर फील्ड में सशक्त करने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। आप एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप कुल मिला के हम इसकी बात करें कि अभी तक पिछले 12 वर्षों में हुए बदलाव पर आप क्या कहेंगी?
1: मुझे लगता है कि पूरे 12 वर्षों में काफी बदलाव आया है, जो कि बहुत ही विमेन लेड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। पहले औरतों पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, उन्हें सिर्फ लाभार्थी बनाया जाता था, बट 2014 के बाद काफी गवर्नमेंट की स्कीमें आई हैं, जो कि उनके वित्तीय सशक्तिकरण और डिजिटल सशक्तिकरण पे फोकस की है। पहले हम सिर्फ उनके मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे कि मेटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR कम है तो उसको सुधारें, या फिर बच्चों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको सही करें, बट उनके शिक्षा पे, उनके प्रौद्योगिक शिक्षा पे या फिर उनके डिजिटल लिटरेसी

0: इन सब पे फोकस कम किया गया था, जो कि 2014 के बाद हम देखते हैं कि उसमें काफी बदलाव आया है। सरकार ने काफी स्कीम्स को लाई गई है जो कि उनके ओवरऑल एम्पावरमेंट बढ़ाता है, देखा गया, उनको सशक्त बनाता है।
1: जी, तो महिलाओं के जीवन में आए इतने सारे परिवर्तन के बाद क्या आपको लगता है कि जो विकसित भारत का एक संकल्प है सरकार का 2047 में विकसित भारत का निर्माण करने का, उसमें महिलाओं की कितनी अहम भूमिका होने वाली है?
0: जैसे कि मैंने कहा कि महिलाएं तो हमारी देश की आधी आबादी हैं, तो वो जितना सशक्त बनेंगी, हमारी जो यात्रा है विकसित भारत की तरफ वो और तेजी से हमें मिलेगी और पूरी होगी वह यात्रा, क्योंकि 2047 में हम विकसित भारत जरूर बनेंगे और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि अगर हम अब देखें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया देखें स्कीम, या फिर मुद्रा योजना, हमने अभी मैंने चर्चा की कि उनमें कितनी ज्यादा औरतें जो हैं वो लाभार्थी हैं, वो छोटे छोटे बिजनेस खोल रही हैं जिससे वह खुद भी लखपति दीदियां बन रही हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि एक साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनता जा रहा है, यानी कि एक औरत दूसरी औरत को नौकरी दे रही है और ओवरऑल जो है मतलब हमारा जो इनकम है देश का वो बढ़ता चला जा रहा है और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान।
1: जी, जैसा कि आप कह रही कि अब एक महिला दूसरे को नौकरी देने में सक्षम हो रही है, और ये जो परिवर्तन है, ये अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझें तो इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगी?
0: मैं यही कहूंगी कि एक सोच में बदलाव आ रहा है और वित्तीय स्तर पे तो बदलाव आ ही रहा है, तो लोग क्या है कि अब अपनी बेटियों को और आगे पढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे जाके स्टेम की डिग्री लें और अपना खुद का बिजनेस बनाएं और बाकी लोगों को नौकरी दें, जिसकी वजह से पूरे समाज में एक परिवर्तन आ रहा है, एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है। और इसमें जो सरकार है वो एक बहुत अच्छा भूमिका निभा रही है, क्योंकि वो मुद्रा योजना या फिर स्टैंड अप इंडिया के थ्रू जो लोन प्रोवाइड कर रही है, ऋण प्रोवाइड कर रही है, उससे इस पूरी जो साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो हमें 2047 तक विकसित भारत की ओर ले जाएगी, उसमें सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो भूमिका है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम जो है एक महिला सशक्तिकरण की तरफ जा पाएंगे, जो कि हमें विकसित भारत का जो गोल है वो हमें मिल पाएगा।
1: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी।
0: धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना, केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए फैसलों और नीतियों से आए परिवर्तन पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर शचि राय से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: अभी आप ये विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, चित्रपट से। आइए सुनते हैं कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में लाल सिंह चड्ढा फिल्म से।

0: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डायल करें हमारा नंबर 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। फोन मिलाएं, अपने दिल की कुछ बातें कहें, कुछ हमारी भी बातें सुनें और सुनें अपने पसंद के फिल्मी नगमे। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो कॉलर हैं वो हैं हमारे पड़ोसी लहरपुर सीतापुर से। हेलो,
6: नमस्ते दीदी। राधे,
0: नमस्ते। राधे राधे जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
6: दीदी मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से।
0: जी कैसे हैं सुनील कुमार जी?
6: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए दीदी कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। और आपने जो अभी गाना चुना है ना, उड़ते बादल से पूछो, आज जब हम आ रहे थे तो हम भी पूछ रहे थे ये बादलों से कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं रह जाओ, थोड़ा सा बरस जाओ।
6: दीदी हाँ, बरसात नहीं हो रही ना, बादल आते हैं और निकल जाते हैं और बरसात हो नहीं रही है।
0: होगी होगी, जब मॉनसून आएगा तो बरसात होगी, लेकिन ये जो बादल है ना, जब आते हैं तो थोड़ी सी खुशी दे जाते हैं, कुछ मौसम में एक बदलाव सा महसूस होने लगता है, लगता है कि ओहो गर्मी जा रही है, लेकिन एक्चुअली में गर्मी नहीं जा रही है अभी। और कैसे जाएगी, अभी तो जून का महीना चल रहा है ना, तो क्यों जाएगी?
6: अभी तो जून का महीना चल रहा है, तो इस समय अभी तो गर्मी होगी क्योंकि इस महीने में।

0: गर्मी पड़ती है और जब मानसून आएगा तभी मौसम थोड़ा चेंज होगा।
1: बिल्कुल, और क्या। तो अभी तो हम लोगों को बहुत इंतज़ार करना है, लेकिन ठीक है, हम लोग, हम बार बार यही कहते हैं कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को हर एक मौसम हम इंजॉय कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कई जगह पे
0: वो
1: लोग
0: क्या है कि गर्मियों का मौसम है हाँ, तो गर्मियों का भी आनंद लेना चाहिए और सर्दियों का मौसम
1: और
0: है तो सर्दी का आनंद
1: सही
0: लेना
1: बात
0: चाहिए,
1: है, बिल्कुल।
0: हर मौसम का आनंद लेना चाहिए दीदी।
1: चलिए तो सुनवाते हैं फिर आपके पसंद का गीत।
0: दीदी कुछ मित्र हैं
1: हाँ
0: उनको,
1: बिल्कुल, ले लीजिए नाम।
0: दीदी सबसे पहले आप रहेंगी इसमें,
1: धन्यवाद।
0: और अविनाश तिली जी हैं त्रिपुरा से, ओमकार हैं जितेंद्र पाल हैं, और पूनम दीदी हैं कानपुर से, और जितने हमारे
1: जितने सुन
0: आकाशवाणी
1: रहे
0: के श्रोता लाइव सुनते हैं सभी को।
1: सबके लिए धन्यवाद। ये गाना आपने पसंद किया है संग्राम फिल्म से अलका याग्निक की
0: जी
1: आवाज
0: जी
1: में,
0: धन्यवाद।
1: सुनते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं
1: व्यक्ति से बात कर रहे हैं,
0: उन्होंने
1: आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने।
0: अरे बेटा सिंह जी, हेलो, ये गलत बात है भाई, समय जाया होता है और लोग भी लाइन पे हैं। हेलो, लीजिए, इनका तो फोन ही कट गया। बेटा सिंह यादव जी बोल रहे थे और उन्होंने गाना खई के पान बनारस वाला डॉन फिल्म का जो गीत है किशोर कुमार की आवाज में, उसकी फरमाइश की थी, तो सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: कार्यक्रम में हम मिलते हैं ग्राम बैसोड़ा नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया जी से। सही बताया मैंने?
1: जी बिल्कुल सही बताया दीप्ति जी। ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से आकाशवाणी का नियमित श्रोता प्रेम सिंह सिसोदिया
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और दीप्ति जी आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। 90 साल आकाशवाणी ने आज पूरे किए हैं, उसने हम श्रोताओं का भी बहुत अच्छा साथ रहा है।
0: बिल्कुल, श्रोता से ही साथ होता है, आकाशवाणी और श्रोता ये बराबर के होते हैं, है ना
1: जी? सभी आकाशवाणी का जितना साथ श्रोता ने दिया तभी तो आकाशवाणी अभी तक 90 वर्ष पूरे किए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है दीप्ति जी की अब मोबाइल ऐप पे आने से आकाशवाणी का नेटवर्क सब ज्यादा बढ़ गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है जी। सही कह रहे हैं आप। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा दीप्ति जी, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसमें से मैंने 15 साल आकाशवाणी के साथ में गुजारे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आकाशवाणी का साथ मिला,
0: और आगे भी आप गुजारते रहेंगे। आगे भी आप
1: साथ में, मुझे जैसे कि आप जैसे अनाउंसर से बात करने का मौका मिला और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर मेरा संपर्क आकाशवाणी से नहीं होता तो मुझे इतने सारे दोस्त नहीं मिलते, तो मैं तो हमेशा आकाशवाणी का ऋणी रहूंगा, हमेशा ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे आकाशवाणी का साथ मिला।
0: चलिए बहुत अच्छा, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे श्रोता हमारे साथ में हैं, जो कार्यक्रमों को इतने ध्यान से सुनते हैं और अपना प्यार हम तक पहुँचाते हैं। ठीक है,
1: तो दीप्ति जी मैं बताऊं, फिल्म का नाम है क्रिश और गाने के बोले कोई तुमसा नहीं, तो ये गाना मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को डेडिकेट करना चाहूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, धन्यवाद बहुत बहुत। सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।

0: और कोई हमारे श्रोताओं सा भी नहीं। तो आइए अब मिलते हैं दीक्षा जी से। हेलो
1: जी मैम।
0: जी दीक्षा जी, आप कहाँ से बोल रही हैं बताएंगी?
1: मैं ग्राम पाली पोस्ट पाली ब्लॉक बीघापुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, आप यही उत्तर प्रदेश से ही हैं, उन्नाव से। कैसी हैं दीक्षा जी? हेलो
1: जी मैम।
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप?
0: हम भी बढ़िया हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रम में?
1: मेरा फोन लग गया, बहुत खुशी हो रही और
0: वो तो हमको भी हो रही है। और उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगी ये बताइए।
1: मैं ये कहना चाह रही थी मैम, ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू करें जिसमें आप 5 सवाल पूछें।
0: अच्छा,
1: जितने चाहे उतने पूछें, लेकिन पूछे श्रोताओं से, और जो विजेता हो 5 सवाल बता लिए
0: उसको इनाम दे।
1: विजेता घोषित करिए। इस तरह से जो लोग रोज फोन लगाते हैं
0: अच्छा,
1: उनका रोज फोन नहीं आएगा।
0: आपको कैसे पता? क्या पता वो जो हमारे श्रोता हैं वो, हम तो ये जानते हैं कि जो लोग रेगुलर सुनने वाले हैं आकाशवाणी को, वो लोग इतना उनको ज्ञान मिला है, और तो वो कोई भी 5 सवाल हम उनसे पूछेंगे ना तो वो तुरंत के तुरंत आंसर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो हमको है अपने श्रोताओं पर।
1: तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगर जो लोग कर रहे हैं रोज फोन, अगर वो रोज विजेता घोषित करेंगे ना तो और उनका नाम होगा।
0: वैसे दीक्षा जी, हमारे लिए आप सभी विजेता हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भी अपने कार्यक्रम में कुछ पूछ लेते हैं तो आप लोग जवाब दे ही देते हैं, ये अच्छा लगता है हमको। बाकी देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर्स, ये जो प्रश्न उत्तर, ये एक क्विज के प्रोग्राम, ये सब अलग चलते ही चलते हैं ना। हमारा तो मेन है कि हम अपने श्रोताओं के दिल की बात, जैसे आज आपने अपने दिल की बात कही, बड़ा अच्छा लगा, तो ऐसे ही सबसे उनके दिल की बात जानें, उनके साथ में बात करें और उनकी पसंद का गीत सुनवाएं, यही हमारे कार्यक्रम का ध्येय है ना? तो
1: अपने परिवार का नाम ले लो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए, अरे उनको कैसे छोड़ सकते हैं आप।
1: मेरे पति हैं श्री भीमलाल पाली, मेरे बड़े बेटे हैं उल्लास पाली, छोटे बेटे उत्कर्ष पाली, और मैं दीक्षा पाली, और एक भैया हैं धर्मेंद्र भैया बीघापुर से जो उन्नाव जिले से, इनका फोन कभी नहीं लगता।
0: ओहो हो, कोई बात नहीं, उनको कहिए कि कोशिश, जैसे जैसे आप कोशिश करते हैं ऐसे वो भी करें, और फोन जरूर लगेगा, कभी भी लगेगा जरूर। ठीक है
1: जी मैम, धन्यवाद।
0: तो आप सुनना चाहते हैं शहीद फिल्म का गीत? ठीक है,
1: वो गाना है वो जोगी मैं तो लुट गई तेरे,
0: तेरे प्यार में। तो ये आप अपने पति जी को डेडिकेट कर रही हैं मेन हमारे हिसाब से। खुश हो जाएंगे। चलिए ठीक है, सुनते हैं ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में अब मिलते हैं। मेरी आवाज वापस आ रही है। हाँ जी, मनकारी से फूलचंद जी से। हेलो
1: हेलो दीप्ति जी, राधे राधे।
0: राधे राधे, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे हैं, और लगता है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छे हैं, अरे हम हमेशा ही अच्छे रहते हैं और जब इस कार्यक्रम में आते ना तो और अच्छे हो जाते हैं।
1: हाँ, लगा तो और भी मजा आ रहा है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए।
1: और मैं आपको बता दूं कि हमारा बुंदेलखंड जो है, समूचा बुंदेलखंड जो है, अभी हाल तो जो है बढ़िया गर्मी है।
0: हाँ सही है, वो तो गर्मी है। अब जून के महीने में तो होगी होगी ना, दिसंबर में थोड़ी होगी।
1: जी जी बिल्कुल होगी, और गर्मी होने ही चाहिए। गर्मी होगी तो पानी बरसेगा और गर्मी का आनंद भी मिलेगा।
0: हाँ, और हर उसके अपने फायदे हैं। देखिए, कुछ फल होते हैं जो कि इसी मौसम में हमको मिलते हैं खाने को, जैसे अभी आम पक रहे हैं, तो हमें तो बस इंतज़ार है अपने लखनऊ के दशहरी आमों का कि जब वो पेड़ से टपकें और कब हम लोगों को मिलें तो ये सब तो हाँ
1: दीप्ति जी मैं आपको बता दूं कि हमारे बुंदेलखंड में खजरी, जो खजूर का पेड़ कहते हैं जिसे,
0: अच्छा अच्छा
1: तो हमारे बुंदेलखंड में खजरी कहा जाता है।
0: अच्छा, तो वो
1: खजूर का, खजरी बहुत पकी है, अभी बहुत खजरी पकी है, थोड़ा पानी गिर गया 10-15 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: तो खजरी बिकट जो है, खजूर बहुत पकी है और लोग खाते भी हैं। जामुन भी जो है पकने वाली
0: हाँ, है। जामुन का भी तो है यहाँ तो। और फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर काली घटा वाले, काले फरेंदे बोले जाते हैं, तो वो जामुन बड़े वाले होते हैं वो, तो उनको जो है मटकी में रख के और कड़वा तेल और नमक लगा के जो उसको मिला के खाया जाता है ना, मजा आ जाता है, वाकई बहुत मजा आ जाता
1: बात है। और मैं आपको बता दूं दीप्ति जी के इस समय पे सत्तू जो होता है ना,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: सत्तू खाने से बड़ा अच्छा, अभी जो है मौसम बहुत अच्छा है सत्तू खाने का, और जो है सत्तू खाएं, बिरचन भी खाएं।
0: आपको हम एक चीज बताएं कि जो आजकल ना लोग कहते हैं प्रोटीन डाइट चाहिए, हमें प्रोटीन डाइट चाहिए, उसके लिए लोग जो है बाजार से आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर्स वगैरह खरीदते हैं, उससे बेहतर है जो हमारा देसी चने का सत्तू जो बनता है ना, उसमें तो बहुत प्रोटीन होता है, तो उसको अगर सब लोग खाएं तो वो एक तो केमिकल नहीं, उसमें कोई चीज़ हमारे शरीर को नुकसान करने वाली नहीं, और सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा उससे।
1: जी जी।
0: तो ये जो देसी चीज़ें हैं ना, मतलब जो गांव-गांव में बहुत बढ़िया होती हैं, लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन समझना चाहिए उस चीज़ को।
1: जी बिल्कुल दीप्ति जी, मैं और बता दूं आपको कि आप बेर जो होते हैं ना, बेर,
0: हाँ बेल का शरबत पीजिए ना, वाह क्या बात कही आपने।
1: बेल बात जो ना आपने की, बेल तो बेल बड़ी, मतलब बेर होते हैं, बेर,
0: बेर
1: का होता है।
0: अच्छा, बेर भी होते हैं और एक बेल भी होता है, तो
1: बेल का तो अभी बहुत आनंद आ रहा है, हम कुछ दिन जो है शरबत घोल के पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: और जो झाड़ियों में बेर होते हैं वो भी खाने में मजा आता है, वो तो खैर मार्च में ही आ जाते हैं बेर।
1: जी
0: तो
1: जी बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं वो नहीं, मतलब बेर की बिरचन पिसता है चक्की में, आटा की चक्की होती
0: अच्छा,
1: है जो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो उसका बेर का बिरचन पिसता है, बिरचन खाइए आप तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छा, पेट साफ होगा और ठंडा होता है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, आज आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने को मिली। और अब सुनवाते हैं गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म का नाम है सड़क, गीत की बोले के रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। और हमारे कुछ मित्र हैं, सबसे पहले तो हमारी दीप्ति बहन है, उनको डेडिकेट करेगा। प्रेमदास बाबा जी हो गए, बेटा सिंह यादव जी हो गए, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल, मांगीलाल चंदेल हो गए, दिनकर सिंह जी हो गए, विजय कुमार पांडे, देवी शंकर शुक्ला जी हो गए।
0: लेकिन हम ये चाहेंगे सबके पास रहने को घर हो और सोने को बिस्तर भी हो।
1: राहुल कुमार जी हो गए, अमित कुमार जी हो गए, और जयपाल यादव जी हो गए, सारे श्रोता जितने सुनाए सभी को, और हमारी पूनम बहन जी है कानपुर,
0: जरूर उनको भी। ठीक है,
1: पूनम बहन जी को भी डेडिकेट रहेगा। बहुत बहुत सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, रमेश प्रजापति जी बोल रहे हैं। जी
1: प्रणाम।
0: अरे नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप रमेश प्रजापति जी बोल रहे हैं?
1: जी जी जी जी, रमेश प्रजापति बोल रहा हूँ, ग्राम माया तहसील रेंटी, जिला सीहोर, एमपी से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: स्वस्थ हैं, मस्त हैं, गर्मी के आनंद ले रहे हैं, जेट की जोफेरी का आनंद है इस समय, मस्त ले रहे हैं।
0: किस चीज का?
1: कूलर की हवा में बैठे हैं, दुकान पे आपका अच्छा। प्रोग्राम सुन रहा था।
0: हाँ हाँ
1: हाँ। तो क्यों 10-12 रोज हो गया फोन लगाया नहीं, तो मैंने कहा आज तो मतलब मैं लगाऊंगा, क्योंकि अगले सोमवार भी आप आए थे लेकिन मेरा फोन नहीं लगा।
0: कोई बात नहीं, चलिए इस सोमवार लग गया आपका फोन तो।
1: जी
0: और बताइए, क्या क्या आपने कुछ कहा था, कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं?
1: मैं दुकान में बैठा हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ, कपड़े की दुकान सिलता हूँ, कपड़े सिलता हूँ, तो दुकान में बैठा हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: बढ़िया बढ़िया। तो आजकल कौन तरह के कपड़े सिल रहे हैं?
1: आज पेंट शर्ट कुर्ता पजामा।
0: अच्छा, कुर्ता पजामा वगैरह। अभी तो थोड़ा शादियों वगैरह का मौसम नहीं है, तो अभी थोड़ा वो सब चीजें नहीं हो रही होंगी। तो चलिए। हाँ
1: हेलो
0: हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है।
1: जी
0: तो बढ़िया है, अपने काम में भी मन लगाइए और कार्यक्रम भी सुनते रहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी तो, जी जी, काम चोर फिल्म का है, तुष्यंत गीत लगाई सर ने, और हमारे मित्र बैठे हैं लाइक भाई, उनसे जरा बात कर लो आप।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, आप लाइक भाई जी हैं?
2: आप
0: हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपने कभी कॉल नहीं किया हमारे कार्यक्रम में?
2: अरे मैडम, लगता ही नहीं हमारा फोन।
0: चलिए कोई बात नहीं, आज अपने
2: लगा रहा है।
0: मित्र के बहाने आपने हम लोग हमारे कार्यक्रम में बात कर ली, अच्छा लगा। ठीक है,
2: धन्यवाद।
0: तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत
2: जी,
0: जो
2: जी।
0: आप कह रहे थे।
2: ठीक है मैडम,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, हमने भी आपसे प्रीत लगाई है और इसीलिए आपसे बात करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमसे बात करने के लिए आ गई है हमारी, हेलो, रिंकी पिंकी।
1: दूरियों की ना परवाह किया कीजिए, दूरियों की ना परवाह किया कीजिए, दिल जब भी चाहे याद कर लिया कीजिए। ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, दिल जब भी चाहे बुला लिया कीजिए।
0: हाय दीदी जरूर, हम तो बुलाते ही हैं, हम सबको बुलाते हैं कि आइए।
1: आप वहाँ से बुलाती हैं और हम यहाँ से टिकट कटा के सीधा आपके स्टूडियो में आपके पास आ जाते हैं।
0: बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, बहुत स्वागत है आपका।
1: आप बताइए कैसी हैं आप?
0: हम तो बढ़िया हैं।
1: कैसा है
0: आप सुनाइए, मौसम कुछ कुछ अच्छा लगा आज?
1: मेरे रायबरेली का मौसम मैम, जितनी प्यारी आपकी स्माइल है ना, आप मुस्कुराती है तो मतलब श्रोताओं का दिन बन जाता है ना, वैसा ही आज रायबरेली का भी मौसम।
0: अरे वाह,
1: बहुत खुशनुमा मौसम हो गया।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने
1: जी। और आप आती है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती। पता है आपको श्रोता इतना पसंद करते हैं कि आपके कार्यक्रम में कॉल लगाना मतलब समंदर में मोती ढूंढने के।
0: अरे वाह, अरे तो आज आपको मोती मिल गया
1: जी जी मैम, हम अपने आप को ना खुश नसीब भी समझते हैं।
0: अरे हम भी खुश नसीब समझते
1: हैं। बहुत अच्छा है कि मैम ट्राई करते हैं, कभी मुलाकात हो जाती है हमारी, अमला हम लोगों की भी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपके घर में जो तैयारियां हैं बढ़िया चल रही होंगी, हमें उम्मीद है
1: जी मैम,
0: है ना?
1: सब मैम बढ़िया है। और अभी तो मैम घर पे ज्यादा विशेष कोई काम नहीं रहता है, तो मैम जल्दी से काम खत्म करके आपका कार्यक्रम सुनने के लिए मैम फ्री हो गए हैं और इत्मीनान से आप कॉल भी ट्राई कर रहे थे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर सुनवाते हैं आपके रिंकी पिंकी के लिए
1: जी। और मैम मैं गाना डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: जरूर करिए।
1: सबसे पहले तो मेरी प्यारी और मेरी सबसे अच्छी और चुलबुली सी दीप्ति जोशी दीदी, और मेरी दीदी है पूनम दीदी, गुंजन तिवारी और ओम नारायण अंकल हैं जो मुझे गाना डेडिकेट करते हैं।
0: अच्छा,
1: उनको भी। और मेरी दोस्त है साहिब अंसारी और समा परवीन अंसारी और महक अंसारी और साजिया अंसारी और मोहम्मद फैज भाई और जावेद अख्तर सर और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को।
0: सबके लिए आपने पसंद किया है गुनहगार फिल्म का ये गीत, विनोद राठौर
1: और दीप्ति दीदी। मेरी एक छोटी सी बिटिया रानी है, उनसे बात कर लीजिए।
0: अरे जरूर जरूर जरूर। हेलो,
1: उनका नाम शुभी गौतम।
0: हेलो शुभी,
1: भाग गई नहीं कर
0: शर्मा आ गई, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे जब बड़ी होगी ना तो फिर आपकी तरह खूब सारी बातें करेगी।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: मैम, कैसी हैं आप?
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पिंकी बोल रही है?
1: मैं रिंकी बोल रही
0: हूँ। रिंकी बोल रही है,
1: बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए। ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: मैसेज देना चाहती हूँ अपनी दोस्त को, वो जो गुंजन तिवारी हैं और जो ओम नारायण अंकल हैं ना, ये हम लोगों को गाना डेडिकेट करते हैं। मैम ये लोग हमें कैसे जानते हैं जरूर बताएं।
0: जरूर जरूर,
1: आपके कार्यक्रम में।
0: ठीक है ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। अच्छा, नमस्ते नमस्ते।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं शबनम अब्बासी जी। हेलो।
1: हेलो दीदी, आदाब।
0: आदाब, कैसी हैं शबनम जी? और
1: जी दीदी, कहते हैं तारे भी चमकते हैं बादल भी बरसते हैं, तारे भी चमकते हैं बादल भी बरसते हैं। दीदी आप तो हमारे दिल में रहती हो, फिर भी हम मिलने को तरसते हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, जब हम आपके दिल में रहते हैं तो फिर आप क्यों तरसते हैं।
1: दीदी ये सोचते हैं अब हम, हमारी चाहत पूरी हुई फिर भी हम मिल रहे हैं।
0: चलिए शबनम जी,
1: आप कैसी हो? सभी परिवार में लोग कैसे हैं?
0: सब बढ़िया है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और हाँ, एक खास बात है कि जैसे कि सबको पता है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक गर्व की बात है। और हमको इस बात का ज़्यादा गर्व है कि हमारा जो अपने श्रोताओं से जो संबंध है ना, वो दिन पर दिन, अब 90 साल हो गए हैं, हो रहे हैं, लेकिन अभी आगे 100 साल भी होंगे और आगे हमारे बढ़ता ही रहेगा, उम्र तो है ना। और वैसे ही श्रोताओं का प्यार भी हमारे लिए बढ़ता रहेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी शबनम जी?
1: दीदी मैं तो यही कहूँगी कि मतलब आगे भी इतना ही प्यार जुड़ा रहे और कभी ये कम नहीं हो। और इंशाल्लाह मैं तो ये कहूँगी सभी श्रोताओं इतना प्यार दें। और दीदी बस और शब्द नहीं है इनके।
0: आपने तो गाना ही वही चुना है, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करेंगे।
1: दीदी मैंने ये गाना सुना और दीदी आज मैंने एक महीने बाद कॉल लगाई है, मैंने सोचा सभी को बधाई दूंगी और जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगी, इसीलिए मैंने कॉल लगाई। और दीदी देखो मैंने सच्चे दिल से लगाई तो कॉल लग गई।
0: बिल्कुल, और क्या, वो तो है ही, दिल की जो सच्ची पुकार है वो हमेशा पहुँच जाती है ना। तो ऐसे ही आकाशवाणी भी हमारे सभी श्रोताओं की सुनता है और कोशिश करता है कि आकाशवाणी परिवार आपके लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करे और हमारे श्रोता लाभान्वित हों और उनका मनोरंजन भी हो। ठीक है, तो
1: जी दीदी वो कहते नहीं है दीदी, आंखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, आंखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देखकर दिल को बड़ी राहत हो जाती
0: है। हा हा हा, क्या बात है, क्या बात है।
1: दीदी अभी आपने उन दीदी से बात करी, रिंकी
0: पिंकी,
1: रिंकी पिंकी, प्यारी आवाज लग रही थी। और दीदी आप लोगों की आवाजें सुन के मेरे दिल में ये सोच रही थी बस कॉल लग जाए, मैं भी बात कर।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: दो नाम लेना चाहते?
0: ले लीजिए, ले लीजिए।
1: जैसे संग में है शारून अंसारी, संग में आप और मैं शबनम अब्बासी, और सभी स्टाफ के जो सुन रहे हैं और सभी के लिए ये गाना डेडिकेट करूंगी, आज मेरे इतने अच्छे मौके पे कॉल लगी है।
0: हाँ, ये इलाका फिल्म का गीत है जो आपने पसंद किया है, मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाजों में। ठीक है, सुनवाते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
2: प्यार से भी ज्यादा तुझे

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हम हर दिल अजीज विनोद पांडे जी से। हेलो।
1: रिश्ता हमारा इस जहान में सबसे प्यारा हो,
0: वाह,
1: जैसे जिंदगी को सांसों का सहारा हो,
0: वाह,
1: छोड़ न देना साथ उस पल में जब हम अकेले हो और सहारा तुम्हारा हो, यानी दिनकर जी का हो
0: जी। अच्छा, आदरणीय जी विजय पांडे जी। हाँ बताइए बताइए।
1: साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार विजय पांडे जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। स्टूडियो की स्थापना दिवस,
0: आकाशवाणी के स्थापना दिवस
1: को रहा उस दिन, तो
0: हाँ, उस दिन आप
1: से ही थे।
0: हाँ, हाँ,
1: लेकिन अब इस वक्त 90 मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस आकाशवाणी केंद्र में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान तरन्नुम की मलिकाए गजल बेगम अख्तर, वायलिन वादक जी सोफ,
0: सही बात
1: जी
0: है,
1: जो
0: वी जी जो,
1: सरोज वादक अली अकबर खान, तबला वादक नवाज अहमद खान, जान थेरकवा खान जैसे कलाकार केंद्र से जुड़े थे।
0: सही बात है।
1: मशहूर संगीतकार मदन मोहन और तलत महमूद ने संगीत की शुरुआत यहीं से की थी।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: रमैया यानी चंद्रभूषण द्विवेदी, बासा बुआ यानी सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने
0: जी
1: श्रोताओं के दिल में राज किया,
0: वाह,
1: और अपनी खास जगह बनाई। दोनों ने अवधि बोली को एक नया आयाम दिया।
0: बिल्कुल सही।
1: लखनऊ आकाशवाणी ने 20 अगस्त 2000 को इंटरनेट के माध्यम से एक FM
0: रेनबो
1: चैनल का शुभारंभ किया, जो आज भी चल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: 15 अप्रैल 1953 से यहाँ समाचार वाचन का सफर शुरू हुआ, जहाँ से पहली बार यहीं से आवाज गूंजी थी पंडित यज्ञदेव के मुखार बिंद से, और उस दिन हम लोगों ने उनको देखा अपनी आंखों से।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, और हम लोग गवाह हैं उस मोमेंट के, उस पल के, कि जब उन्हें सम्मानित किया गया था, और ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने उनको अपने सामने देखा। तो
1: देखा,
0: और आप मुझे
1: 99 वर्ष के हो चुके, ये तो संयोग था कि हम लोग उनके दर्शन करके
0: बिल्कुल
1: अपने को गौरवान्वित महसूस भी किए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऐसे लोगों का दर्शन करना अति दुर्लभ हो जाता है।
0: सही बात है। और हमें खुशी है इस बात की कि आप जैसे श्रोता, जो कि आकाशवाणी के इतने अभिन्न अंग हैं, इतने सालों से आपने आकाशवाणी को एक अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, और आपने आज जितना सबके नाम लिए हैं ना, इतने बड़े बड़े कलाकारों के, और इतनी खुशी आपने जाहिर की है, हम आपके ऋणी हैं, है ना? आप जैसे श्रोता अगर हैं तो आकाश

0: प्राणी 90 साल क्या, 100 साल क्या, 150 साल क्या, आगे बढ़ता ही जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने गीत चुना है मोहम्मद रफी की आवाज में राजकुमार फिल्म का।
1: मैं अपने हर दिल अजीज पूर्व यस्सो शिव शंकर सिंह यानी बहराइच के हैं, और पूर्व प्रधानाचार्य देवी शंकर शुक्ला अयोध्या स्टूडियो के बेस्ट एंकर जनाब अमरजीत सिंह के लिए समर्पित करना चाहूंगा।
0: जरूर जरूर, आप सबके लिए ये गीत प्रस्तुत है। धन्यवाद कॉल करने के लिए विजय पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: मोहम्मद रफ़ी के साथ आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज़, फिल्म थी राजकुमार। कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में अब स्वागत करते हैं चित्रकूट धाम से दिनकर जी का। हेलो।
1: एक बात थी, उस बात में एक राज था, उस राज में एक राज था, और उस राज को राज रहने दो, और रेडियो की अलार्म में बहन दीप्ति जी पहले भी सरताज थी, आज भी सरताज रहने दो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और बस ये है कि आप सबका प्यार है तो सरताज वाली कोई बात नहीं है। हम सब
1: दीदी जी, मैं पहले अमीन सयानी का जो है बहुत बड़ा जो है फैन था, और उसके बाद आप।
0: अरे ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, वो हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। अमीन सयानी जी की जो पोजीशन है, जो उनका ओहदा है, हम उनके सामने कुछ नहीं है।
1: बहुत शब्द होते थे, बहुत शब्द, मैंने उनका स्टेज शो भी दीदी जी देखा है। तो और दीदी जी एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं।
0: बताइए बताइए।
1: कि आपके जो है चैनल में कभी कभी दो नंबर चालू हो जाते हैं क्या, क्योंकि फोन पूरी देर इंगेज में बताता है, यानी उस फोन में किसी की बात नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर सब बताता है। अगर घंटी जाने से बात हो रही है तो बताएगा कि इसमें बात हो रही है।
0: अच्छा अच्छा।
1: लेकिन 5 मिनट फोन इंगेज में बता रहा है, उसमें किसी की बात नहीं हो रही है, और जब अंग्रेजी कॉलर को लिया जाता है तो बात होने लगती है, और फिर भी इंगेज में बताता है।
0: अब ये तो हमें कुछ नहीं पता इस बारे में।
1: के ही आने पर ऐसा होता है, एक शख्स के ही आने पर ऐसा होता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा।
0: कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए, क्योंकि ये हमें नहीं पता इस बारे में कुछ भी। ये सब टेक्निकल जो बातें होती हैं वो उसके बारे में हम नहीं जान सकते, लेकिन फिलहाल इतना है कि हमारी आपसे बात हो रही है, और आप कुछ हमको बताएंगे कि आप आकाशवाणी के 90 साल जो पूरे हो रहे हैं उस पर हमको कुछ बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है।
1: जी बिल्कुल दीदी, ये आपका स्थापना 38 में हुई थी और हमारे पास रेडियो 47 में आ गया, तो यानी कि हम 7-8 साल पहले थोड़ा लेट आया रेडियो, लेकिन

0: हमने पूरा बचपन जो हमारे 71 में जन्म हुआ और तब से हम रेडियो के साथ है, आज भी रेडियो के साथ।
1: बहुत अच्छी
0: जमाना
1: बात।
0: होता था कि हमारे गांव में 400 रेडियो थे, लेकिन अच्छा। आज 20 से 25 रेडियो।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो मैं ये कहता हूँ कि आकाशवाणी ऐसे प्रोग्राम दे रही है जिससे लोग श्रोता जुड़े रहे, ये हम सोचते हैं कि ये काफिला आगे तक जाता है।
1: बिल्कुल जाना चाहिए।
0: कि जैसे बहुत सी चीजों का विलुप्त हो गए, ये भी कहीं विलुप्त हो जाए तो
1: नहीं नहीं नहीं,
0: हार्दिक इच्छा है कि रेडियो आगे तक जाता,
1: हमें
0: आगे इसका काफिला बढ़ता ही।
1: हमें अपने श्रोताओं पर पूरा विश्वास है कि उनका प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा और हम आगे भी ऐसे ही दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करते रहेंगे, एक से एक कार्यक्रम लाएंगे आप सबके मनोरंजन के लिए, आप सबके ज्ञानवर्धन के लिए। ठीक है, तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत। आप
0: दो तीन मित्र हैं कि बहुत लोगों के लग गए हैं फोन, हमारे जो प्रेम दास बाबा जी हैं, बुजुर्ग हैं, 80 साल के हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: और बेटा सिंह जी हैं और हमारे जो है मांगी लाल चंदेल जी हैं।
1: ठीक है,
0: सभी को ये गीत बेरिकेट रख।
1: ये गीत आपने चुना है राजा और रंक फिल्म का, मोहम्मद रफी की आवाज में। ठीक है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं। हेलो,
1: हेलो।
0: राहुल जी से है ना? राहुल जी, आपके पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे।
1: जी
0: जी राहुल जी, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: जी जिला इटावा पोस्ट कर्री ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: जी
0: कैसे हैं आप राहुल जी?
1: बढ़िया है, लेकिन आपका प्रोग्राम सुनना ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी अच्छा लग रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: कार्यक्रम में ये कहना चाहता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ
0: ये
1: लोग
0: तो हो
1: अपना
0: रही
1: ध्यान
0: है। हाँ,
1: रखें,
0: सब अपना
1: बड़े
0: ध्यान रखेंगे।
1: बुजुर्गों का ख्याल भी रखें।
0: आप आकाशवाणी के कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं? और जैसे आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने वाले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी बहुत पुराने से होता है, क्योंकि 2001 से प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। हेलो,
0: चलिए तो सुनवाए। हाँ जी, सुनवाए फिर आपकी। आपने जो पसंद किया है गीत, कौन सा गीत है जरा बताएंगे एक बार फिर से?
1: गाने के बोले ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते। फिल्म
0: हाँ, ये किस फिल्म का है?
1: तो नहीं दीदी मालूम है, लेकिन गाना मैंने सुना था तो मुझको याद है ये गाना, और
0: चलिए
1: अच्छा भी लग रहा है।
0: ठीक है, तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत
1: कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ,
0: जल्दी
1: ज्यादा
0: से।
1: नहीं, दो तीन।
0: हाँ, जल्दी से कर लीजिए।
1: इटावा से ओम नारायण पुष्पा जी हो गए, और मांगेलाल चंदेल भाई साहब हो गए, और दिनकर सिंह जी हो गए, और पूरन वर्मा जी हो गए, और मिंटू तिवारी जी हो गए,
0: ठीक है, तो सुनते हैं
1: और जितने
0: आपकी।
1: लोग सुन रहे हो सबके लिए।
0: ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

कार्यक्रम में अब हम मिलते हैं उनसे जिनकी आवाज़ हमारे श्रोताओं को पता है, वो जानते हैं, वो सुनते हैं उनकी आवाज़ को। अयोध्या आकाशवाणी के अमरजीत सिंह जी, हेलो।

0: जिनसे
1: और आज मुझे हाँ। आकाशवाणी लखनऊ की एक आपकी वो थी शीला मिश्रा, कृष्णा मिश्रा थी एक,
0: जी जी जी
1: वो जब फौजी भाइयों का कार्यक्रम करती थी तो हाँ। एकदम से लगता था कि यहाँ कोई फौज में पहुंच गया वहाँ पर। फौजी भाइयों को जय हिंद, वो हाँ। इतना बढ़िया बोलती थी हाँ। आज मुझे याद है
0: हाँ। हमने उनसे सीखा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों के लिए तो वो बहुत ही मतलब माननीय, आदरणीय, और उन लोगों से जो बड़े सीनियर हमारे अनाउंसर्स हैं।
1: एक बात केवल और कहूंगा बस, कि सुबह जो आकाशवाणी लखनऊ से प्रोग्राम आता था, आज सुबह बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, उसको बंद कर दिया गया।
0: बंद नहीं किया है, बिल्कुल आज भी आता है, लेकिन वो कुछ कम कर दिया गया है, कुछ अलग अलग
1: आना चाहिए। देखिए हर दिन की बातें तो होनी चाहिए रोज।
0: तो आपकी
1: शास्त्रीय संगीत, मैं नहीं कहता कि आप हाँ हाँ शास्त्रीय संगीत 10:30 बजे दे दीजिए।
0: हाँ हाँ, तो आपकी बात हम उन तक पहुंचा देंगे, अधिकारियों तक, ठीक है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो हो
1: कि मॉर्निंग में सारे दिन भर की जानकारी उससे मिल जाती थी।
0: हाँ
1: में।
0: ये तो है, बात सही है।
1: तो एंकर पेश करते तो और
0: हाँ,
1: अच्छा लगता था।
0: हाँ, बड़ा लाइवली प्रोग्राम
1: नहीं है और ज्यादा।
0: नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात हो गई। और तो
1: जी।
0: सुनवाते हैं आपके पसंद का गीत।
1: दीप्ति जी, आप हफ्ते में 2 बार आया कीजिए।
0: उस पर हमारा कोई बस नहीं है।
1: चलिए,
0: जब भी बुलाया जाएगा तभी आएंगे।
1: सुनना चाहते हैं, क्या किया जाए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है, और यूं ही हमें सब श्रोताओं का प्यार मिलता रहे। तो अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आप सुनना चाहते हैं 1976 की बारूद फिल्म का ये गीत, ठीक है?
1: शुक्रिया जी,
0: धन्यवाद, नमस्कार कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आज जिन श्रोताओं से हमारी बात हुई बहुत खुशी हुई बात करके, और जिनके फोन नहीं लग पाए उनसे हम क्षमा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में उनका फोन जरूर लगेगा, हमें पूरी उम्मीद है, वो निराश ना हो और कोशिश करते रहें। तो आज इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
1: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
1: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
1: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
1: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
1: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।

0: जी
1: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे ही गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।

0: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक है
1: अब बना।
3: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: ठीक है
1: चल चल चल चल चल हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: ठीक है चल चल
0: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोचू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
3: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोचू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर

0: तुम कहो तो उसे त्रिविंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूं। हां, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और

0: महाराज ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा, इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज, गायन वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
1: अरे तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
0: महाराज इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
1: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं, राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा।

0: इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

धरती फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आंखें फिल्म से। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने और आवाज़ दी लता मंगेशकर ने।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे महबूब की मेहंदी फ़िल्म का ये नगमा। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: सपनों को देना है नई रफ्तार, तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपने दौर के वो खूबसूरत नगमे जो आज भी हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमों का, तो आइए सुनते हैं आरजू फिल्म का गीत, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, धुन शंकर जयकिशन की, आवाज़ लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं इज्जत फिल्म का ये नगमा, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: इज्जत फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है।

0: न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। थाना गदागंज जनपद रायबरेली से रितेश कुमार ने सूचित किया है। ये रहने वाले मनिहार गर्वी सुदामापुर थाना गदागंज के हैं। इन्होंने सूचित किया है कि पूजा 9 मई 2026 से मनिहार गर्वी सुदामापुर से लापता हो गई हैं। पूजा की आयु लगभग 28 वर्ष, कद 5 फिट, गोल चेहरा, रंग सांवला, चेहरा सामान्य है। श्री अमृतलाल ने ग्राम भखरी मजरे उमरन थाना सलोन रायबरेली थाना से सूचित किया है, रायबरेली से सूचित किया है कि प्रतिमा 2 मई 2026 से पहेरवा चौराहा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली से लापता हो गई हैं। प्रतिमा की आयु 22 वर्ष, कद 5 फिट 2 इंच, सामान्य शरीर, रंग सांवला और चेहरा गोल है। श्रीमती निर्मला ने छोटा सरबहदा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि सुनीता 4 मई 2026 से लापता हो गई हैं। सुनीता की आयु लगभग 19 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, इकहरा बदन, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आप हमें इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

0: आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
2: सुनिए कहानी कविताएं नाटक मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
3: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। और श्रोताओं हम आपको बता दें आज रात 10 बजे आप सुनेंगे कीर्ति श्रीवास्तव का लिखा रूपक विकल्पों के द्वार, प्रस्तुति अतीश कुमार श्रीवास्तव की। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे कहानी उलझन प्रसारित की जाएगी, कहानीकार हैं मुक्तिनाथ झा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में पंडित कैलाश श्रीवास्तव के गाए गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने लखनऊ मेट्रोलॉजिकल सेंटर को रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे लखनऊ मरकज को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अख्तियार मिल जाएगा। लखनऊ में मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में जितनी तरक्की वजीर आजम के दौरे इक्तदार में हुई है कभी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 तक सिर्फ 17 मौसम राडार थे, अब 50 हो गए हैं। आइंदा 2 वर्षों में 2 और जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि RMC का दर्जा गंगा के मैदानी इलाकों तक ज्यादा रसाई फराहम करेगा। RMC का ओहदा उत्तराखंड के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में मौसम की निगरानी, दुरुस्त पेशनगोई और बरवक्त कबल अज वक्त वार्निंग खिदमात को मजीद मजबूत करेगा। इससे भारी बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और मौसम से मुतालिक दीगर वाकयात के लिए बेहतर तैयारी मुमकिन होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बराह रास्त भर्ती 2025 का तहरीरी इम्तिहान आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुआ। इम्तिहान 8, 9 और 10 जून 2026 को रियासत के तमाम 75 जिला मुनक़िद होगा। भर्ती के अमल के तहत 72,679 असामियों के लिए 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं। इम्तिहान के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 1,183 इम्तिहान मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में सफर के दौरान किरायों में 50% रियायत फराहम की जा रही है। इम्तिहान रोजाना 2 मरहलों में लिया जाएगा। पहला मरहला सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा मरहला दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड डायरेक्टर जनरल SB शिरोडकर ने कहा कि दरखास्त दहिंदगान की बड़ी तादाद को देखते हुए हर शिफ्ट में तकरीबन 4,81,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान के पुरमन निकात को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम महकमे पुलिस और जिला हुकाम की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इम्तिहान मराकज की कड़ी निगरानी की जा रही है। CCTV निगरानी के निजाम नस्ब किया गया और मराकज पर मुस्तकिल मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर्स और पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में उम्मीदवारों को नेक ख्वाहिशात दी हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के नाम पाती में लिखा कि सनातन सकाफत में फितरत में मौजूद हर जानदार चीज़ को तख्लीक का अटूट हिस्सा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनु के तहफ़ुज़

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सब बहनन का वंदना के नमस्कार। श्रोता बहनी, जब रंग बिरंगे फूलन का देखो, क्यारियन में रंग बिरंगी सब्जियन का लाग देखो, तो कतना नीक लागत है। अब एक काल हम अपनी एक सखी के घरे गईन रहे, हुआ उनकी सास घर के पिछवाड़े खाली परी जमीन पर खूब सुंदर क्यारियन का बनाए के वही माँ मेर मेर के फूल फल और सब्जियन का बोए रही। मने लौकी, तरोई, कुमड़ा, घुइया, करेला, बैगन, मिर्चा, टमाटर और भी ना जाने काका। उनके फुलवारी माँ घूम के तो मन आनंदित हो उठा। मन में यह सोचा कि जब हमारी सखी की सासू अम्मा अतनी उम्र में काम कर रही हैं, बागवानी कर सकती हैं, तो हम सबका है नहीं। एक तो घर के सुंदरता बाढ़ी, दूसर कुछ साग सब्जी हमका घर में ही मिल जाई, साथ में पूजा खातिर फूल भी। श्रोता बहनी, हरी भरी फुलवारी हमारी मेहनत के फल होत हैं। बीज बोब, रोजे पानी देब, खर पतवार निकारब, घामे और छैया के ध्यान रखब, और फिर जब क्यारियन माँ या गमलन माँ पौधा जो उन्हें लहरात हैं, तो लागत है कि हमार मेहनत सफल हो गए है। फुलवारी घर के श्रृंगार तो करते है, साथ माँ हवा का साफ करत है। अजवाइन, तुलसी, ग्वार पाठा, गेंदा, जराकुश जैसन पौधा कीड़ा मकोड़ा का भी दूर रखत हैं। तितली भंवरा आवत हैं, चिड़िया चाहकती हैं, तो मानो दुआरे से लई के सगरा घर आंगन जीवित हो जात है। और घर के लड़कन बच्चन का भी प्रकृति से जोड़े के सबसे आसान तरीका है कि उनका एक गमला या क्यारी के रखरखाव के जिम्मेदारी दे दो। श्रोता बहनी, आज के समय में हरी भरी क्यारी दवाई के काम कर सकत है। मोबाइल, टीवी से थकी

मन का सुकून देते हैं। मन यदि परेशान है तो 2 मिनट अपनी फुलवारी में बैठ के जो उन्हें बिताए लो, परेशानी आधी हो जाई। तो बहनी, चाहे छोट से खाली परी जमीन होए, अंगना द्वारे या घर के पिछवाड़े या अटरिया पर गमला, उनमा पेड़ पौधा जरूर लगावें। बढ़िया गोबर के खाद डारो या घर में सब्जी पत्ती के छिलका के ऑर्गेनिक खाद बनाए के डारो, पानी बचाए के डारो, और जब हरी भरी फुलवारी झूमी तो समझ लो प्रकृति जीवित हो उठी आपके घरे द्वारे। तो ई तो रही बात हरी भरी क्यारी फुलवारी के। और बहनी, जब हरा सब्जी घर में लागी तो पति महोदय भी खुश, ई मारे कि उनका अब रोजे झोरिया उठाए के बाजार न जाए परी। तो हरा सब्जी का अपने घर में लगाए के बारे में कौन बात कही जा रही है, चलो सुना जाए खेमटा मा। स्वर हैं अनीता मिश्रा बहनी के।

0: श्रोता बहिनी, हम सबै का मनोरंजन के रूप में कहानी सुनब पढ़ब नीक लागत है। तो केहू का चुटकुला तो केहू का कविता लिखब सुनब नीक लागत है। और कविता तो ऐसन कला है जिके माध्यम से हम अपनी बातन का चुने भय सटीक शब्दन में पिरोए के दूसरन तक पहुँचा देते है। तो यह बात पर आज हम लेके आए हैं कविता पाठ, जी का सुनाए रही हैं डॉक्टर अलका गुप्ता बहिनी। तो चलो सुना जाए।
1: वंदे मातरम, मैं डॉक्टर अलका गुप्ता प्रियदर्शनी आप सभी के बीच कुछ कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आप लोग कविता का आनंद उठाइए। मेरी पहली कविता है पानी की अद्भुत कहानी। पान

और मेरी तीसरी कविता है चंचल तटिनी नदी। तो सुनिएगा। चंचल तटिनी कल कल करती बहती रहती है निष्काम, चंचल तटिनी कल कल करती

0: अभिराम, मेरी अगली कविता है नारी से जगती आधार। नारी से जग की उत्पत्ति, नारी है जग की आधार। नारी से जग की उत्पत्ति, नारी है जग की आधार। नारी से अवनि की शोभा, नारी से अंतर विस्तार। नारी से गर्व और गरिमा, देवों में उत्तम स्थान। भूत भविष्य है वर्तमान, नारी इस सृष्टि का सार। नारी इस सृष्टि का सार। नारी है ममता की मूरत, नारी है ममता की मूरत। करती त्याग और बलिदान, सदा समर्पित रहने वाली। दया धर्म पहने परिधान, कोमल सौम्या दिखने वाली। कोमल सौम्या दिखने वाली, अंदर से मजबूत बड़ी। सदा सहारा सबको देती, करती शब्दों का विश्वान। करती शब्दों का विश्वान। माली है वह खुद उपवन की, माली है वह खुद उपवन की। रखती है वात्सल्य समार, नारी सुघड़ सौम्य सी रम्या। काली दुर्गा का अवतार। प्रीत प्रेम की है परिभाषा, प्रीत प्रेम की है परिभाषा। भरना चाहे सदा उड़ान, इतिहास नवल हरदम गढ़ती। इतिहास नवल हरदम गढ़ती, प्रेरित करती सदा बहार। प्रकटी सौम्य रूप में तरुणी, उपमेय और उपमान बही। प्रकटी सौम्य रूप में तरुणी, उपमेय और उपमान बही। सबको पूरित भोजन करती है, अन्नपूर्णा सम्मान गही। पुरुष प्रधान समाज सदा नारी के बिन अस्तित्वहीन। पुरुष प्रधान समाज सदा नारी के बिन अस्तित्वहीन। पर नर नारी दोनों मिलकर निर्मित करते समाज मही। पर नर नारी दोनों मिलकर निर्मित करते समाज मही। पर नर नारी दोनों मिलकर निर्मित करते समाज मही। नारी से जग की उत्पत्ति, नारी है जग की आधार। नारी से अवनी की शोभा, नारी से अंबर विस्तार। नारी से अंबर विस्तार। नारी से गर्व और गरिमा, देवों में उत्तम स्थान। भूत भविष्य है वर्तमान, नारी इस सृष्टि का सार। नारी इस सृष्टि का सार। नारी इस सृष्टि का सार।
1: हाँ तो श्रोता बहनी, अबे हम सबे सुना कविता पाठ जी का सुनाइन रहे डॉक्टर अलका गुप्ता बहनी। तो अतनी नीक नीक कविता सुनावे खातिर हम डॉक्टर अलका गुप्ता बहनी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब श्रोता बहनी बढ़ चला जाए एक छोट से अंतराल की ओरिया।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोता बहनी, ई बेरिया गर्मी के छुट्टी भी लड़कन बच्चन के चल रही है। और ई छुट्टी माँ बहुत मनई पहाड़न पर घूमे जाते हैं या समुद्र किनारे छुट्टी बितावे जाते हैं। और कुछ सखियां बहनी होरी तो अपने नैहरे भी जाती हैं, जहाँ भौजाई के संगे ननन रानी के खट्टा मीठा रिश्ता होत है। साथ माँ होत है हंसी ठिठोली, जिसे घर में रौनक छा जात है। अब हंसी ठिठोली माँ भौजी रानी कौन बात कर रही है, चलो सुना जाई झूमर गीत माँ। स्वर हैं संजोली पांडे बहनी के।

श्रोता बहनी, आज से ठीक 90 साल पहले 8 जून 1936 का एक आवाज जन्म लेहिन रहा है, जौन बाद मा देश के आवाज बन गई। जी हाँ श्रोता बहनी, आज यानी 8 जून का आकाशवाणी 90 साल के सफर पूर कर रही है। बताओ चली कि 8 जून 1936 का ही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक रूप से नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखा गवा। बाद में 1956 में आकाशवाणी नाम दीन गवा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यही के ध्येय बना। श्रोता बहनी, आकाशवाणी केवल रेडियो ही नहीं बल्कि हमरे घर का सदस्य बन गवा। जब टीवी मोबाइल नहीं रहे तब किसान के गुरु, बच्चन के मित्र और गृहणियन के सखी सहेली सब आकाशवाणी ही तो रहा। फरमाइशी गीत संगीत, खेती की बातें, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, खेल मनोरंजन, हर घर आंगन से जुड़ा आकाशवाणी। आज आकाशवाणी सिर्फ रेडियो पर ही नहीं बल्कि मोबाइल ऑनलाइन हर जगह है, पर यह के आत्मा वही है, सूचना शिक्षा और मनोरंजन। तो आओ श्रोता बहनी, हम सब मिल के कही धन्यवाद आकाशवाणी। तुम आवाज नहीं एहसास हो, किसान के फसल के खबर तुम, फौजी के घर के चिट्ठी तुम और माँ की लोरी भी तुम। आकाशवाणी 90 साल एक राष्ट्र एक आवाज, जो कि बरसों बरस गूंजत रही आगे भी। और बात जब गीत संगीत मनोरंजन के कीन है श्रोता बहनी, तो यही बात पे चलो सुना जाए नकटा। स्वर हैं कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे बहनी के।

और यही गीत के साथ अब कार्यक्रम के बिरिया समाप्त हो रही है। तो ई मनोकामना के साथ कि हमारी सभी श्रोता बहनी हो रही प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और सदैव बनी रहें आकाशवाणी के हिस्सा। तो यह कामना के साथ वंदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें सुन रही थीं अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। सुनना चाहते थे बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से रामचंद्र माखीजा का फिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा

एवं पूरा माखीजा परिवार। कार्यक्रम का अगला गीत अपना पन फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ सुनना चाहते हैं। राम खेलावन कुरसट, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनी राम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव और राम प्रसाद। तो आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं राम शरण विश्वकर्मा। आपने लिखा है आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई हो। रामशरण जी, आपको और हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। आप सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलकें का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

आप सुन रहे हैं सड़क फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। गीत सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आप लिखते हैं, भारत के रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और रक्षा प्रणाली में जुटे हुए सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। शहीद फौजी हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को याद करते हैं, ये गलहौटी गांव मोगा जिले के रहने वाले थे। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं? किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, रिचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार एवं विजय पांडे जी, आप सबकी पसंद पे कल की आवाज़ फिल्म का ये गीत, जिसे गाया आशा भोसले और कुमार सानू ने।

हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं बहुत सारे मेल, और उन मेलों में यही बता रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी लखनऊ के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। ये मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का। आप हमारा कार्यक्रम डीटीएच पर सुन रहे हैं। आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई हो आकाशवाणी लखनऊ के परिवार को। आकाशवाणी से रिश्ता कुछ इस प्रकार हो गया है जैसे ये गीत बता रहा है। ये लिखने वाले हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी तरह से हमारे सभी श्रोता, आप सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आकाशवाणी तभी है जब हमारे श्रोता हैं। तो इसलिए आप सबको भी हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। तो आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
4: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
5: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
6: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
3: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन

0: स्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका,

0: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का

0: मत दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास

0: के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में धान की सीधी बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर दीक्षा मिश्रा और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों। खरीफ में जहां धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो जलवायु परिवर्तन के दौर में धान की सीधी बुवाई तकनीक अपनाएं, इसके क्या फायदे हैं और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ प्राविधिक सहायक डॉक्टर दीक्षा मिश्रा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किसान भाई बहन जहां धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
3: सबसे पहले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने से आप सभी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप पारंपरिक तरीके से धान की नर्सरी तैयार कर रोपाई करने के बजाय मशीन की सहायता से खेत में बीज की सीधे बुआई करते हैं। वास्तव में यह तकनीक वातावरण हितैषी भी है, क्योंकि इसमें कम पानी, कम लागत, कम मेहनत में ही आप धान की फसल से उच्च गुणवत्ता वाली उपज और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं।
2: इसके फायदे क्या क्या हैं डॉक्टर साहब?
3: सबसे पहला फायदा तो ये है कि इसमें आपको पानी की भारी बचत होगी। जैसे आप पारंपरिक तरीके में आप उसमें खेत में पडलिंग करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, उसको खेत को हमेशा जल भराव की स्थिति में रखते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको हल्की सिंचाई करते रहना है। तो इसमें लगभग 25-30% वो आपको पानी की बचत होगी। दूसरा, इसमें श्रमिकों की भी बचत हो जाती है, क्योंकि आप रोपाई की विधि अपनाएंगे, अगर रोपाई करने में 25-30 श्रमिक जो है प्रति हेक्टेयर एक्स्ट्रा लगता है और नर्सरी तैयार करने में भी बहुत समय जाता है, तो इससे बचने के लिए आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लागत की भी कमी होती है, लगभग 4,000 से 4,500 रुपए प्रति एकड़ इसमें आपकी बचत हो जाएगी अगर आप धान की सीधी बुआई करेंगे। दूसरा ये है कि मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ये ऐसे होगा क्योंकि जब आप पडलिंग करते हैं, कद्दूकरण करते हैं खेत में, तो जो खेत की मिट्टी है वो टूट जाती है, वो टूटने की वजह से उसका संरचना जो है वो खराब हो जाता है, जिससे अगली फसल जो है उसके लिए वो बहुत हानिकारक होती है। तो इसमें मृदा का सुधार भी होगा, साथ ही साथ आपकी उपज भी अच्छी होगी, क्योंकि उपज को प्राप्त समय मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि इसमें जो फसल है वो 10 से 15 दिन पहले ही आपकी पक के तैयार हो जाती है
2: और समय से बुआई हो जाएगी।
3: जी, जी।
2: और कीट और बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा,
3: कम होता है,
2: और जलवायु परिवर्तन हितैषी भी है।
3: जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है वो बहुत कम होता है
2: रुपाई के वनस्पति।
3: जी जी जी जी।
2: तो डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी और समतलीकरण भी जरूरी है जहाँ धान की सीधी बुआई करना है?
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धान की सीधी बुआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है खेत का समतलीकरण। अगर एक समान अंकुरण चाहिए तो हमें खेत को समतल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले आप खेत की जुताई करके उसको लेजर लैंड लिवर एक मशीन आती है उससे आप समतल कर सकते हैं। अगर किसी किसान बंधु के पास ये मशीन उपलब्ध नहीं है तो वो नॉर्मल 3 से 4 बार जुताई करके पाटा लगा सकते हैं, लेकिन खेत को समतल करना अति आवश्यक है।
2: और फिर बुआई का तरीका?
3: जी, दो विधियां होती हैं इसकी बुआई की, एक होती है नम विधि और एक होती है सूखी विधि। नम विधि जैसे तरबतर विधि है, उसमें हम गेहूं की कटाई के बाद तुरंत 2 से 3 बार जुताई करते हैं, फिर एक पाटा लगाते हैं और लगाने के बाद उसको एक अच्छी सिंचाई देते हैं खेत में। सिंचाई देने के 3 से 4 दिन बाद जब खेत में थोड़ी बदतर की स्थिति आ जाए, चलने योग्य स्थिति हो जाए,

0: फिर से हम खेत की जुताई करेंगे और फिर पाटा लगा के उसको समतल करेंगे। इसके बाद आप सीधे बीज की बुआई कर दें।
1: और दूसरा तरीका?
0: दूसरा है सूखी विधि, जिसमें आपको गेहूं की कटाई के बाद 3 से 4 जुताई करने के बाद, पाटा लगाने के बाद, आपको खेत में सीधे ही बीज की बुवाई कर देनी है। सिंचाई का उपयोग पहले नहीं करना है,
1: यानी सूखे खेत में,
0: सूखे खेत में कर देनी है। और करने के बाद, ताकि उसका अंकुरण अच्छा हो, हल्की सिंचाई दे।
1: लेकिन शुरू में क्या पलेवा करने की आवश्यकता है?
0: जी जी जी, शुरू में आपको एक बार जुताई करके आराम से पाटा लगा देने की जरूरत है। आप समतल करेंगे खेत को।
1: जहां धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो बुआई का उपयुक्त समय क्या है डॉक्टर साहब?
0: उपयुक्त समय आप जब भी ये तकनीक इस्तेमाल करना है, आप ये हमेशा ध्यान रखें कि मानसून आने के 10 से 15 दिन पहले ही आप बुवाई कर लें। क्योंकि अगर मानसून आ गया तो आपका अंकुरण अच्छे से नहीं होगा, जो खेत में पौधे रहेंगे वो भी सड़ जाते हैं। तो आपको उचित समय वो 20 मई से 20 जून तक का समय है, आप उसी समय खेत में बुवाई कर सकते हैं।
1: यानी जहां भी तैयारी किए हैं धान की सीधी बुवाई तकनीक अपनाने की, तो 20 जून तक बुवाई अवश्य कर लें। किसान भाई बहन, बीज की मात्रा प्रति एकड़ कितना लगेगी और बुआई का तरीका क्या होगा, बीज की गहराई क्या होगी?
0: बीज की जो मात्रा है, अगर आप संकर बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 किलोग्राम होनी चाहिए प्रति एकड़, और अगर आप उच्च प्रजातियां यूज कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम। ये 8 से 10 किलोग्राम पर्याप्त मात्रा है प्रति एकड़ की। और जो गहराई है, ये याद रखिए किसान बंधु, गहराई जो है वो 1 से 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
1: यानी अधिक गहराई पर बुआई नहीं करनी,
0: बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे अंकुरण अच्छा नहीं होगा।
1: और लाइन से लाइन की दूरी,
0: लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखिए, और पौध से पौध की दूरी जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर की रख सकते हैं।
1: तो ये काम तो सीड कम्फर्टी ड्रिल से जब बुआई होगी तो अपने आप निर्धारित?
0: जी जी जी, मशीन से अपने आप हो जाता है। लेकिन ये भी है कि बीज का उपचार बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीज का उपचार सही से नहीं करेंगे तो उसमें रोग लगना स्वाभाविक है। तो बीज के उपचार के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बीज का उपचार 2 चरणों में कर लें। सबसे पहले आप एक 10% नमक का घोल बना के बीज को उसमें डाल दीजिए,
1: यानी 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक।
0: जी जी, नमक का घोल बनाकर आप उसमें बीज को डाल दें और उसे एक डंडे से चलाते रहें, थोड़ी देर चलाकर छोड़ दें। उससे क्या होगा कि जो हल्की और जो खराब बीजें हैं, जो जिनमें अंकुरण नहीं होना है, वो ऊपर आ जाएंगी तैरती हुए, उन बीजों को आपको निकाल लेना है। और जो भारी बीजें हैं, जो स्वस्थ बीज हैं, उनको निकाल के आपको 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से धुलकर फिर उसको फफूंद नाशक से ट्रीट कर देना चाहिए।
1: जैसे फफूंद नाशक में
0: बेविस्टीन आप ले लीजिए। 10 किलोग्राम बीज के लिए 20 किलोग्राम बेविस्टीन और 2 किलोग्राम 20 ग्राम बेविस्टीन और 2 ग्राम आप ले लीजिए स्ट्रेप्टोसाइक,
1: ताकि जीवाणु नाशी भी हो जाए।
0: जी जी जी,
1: और इसका शोधन करने के बाद फिर 24 घंटे तक
0: हाँ जी 24 घंटे तक इसको भिगोकर छोड़ देना है। फिर उसको बाद निकाल के इसको 1 से 2 घंटे छाया में सुखा देंगे तो ये बीज तैयार हो जाएगी आपकी बुवाई के लिए।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो धान की सीधी बुवाई के लिए अच्छी मानी जाएंगी?
0: अगले सीजन में आपको गेहूं की समय से बुवाई कर लेनी है, और पानी की बचत भी अगर आपको करनी है तो आप कम अवधि वाली, जो जल्दी पक जाती है, ऐसी प्रजातियों का चयन करें। और जल भराव की स्थिति जहां होती है वहां पे आप लंबी अवधि वाले बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अधिक अवधि में पकने वाली बीज होते हैं जो 140 से 155 दिन में पकते हैं, उनमें है BPT 5204, AMTU 7029 है, राजेंद्र मसूरी 1 है, स्वर्णा सब 1 है, पूसा बासमती 1779 है। ये है लंबी अवधि की प्रजातियां। मध्यम अवधि की प्रजातियां जो है उनमें है आपका राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र सुभाषिनी, और जो कम अवधि में पकने वाली प्रजातियां हैं उसमें है पूसा बासमती 1985। ये जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी है, इसकी उपज भी बहुत अच्छी आती है, लगभग 25 क्विंटल पर एकड़ आती है इसकी उपज। तो ये वैरायटी काफी अच्छी है छोटी अवधि की।
1: कम अवधि में CO51 भी चुन सकते हैं?
0: जी जी जी, चुन सकते।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधी संपर्क करना चाहे तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 8765407943, 8765407943, 8765407943।
1: चलते चलते किसान भाइयों बहनों का और क्या आह्वान करना चाहती हैं धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में डॉक्टर दीक्षा मिश्रा?
0: धान की जो सीधी बुआई है इसमें बस किसान बंधु आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें खरपतवार जो है वो पारंपरिक विधि की तुलना में उनका प्रकोप थोड़ा अधिक होता है, परंतु इसे अगर आप समय से इसका कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो इसके लिए आप पेंडीमिथिलिन जो है, एक दवा आती है पेंडीमिथिलिन जो है, आप शुरुआत में जब बुआई कर रहे हैं

0: ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, तो बुवाई करते समय ही आप 1200 से 1500 मिलीलीटर पिंडी मिथिलीन,
1: यानी लगभग सवा लीटर मात्रा,
0: जी जी जी 200 लीटर पानी में आपको उसका घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर देना है।
1: यानी बुआई के 48 से 72 घंटे के अंदर पिंडी मिथिलीन सवा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें ताकि खर पतवारों का प्रबंधन हो जाए। डॉक्टर दीक्षा मिश्रा, आज आप कार्यक्रम में आई और धान की सीधी बुआई तकनीक क्या है, इसका लाभ कैसे लें किसान भाई बहन ताकि जलवायु परिवर्तन के दौर में आपकी खेती की लागत भी कम हो और टिकाऊ उत्पादन मिले, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धान की सीधी बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी दे रही थी डॉक्टर दीक्षा मिश्रा और उनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल यानी NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें https प्रसार भारती .gov.in/NIPP।

0: IPP/ अथवा https akashvani.gov.in/files/nipp.pdf। सूचना समाप्त हुई।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज सुनिए विमला कठेरिया के गाए अवधी लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत है कहरवा।

0: आप सुन रहे थे विमला कठेरिया के गाए अवधि लोकगीत। संगतकर्ता थे नाल पर राजकुमार, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर शैलेंद्र सिंह। अब आज का लोकमाधुरी कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की सभा संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में रक्षा अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं एसवाई खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।

0: नमस्कार। दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं शैसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी, वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
1: थैंक यू खान साहब। Namaskar and a very good evening to all our dear listeners tuned in to Akashvani for a live commentary of the prestigious and most honored Defence Ambassadors Ceremony 2026.
0: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
1: and the गणतंत्र मंडप Rashtrapati Bhavan packed to its capacity. We've just welcomed our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The audience is rising and now taking their seats. And as we were mentioning, that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassador Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honor our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all, given their supreme sacrifice. And there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies of the Sanjano, land.
0: भारत के माननीय रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन भारत के गणतंत्र मंडप में किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
1: As we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and solemn moment for the next of kin of our brave martyrs. It is with a heavy heart that they come here, but yes, it's a moment of pride and honor for them that their beloved has left them with. The Ganatantra Mandap, which is, as I'd mentioned, full and brimming with its capacity, and of course glittering to perfection from the main entrance, a red carpet leading right up to the beautiful ornate chair, the majestic chair where our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, shall sit and preside over the proceedings of this grand Defence Investiture Ceremony 2026. And right behind the chair is an imposing 5th century statue of Lord Buddha. Statue is a beauty, poetry in the stone, carved hundreds of years ago but still holding on to its grandeur. And right above that is a burgundy canopy overlooking the entire packed circular hall. And as we were talking about the gallantry awards, there are going to be 51 gallantry awards which shall be presented today, comprising 5 Kirti Chakra, 28 Shaurya Chakra, 12 Veer Chakra, out of which 1 Shaurya Chakra posthumously, 3 Veer Chakra posthumously and 2 Kirti Chakra posthumously. It is a poignant moment. The Gallantry Awards of India stand as a testimony to the valor, bravado and indomitable spirit of our brave men

0: and women in uniform, and our soldiers coming from the tri-services, the Army, the Air Force and the Navy, as well as from the police forces of India, in the khaki, olive, blue, white khaki, the uniform they donned, the vow they took, commitment to the nation to safeguard the frontiers, always and ever. And a grand fanfare now, welcoming our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu.
1: And now, Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, Agaman ki Suchana, Unke Suraksha Guard, Unke Aage Chalte Hue, Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, Is Vakt Aa Chuki Hai, Rashtrapati Bhavan Ke सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का खड़े होकर स्वागत किया और साथ ही माननीय राष्ट्रपति के स्वागत में भी सभी लोग खड़े हो गए। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अब

0: Lilting tunes by the military band from the Mahar Regimental Center, Sagar, Madhya Pradesh. The tunes that swell the chest of every Indian across India and around the world. And today is a day of great honor.
1: Mananiya Rashtrapati Mahodaya, aapki anumati ho to raksha alankaran samaro arambh kiya jaye.
2: Raksha Sachiv Shri Rajesh Kumar ne karikram arambh karne ki anumati li Mananiya Rashtrapati se. Aur ab karikram ka vidhivat.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख छत्तीसगढ़ पुलिस
2: इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य पदक के लिए आमंत्रित किया गया है इस वक्त राष्ट्रपति के सामने
3: 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहत अभियान आरंभ किया गया नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया अभियान में अनेक नक्सली मारे गए यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट
2: अपने कर्तव्य के प्रति इस असाधारण साहसिक कार्य के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को माननीय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करते हैं
3: इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख
2: और अब इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के सामने इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख तालियों के साथ
3: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट
0: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला फ्रॉम द 19th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट
3: 13 जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाए अभियान के दौरान भारी गोलीबारी ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया साथियों पर घातक फायर कर रहे तीसरे आतंकी का भी खात्मा किया निर्भीक रण कौशल असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला
0: अ ब्रिस्क क्विक वॉक अप टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट दैट इज लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर हिज ब्रेवरी करेज एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट नाउ
3: मेजर आदित्य प्रताप सिंह सेना मेडल द राजपूताना राइफल्स 44 असम राइफल्स
2: मेजर आदित्य प्रताप सिंह को अब शौर्य चक्र
3: मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भारी घुसपैठ तथा बड़े हमले की खबर मिलने पर एक ऑपरेशन आरंभ किया 72 घंटे की निगरानी कर आतंकवादियों को ढूंढ निकाला महज 30 मीटर से भयंकर गोलीबारी के बावजूद निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही मोस्ट वॉन्टेड उग्रवादी को मार गिराया अदम्य साहस राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है मेजर आदित्य प्रताप सिंह
2: आदित्य पराक्रम कर्तव्य की पराकाष्ठा से ऊपर निस्वार्थ सेवा और उग्रवादी हमले की निष्काम करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय

0: Him?
1: Major Ashish Kumar, the Parachute Regiment.
0: Major Ashish Kumar from the 7th Battalion of the Parachute Regiment, brusquely, boldly, confidently walking forward, taking a quick thump, a salute.
1: 2 November 2020 को अनंतनाग में आतंकवादियों के संभावित मार्ग पर निगरानी के दौरान मेजर आशीष कुमार ने 2 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की. भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था. असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है, मेजर आशीष कुमार.
0: मेजर आशीष कुमार फ्रॉम द पैरा रेजिमेंट डॉनिंग द रेड बेरे वॉकिंग पास्ट टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड प्राउडली द मेडल शौर्य चक्र बीइंग पिन्ड ऑन हिज प्राउड चेस्ट. अ सोल्जर लिव्स फॉर दिस डे.
1: सिपाही जीडी संजय तिवारी, सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स.
2: सीआरपीएफ के जीडी संजय तिवारी और जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है.
1: 2 नवंबर 2024 को रात्रि 2:45 पर खनियार थाने के एक मोहल्ले से एक विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली. बिना समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया. गोलीबारी शुरू हुई. आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे. बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया. गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सिपाही जीडी संजय तिवारी.
2: सिपाही जीडी संजय तिवारी को, जो कि सीआरपीएफ से है, अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
1: सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार.
2: और अब अदम्य साहस के लिए सीआरपीएफ के सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति.
3: सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक, 26 असम राइफल्स.
0: असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक फ्रॉम द 26 असम राइफल्स वॉकिंग पास द ऑडियंस एंड नाउ अ क्विक ब्रीफ.
3: 5 नवंबर 2024 को चिंतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया. अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया. उस समय डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की. अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक.
0: डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक वॉकिंग ब्रिस्कली कॉन्फिडेंटली एंड नाउ फेसिंग आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र.
3: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.
2: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
3: 6 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई. जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप कर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया. परिणाम स्वरूप अपने सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया. सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.
2: सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.

0: चौरस चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: सीमैन फर्स्ट क्लास मरीन कमांडो वर्तमान में लीडिंग सीमैन राम गोयल।
2: एंड नाउ सीमन राम गोयल।
1: ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे, जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल।
2: वॉकिंग कॉन्फिडेंटली ब्रिस्कली, दिस इज लीडिंग सीमैन राम गोपाल टू रिसीव हिज मेडल ऑफ करेज, मेडल ऑफ गैलेंट्री, शौर्य चक्र।
1: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन, सीआरपीएफ।
0: और अब सीआरपीएफ के सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र के सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इस वक्त सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
1: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त दो विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
0: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तृतीय बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा प्रदर्शन असाधारण वीरता, अदम्य साहस, कर्तव्य प्राणता, ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति ने पदक से।
1: सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन सीआरपीएफ।
2: एंड नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन फ्रॉम द 20 बटालियन सीआरपीएफ। अ क्विक टर्न एंड अ सैल्यूट।
1: 11 नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावारों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन।
2: असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन बीइंग अवार्डेड द मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाउ पिनिंग द मेडल ऑन टू द प्राउड चेस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन।
3: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन असम राइफल्स।
0: तीन असम राइफल्स के राइफलमैन भोजराम साहू को अगला शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
3: 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
0: तालियों के गड़गड़ाहट के बाद राइफलमैन भोजराम साहू शौर्य चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के सामने।
3: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।

0: Commandant Pilot.
1: Wing Commander and now Group Captain Abhimanyu Singh and now a flying pilot. Briskly walking forward, taking a quick brisk turn, a salute to Honorable President, Supreme Commander of the Forces.
0: 21 November 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आई। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता।

0: एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आई। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।
1: ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, अ राउंड ऑफ क्लैप्स गोइंग अप इन द एयर, रिसीविंग हिज प्राउड गैलेंट्री अवार्ड, द शौर्य चक्र फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड
0: मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स।
2: कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर भार्गव कलिता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ 3 सफल ऑपरेशन में भाग लिया जिसमें 3 आतंकी मारे गए एवं 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता।
1: मेजर भार्गव कलिता फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर अनडॉमटिंग करेज एंड ब्रावाडो।
0: मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह, द पैराशूट रेजिमेंट।
2: और अब 11 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह शौर्य चक्र लेने के लिए।
0: उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह।
2: विशेष वीरता पूर्ण कार्य के लिए मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा।
0: मेजर अंशुल बल्टू, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 32वीं बटालियन Assam Rifles.
1: And now coming marching forward, Major Anshul Baltu from the Jammu and Kashmir Light Infantry.
0: 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद 3 सशस्त्र आतंकियों के शव एवं 3 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशुल बल्टू।
1: गणतंत्र मंडप एकोइंग विद अ लाउड round of applause for Major Anshul Baltu receiving his Shaurya Chakra, a proud moment for the soldier. Saluting our honorable president and a quick turn
3: Major
1: back to the
3: Shivkant
1: arena.
3: Major Shivkant Yadav, Parachute Regiment.
2: A Parachute Regiment ke Major Shivkant Yadav ko Shaurya Chakra.
3: Major Shivkant Yadav ne ek aatank virodhi abhiyan ki

0: दौरान दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में दो अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता, प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर शिवकांत यादव।
1: तीव्र सामरिक सूझबूझ, विशिष्ट वीरता, आदित्य धैर्य और अदम्य साहस के लिए मेजर शिवकांत यादव को तालियों के चौकाहट के बीच शौर्य चक्र।
0: सुबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स।
2: And now, Subedar P.H. Moses from the 1st Assam Rifles, proudly marching, slow measured march, a quick salute.
0: 14 May 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सुबेदार PH मोसेस।
2: सुबेदार PH मोसेस, a proud soldier of the defense forces of Maa Bharati, our motherland India, receiving his pride medal of honor, saluting and heading back.
0: Major Vivek, the mechanized infantry 42 rashtriya rifles.
1: Mechanized infantry 42 rashtriya rifles ke major Vivek ko shaurya chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
0: 15 mai 2025 ko pulwama zile mein ghera aur talashi abhiyan ke dauran major Vivek ki tukdi aatankwadiyon ki goli bari ki chapet mein aa gaya. Aapne आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर विवेक।
1: अत्यंत वीरता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कुशलता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मेजर विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स।
2: राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई फ्रॉम द 3rd असम राइफल्स, रेडी टू रिसीव।
0: 9 जून 2025 को राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में दो आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई।
2: राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई बीइंग अवार्डेड द शौर्य चक्र, डिस्प्लेइंग नर्व्स ऑफ स्टील।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार, पैराशूट रेजिमेंट।
1: 21 पैरा विशेष दल के लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार को शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्री कुमार ने सीमावर्ती इलाके में एक किले बंद विद्रोही शिविर पर सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया, जिससे 9 विद्रोही मारे गए। निडर नेतृत्व और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार।
1: उत्कृष्ट व्यवस्था।

0: क्षमता, निडर नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्रीपाठ और ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है।
1: कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पैराशूट रेजिमेंट।
2: Briskly marching forward in measured steps, this is Captain Yogendra Singh Thakur from the 6th Para Regiment.
1: Jammu even Kashmir ke ilake mein Captain Yogendra Singh Thakur apne nigrani daste ke saath tainat the jab unhe lagbhag 300 meter ki duri par kuch agyat vyaktiyon ki harkat dikhai thi. Sangdit vyaktiyon ke bhagne aur anapekshit nuksano se bachane ke liye ve ghane kohre mein atal rahe. अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में वे रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी मुठभेड़ में भीषण गोलाबारी के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अभूतपूर्व वीरता, युद्ध कुशलता एवं दृढ़ संकल्प के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर
2: On his unprecedented valor, fighting spirit, dedication, Captain Yogendra Singh Thakur is awarded the Shaurya Chakra. And now a salute in turn.
1: Subedar Shamsher Singh, Parachute Regiment.
0: Aur char para vishesh dal ke Subedar Shamsher Singh इस वक्त शौर्य चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति के सामने।
1: सुबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में तीन उच्च कोटि आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने की गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सुबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार शमशेर सिंह
0: कर्तव्य के प्रति समर्पण और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए सुबेदार शमशेर सिंह शौर्य चक्र लेते हुए माननीय राष्ट्रपति से।
1: लांस नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह, पैराशूट रेजिमेंट।
2: एंड नाउ लांस नायक।
1: श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह।
2: नायक राहुल सिंह मार्चिंग अहेड फॉर हिज मेडल ऑफ ऑनर द शौर्य चक्र। दिस इज करेज अंडर फायर, अ फाइन डिस्प्ले ऑफ व्हाट आवर सोल्जर्स वाउ टू प्लेज।
1: राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता, 33 असम राइफल्स।
0: 33 असम राइफल्स के राइफलमैन दुर्बा ज्योति दत्ता विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए
1: 19 सितंबर 2025 को राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को स्वयं जांग, छाती, कंधे और बांह पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता
0: रक्षा अलंकरण से केवल सम्मान प्रदान करने का अवसर नहीं बल्कि ये उन वीर गाथाओं को राष्ट्र के सामने नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
1: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए।
2: वुमेन एम्पावर

0: Word are not behind. We have now two women, Lieutenant Commanders Dil Nake and Lieutenant Commander Rupai.
1: आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा दो के लिए चयनित किया गया था, जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की, जिसमें आपको एकांत, अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के
0: A big round of applause for the woman soldier from the Indian Navy receiving her Shaurya Chakra proudly.
1: Lieutenant Commander Rupa A.
0: Lieutenant Commander Rupa A. Now in front of our Honorable President, proudly receiving her Medal of Honor, the Shaurya Chakra, daring the weather and being the first Indians to reach Point Nemo.
2: शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, कल को शांक लांबा रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी।
3: और अब वीर चक्र दिए जाएंगे। वीर अधिकारी पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ राष्ट्रपति महोदया के समक्ष
2: कल को शांक लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया। बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया, जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कल को शांक लांबा।
3: भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार गोलीबारी के बीच असाधारण वीरता, पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करने के लिए कर्नल कोशांक लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
2: कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, उड़ान पायलट।
0: एंड सेकंड वीर चक्र ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, the flying captain from the Indian Air Force.
2: एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए तीन स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल, अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
0: Group Captain Ranjit Singh Sidhu marching forward to receive his medal, short Veer Chakra, from our Honorable President.
2: Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra, Udan Pilot.
3: और अब उड़ान पायलट मनीष अरोड़ा को वीर चक्र दिया जा रहा है।
2: आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की।

0: पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र।
1: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र को वीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को।
0: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, उड़ान पायलट।
2: एंड नाउ ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, ड्रेस्ड इन इंपेकेबल ब्लू यूनिफॉर्म, कमिंग फॉरवर्ड।
0: अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में दो फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया, जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी।
2: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी रिसीविंग हिज वीर चक्र, एंड एज दे से डू नॉट गो वेयर द पाथ लीड्स, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। And गणतंत्र मंडप echoing
0: कलरा उड़ान पायलट
2: with applause।
1: और अब ग्रुप कैप्टन कुड़ान कुड़ान कलरा को आमंत्रित किया गया है, जो कि उड़ान पायलट है।
0: आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन के दो महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राण घातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
1: असाधारण साहस, शौर्य और कृत्य के लिए ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, फ्लाइंग पायलट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
0: आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा, आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा।
2: एंड अनदर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड करेज destroying the designated enemy target, receiving his veer chakra.
3: Lieutenant Colonel Sushil Bisht, 1988 Swatantra Medium Battery.
1: Lieutenant Colonel Sushil Bisht ab veer chakra lene ke liye Marathi Rashtrapati ke saath.
3: Lieutenant Colonel Sushil Bisht ne kaman adhikari ke roop mein ek mahatvapurna sainya abhiyan mein uch koti ke sanchalan kaushal ka parichay dete hue lakshit आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजीशन व पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट।
1: तालियों के गड़गड़ाहट के बीच आसाराम बहादुरी, अडिग नेतृत्व,

0: और अतुल्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुखीर बिष्ट वीर चक्र लेते हुए माननीय
1: स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार उड़ान पायलट.
2: Squadron leader, now Wing Commander Sarthak Kumar, flying pilot, proudly marching forward, a quick turn and salute to our Supreme Commander.
1: Squadron leader Sarthak Kumar ne mission planning cell ke pramukh sadasya ke roop mein anek deep strike mission ki yojana aur samanvay mein nirnayak bhumika nibhai. Wah uch jokhim bhare long range stand off strike missionon mein prabhavi yogdan dete hue safaltapurvak sampann kiya. और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की. असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. विंग कमांडर सार्थक कुमार.
2: विंग कमांडर सार्थक कुमार फॉर प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन द हाई स्टेक लॉन्ग रेंज ऑफ स्ट्राइक मिशन विद एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड हीरोइज्म. Receiving his Veer Chakra.
1: Squadron leader Siddhant Singh, Udaan pilot.
0: Udaan pilot, squadron leader Siddhant Singh ko Veer Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
1: Squadron leader Siddhant Singh ne ek atyant jokhimpurn vayu mission mein shatru ki majboot air defense pranali ko bhedte hue kam uchai par radar se bachte hue pravesh kar lakshy par prabhavi hamla kiya. और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई. तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया. अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह.
0: असाधारण साहस और शौर्य के कार्य के लिए स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह माननीय राष्ट्रपति से पदक ग्रहण करते हुए वीर चक्र आपको दिया गया.
1: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक उड़ान पायलट.
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स नाउ रेडी टू रिसीव हिज अवार्ड वीर चक्र.
1: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक ऑपरेशन के दौरान मध्य रात्रि में एक अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के डेप्टी मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी. लक्ष्य नवीनतम शक्तिशाली वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली से सुसज्जित था. विरोधी एयर स्पेस में निर्बाध रडार कवर के बावजूद खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया. अदम्य साहस रणनीतिक कौशल विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक.
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक एकोज ऑफ जुबिलेशन इन द हॉल अ प्राउड मोमेंट फॉर स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक रिसीविंग हिज वीर चक्र.
1: Flight Lieutenant, वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर उड़ान पायलट.
0: माननीय प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस वक्त अपने सैनिकों की शौर्य गाथा सुनते हुए.
1: फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी. भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था. आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था. विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया. उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए. असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर.
0: शौर्यपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर माननीय राष्ट्रपति से वीर चक्र लेते हैं.
1: नायब सूबेदार सतीश कुमार 4th बटालियन द डोगरा रेजिमेंट.
2: And now

0: Naib Subedar Satish Kumar from the 4th Battalion Dogra Regiment proudly marching forward.
1: नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोर्टार प्लटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोर्टर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोर्टर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई। अडिग संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, नायब सूबेदार सतीश कुमार।
0: Hands going up in a round of applause for Naib Subedar Satish Kumar from the Dogra Regiment and our Honourable President pinning the Veer Chakra Medal of Gallantry on the proud chest of Satish Kumar.
2: Shatru ka mukabla karne ke sivai asadharan veerta ke liye Kirti Chakra. Lance Nayak Minachi Sundaram A, Topkhana Regiment, 34 Rashtriya Rifles.
3: 29 Shaurya Chakra, 15 और
2: लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांस नायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए
3: 7 कीर्ति चक्रों में से पहला कीर्ति चक्र दिया जा रहा है लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम को।
2: नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा पैराशूट रेजिमेंट।
0: नर्व्स ऑफ स्टील आर मेन एंड सोल्जर हैव दिस इज नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
2: जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा ने दो आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी की जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
0: And a round of applause from our Honourable Prime Minister, members of the Cabinet, dignitaries, for Naib Subedar Doleshwar Subba receiving his Kirti Chakra.
2: Major Ashdeep Singh, Kavachit Corps, 1 Assam Rifles.
3: And now, agla Kirti Chakra.
2: मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह
3: अद्वितीय वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
0: Moments like these will be remembered by one and all present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.

0: एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में 0 ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर।
1: Proud family, with a round of applause, proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nayar, Flying Captain, Flying Pilot in the Indian Air Force.
0: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
2: और अब विशेष दल 4 पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्तीक की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो।
2: तालियों की कौतूहल के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साइलो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन साइलो को
3: अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, 4th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
1: एंड नाउ शौर्य चक्र पोस्थमसली, अ वेरी पॉइंटेंट मोमेंट, द फर्स्ट चक्र, शौर्य चक्र गोइंग टू लांस दफादार बलदेव चंद फ्रॉम द आमट कौर, कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज वाइफ एंड मदर।
3: लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
1: ऑनरेबल प्रेसिडेंट वॉकिंग टुवर्ड्स the martyr's wife and mother to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honor.
3: Ab Veer Chakra Marnoparant Pradan kiye jayenge। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत।
2: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य मरणोपरांत वीर चक्र लेने के लिए इस वक्त माननीय राष्ट्रपति के सामने।
3: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चेंगखम सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा

0: पास से मोर्टर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उप निरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चिंगाखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोर्टर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद आप दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिसने शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा
1: और अब माननीय राष्ट्रपति अपने आसन से नीचे उतरते हुए ये मरणोपरांत पुरस्कार देते हुए
0: दीपक चिंगाखम की पूज्य माता श्रीमती चिंगाखम एवं मन देवी एवं पूज्य पिता श्री चिंगाखम बोविन बिहारी सिंह।
1: ये एक ऐसा अवसर है, इतना भावुक अवसर होता है जब शहीद सैनिकों के परिजन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और पूरा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है।
0: राइफलमैन सुनील कुमार, 4th बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत।
2: The next of the kin of rifleman Sunil Kumar posthumously coming forward to receive the Medal of Gallantry Veer Chakra, a poignant moment when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their
0: rifleman Sunil Kumar
2: and joy.
0: Sima Suraksha Bal ki 7th Battalion ke saath Sena ki samanvay tukdi ke roop mein Jammu kshetra ke ek Sima Chowki par tainat the. 7 May 2025 सीमापार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
2: The parents of rifleman Sunil Kumar awarding them the Veer Chakra posthumously. To the proud family saluting the mother for giving birth to such a brave heart.
0: अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट 1st बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
1: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। द महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल।

0: पत्रकार बहुत ही भावुक क्षण है जब माननीय राष्ट्रपति उनसे गले मिलते हुए गले लगाते हुए उनकी बातों को बहुत ही भावुक होते हुए
1: A tearful mother, unable to bear the loss of her son, a great martyr.
2: Lieutenant Shashank Tiwari, Sena Seva Corps, First Sikkim Scouts, Maranoparant.
1: And now, the next of kin of Lieutenant Shashank Tiwari, posthumously, from the Army Service Corps, coming forward to receive the honor in the form of Kirti Chakra for their beloved. Greeting our honorable
2: Lieutenant Shashank Tiwari ne 22 May 2025 ko
1: the family.
2: Uttar Sikkim ke durgam pahadi ilake mein chalaye gaye ek operational gasht ka swechha se netritv sambhala. Gasht ke dauran unka ek agnivir Stephen Subba santulat bigadne se nadi mein ja gira. अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला, लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी।
1: The mother receiving a warm hug from our honorable president, wiping the tears. It's difficult for one and all to hold back the tears. Kirti Chakra posthumously for Lieutenant Shashank Tiwari.
0: राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक वातावरण देशभक्ति सम्मान और गौरव की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। समारोह अब समापन की ओर बढ़ता हुआ सभी जो और अब रक्षा सचिव माननीय राष्ट्रपति से समारोह समाप्त करने की
3: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
1: And now seeking the permission for a closure, the audience is rising for the national song and the national anthem.

0: Soulful tunes being belted out by the Maha Regimental Centre and our Honourable President bowing to the audience with a namaste and slowly, gracefully interacting with the audience and heading towards the grand entrance of the Ganatantra Mandap. Glory, honour, duty and discipline are words which define events like the Defence Investiture Ceremony 2026 Phase 1, which is coming towards a beautiful, soulful, solemn closure. And one is reminded of the Sanskrit Shloka. At the moment, our other dignitaries, our Honourable Prime Minister, interacting with the members, audiences. And one is reminded of this beautiful Sanskrit shloka. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam.
1: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे एसवाई खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।
3: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां निर्धनजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः। पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन CBSE बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता संदर्भे केंद्र सर्वकाराय

0: तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानाम् आक्रमणानां विषये गभीरा चिन्ता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं 5-दिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत 12 वर्षेषु शासनस्य नीति निर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणम्, स्वच्छ भारत अभियानम्, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धन जनानां जीवनस्तरे स्थितस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्य आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेऽपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य 12 कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं नीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्यां राष्ट्रिय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायाम् आंकिक मूल्यांकन प्रणाल्याः निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता एषु विषयेषु प्रश्नाः उत्थापिताः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अपराह्णे नवदेहली नगरे भारत सभा अभवत्। अस्यां सभायां विपक्षस्य विभिन्नाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस पार्टी इत्यस्य वरिष्ठः नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः, तृणमूल कांग्रेस पार्टी इत्यस्य अध्यक्षा ममता बेनर्जी, वरिष्ठः नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सूले च आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे उक्तवान् यत् सभायां 25 राजनैतिक दलानि उपस्थितानि आसन्। सः अवोचत् यत् सभायां विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा कृता, सर्वे अपि स्वमतं व्यक्तवन्तः।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: भारत देशः पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तवान्। विदेश मन्त्रालयेन उक्तं यत् एते

0: पंचो जय हिंद।
1: सरला वैनी,
2: हाँ रे अजभिया,
1: देखो प्रकृति की तरफ से हम पंचन का कितना बड़ा बड़ा उपहार मिला है। मूल अगर हम पंच वक्त सहेज के न रखें, वक्त संरक्षण न कियन, तो हमें तो कमी होबे करे। जो अपन आगे आवे वाली पीढ़ी है उनका बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कह रियाज भैया। और जब उपहार मिला थे, कौन भी उपहार होते, तो हम सबका कितना जो है आनंद रहा था, कितना खुशी की बात होते। लेकिन और जो प्रकृति के उपहार है वो सबसे अनमोल है।
1: बिल्कुल।
2: और चाहे वो नदी पहाड़ हो, चाहे झरना हो, चाहे पेड़ पौधा हो, और चाहे ऊर्जा हो।
1: बिल्कुल, एक जिम्मेदारी बनत है कि हम पंचे का सहेज करे, का संरक्षण करी। मूल एक चीज और है कि जो प्रकृति की तरफ से मिली है, और अपने हियाँ भी जो अपने वैज्ञानिक हैं, जो अपने संसाधन लगाए के जो विकसित करते हैं, वह का सहज अब बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहे से हर एक चीज़ की जो मात्रा होते, एक सीमित होते है, वह का उत्पादन करे में बहुत मेहनत लागत है, बहुत खर्चा हुआ है। अगर हम बात ऊर्जा के करी,
2: ऊर्जा की बात की जाए, देखो भैया, सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो अपन सूर्य ही है।

0: तो भाई वो तो अलग है, अद्वितीय है, लेकिन जो उनकी वैज्ञानिक बनाए रहे हैं, जो उनके जो है जैसे घर में होएगा है आजकल बिजली से सारी चीजें उपकरण होएगा है, तो कितना हम सब के आराम से रह रहे हैं।
1: बिल्कुल आराम से रह रहे हैं। हम लोगों का लागत है कि जून इतनी आसानी से बिजली अपने घर में आवती है, या कब बनाओ उतना आसान नहीं ना, बल्कि बनाओ तो मुश्किल है ही है, और घर घर तक पहुंचाओ और ज़्यादा मुश्किल काम रहा है।
0: बहुत मुश्किल है काम भी है, और यही खातिर ये सब चीज़ के हम सबका बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो है अगर अपने घर में बिजली है और बिजली का प्रयोग कितना करे का है, कैसे करे का है, ये सब का हम जी का ध्यान रखे का है, और आपन हमें वर्तमान भी बचाओगे, अगर हम वर्तमान बचा रहे हैं तो भविष्य अपने आप बच जाए।
1: बिल्कुल, यही मेरे कहा जाए थे कि ऊर्जा के बचत जो है एक ऊर्जा के बढ़त हो जाते है। तो हम पंच समझ लियो कि जितने ऊर्जा के बचत करबे, समझ लियो कि उत्पादन में हम पंच उतने अपन योगदान दे रहे हैं।
0: रियल भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे घर में है हम सब जो है घर से बाहर निकलन तो ये कमरा जो है बिजली के बल्ब बंद कर दो और पंखा बंद कर दो, मोटर चल रहा है तो कितना पानी की जरूरत है कितनी देर है तो पानी भर लियो तब काम करे शुरू करो, या फिर पानी चल रहा है, बहुत लोग ऐसे कर रहे थे कि पानी चल रहा है तो भैया चल रहा है, तो इस छोटी छोटी चीज से अगर हम कोनो भी चीज की शुरुआत करें तो उके सफलता हमें सबका बहुत आसानी से और बहुत अच्छा परिणाम होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। हम पंचन का जो है एक बचत के बारे में सोचे चाहिए। एक चीज़ और है,
0: हाँ
1: देखो आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आज जो उन आकाशवाणी अपन है वो के 90 वर्ष पूरा हो चुका है।
0: बिल्कुल भैया, आकाशवाणी के 90 साल पूरा हो गया है, और इसी अच्छाई इसे जो है गौरवशाली जो यात्रा है वो जो अब तक के पूरी है, और आगे के सफर कितना खूबसूरत हुए कितना सुंदर हुए ये के लिए हम जो है भाई बधाई के पात्र हैं, और सब श्रोता का बहुत बहुत शुभकामना हम सब की तरफ से।
1: तो देखो यही उपलक्ष्य में हम कुछ श्रोता पंजन से बात करने की कोशिश की हैं, और उनसे जाने की कोशिश की हैं कि ये आकाशवाणी जोन है वो सुनत हैं तो उनका का प्रेरणा मिलत है, का का सीखत हैं, और उनके जीवन में कौन कौन परिवर्तन आ रहा है। तो आओ उनके बातचीत सुना जाए और जाना जाए।
0: बिल्कुल सुना जाए भैया, और जाना जाए कि कितना जो है अपनी यात्रा या उनके याद और कितना सफर कितना खूबसूरत है ये का सुना जाए।
1: बिल्कुल। नमस्कार श्रोता पंचों, देखो आज अपनी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा हो चुका है। तो ये 90 वर्ष जो नहीं खाली गिनती नहीं ना, बल्कि कईयों पीढ़ियन के साथ है। जब गांव जवार में बिजली नहीं रही तब खटिया पर बैठ के अपने बाबा दादा लोग कान में रेडियो चिपकाए रहते रहे। 90 साल पहले जो उन सफर शुरू हुआ रहा वो अभिनव निरंतर चला आ रहा है, और आकाशवाणी के जो उन कार्यक्रम के प्रस्तुति है वो निरंतर वैसन चली आ रही है। अपने श्रोता पंच भी पूरी तन्मयता के साथ में कार्यक्रम का सुन रहे हैं। आज जमाना भले बदल गया है और हाथन में लोगन के मोबाइल आ गई है, मुला आकाशवाणी के जो उन अपनापन है वो और कहूँ नहीं ना। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा हुए के उपलक्ष्य में आज हम अपने कुछ श्रोता पंचन से बात किए हैं, उनसे जानने की कोशिश किए हैं कि रेडियो के साथ में उनके जुड़ाव अब अभिनव कौनी तरह से बरकरार है, और रेडियो कब से सुन रहे हैं, और रेडियो सुन के वो का हासिल किए हैं। तो आओ जाना जाए और इनसे बातचीत की जाए।
2: तो देखो भैया, एक हमारे साथ में बहुत वरिष्ठ श्रोता हैं, और आओ इनसे बात की जाए और जाना जाए कि आकाशवाणी इनके जीवन में कौन कौन परिवर्तन लावा और कब से आकाशवाणी के साथ में जुड़े हैं। तो भैया अपन नाम बताओ।
3: मेरा नाम जगदीश प्रसाद।
2: आकाशवाणी के साथ में आपके जो है कितना पुराना जुड़ाव है?
3: 1958 से सुन रहे हैं।
2: अच्छा,
3: तब हम बांस लगाकर और तार बांध कर उसमें रेडियो आता था तो थोड़े था।
2: रेडियो से आपके जीवन में कौन परिवर्तन आवा और का का सीखे मिला?
3: परिवर्तन बहुत कुछ आवा, रेडियो में सब अच्छी अच्छी बातें होती है, बीमारी वाली ऐसे वाली समाचार अच्छी रेडियो मिले, सब बढ़िया थी। किसान के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, मैं भी एक किसान हूँ तो हम लोगों को बहुत रेडियो से बहुत काफी मतलब सुविधाएं मिल रही है।
2: 1958 से आप रेडियो सुनते हैं, तो आपकी उम्र कितनी है?
3: जी हमारी उम्र इस समय है 84 साल।
2: आकाशवाणी के कार्यक्रम जो आप पहले से सुन रहे हैं, तो पहले से और अब के युग में जो है क्या परिवर्तन दिखे के पाई ने?
3: अरे बहुत बदलाव होगा भैया, आकाशवाणी पहले वह रहा, अब तो सब चीजें आकाशवाणी में रही सकता है पैसे माध्यम से, वैसे बहुत बढ़िया चल रहा है, सब चीजें सुनने को मिलती है, ऐसे आदमी सीखते हैं। हमारे आस पड़ोस के लोग आ जाते थे और घर के लोग रहते थे।
2: तो पूरी चौपाल लगाए के रेडियो सुना जाता रहा हुए?
3: जी हाँ, मतलब चौपाल लगा के सुना जाता रहा, कम से कम आदमी आ जाते हैं पड़ोस के।

0: हमारा पूरा घर रहता था।
1: अब भी आप आकाशवाणी के साथ में जुड़े हुए हैं,
0: जी हाँ, अब तो जुड़े हैं ये।
1: कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा था?
0: अच्छा लगा जो कहा आराधना है, भक्ति वाला रात को एक बालक है, और स्वास्थ्य सेवा ये बहुत बढ़िया है, और खेती किसानी वाला तो वो भी बहुत बढ़िया आपको लगता है, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जगदीश प्रसाद
0: जी
1: मिश्रा जी, हमसे बात करने के
0: जी
1: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया, एक और बहुत पुराने श्रोता हमारे साथ में है, और इन्हों से बात की जाए और जाना जाए कि आकाशवाणी के साथ में इनका कितना पुराना जुड़ाव है। भैया अपन नाम बतावें।
0: हौसला मौर भैया।
1: हौसला भैया ये बतावें कि रेडियो आप कब से सुन रहे हैं?
0: बचपन से सुन रहे हैं हम लोग, अब तक
1: बचपन से शुरू की और रेडियो अभिनव आपके साथ में रहा थे?
0: हाँ, हमेशा।
1: रेडियो का कार्यक्रम कैसे लगा था आपको?
0: बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: कौन कौन कार्यक्रम सुना थे?
0: कार्यक्रम तो खेती किसानी सुने थे, और बहुत बाहर में सुना थे, आंगनबाड़ी बहुत सुना थे कार्यक्रम, बाकी यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा।
1: तो कहा गाँव में बहनों हुआ था भैया कि रेडियो लगाए दिन गो और 4 महीने और बैठ गए तो सब लोग साथ में बैठ कर सुन रहे हैं?
0: हाँ, हम लोग घर से भैया अपना तो सुन रहे हैं, पूरा परिवार को आएगा वो सुन रहा, बढ़िया बैठे, तरह तरह जानकारी मिल जाती है।
1: तो कौनो पुरानी याद ऐसी बतावे कि जो उन रेडियो के साथ में आपके जुड़ी हुए?
0: हाँ, जो नाटक वाटक आवा रहा ना भैया, नौटंकी नाटक से बहुत सुंदर रन, पहले हम लोग मूरत भी नौटंकी सब आ रही, हरिजन नौटंकी आ रही, सब होती रही, बहुत बढ़िया एक नाटक हुआ बहुत बढ़िया, पहले से सुना का पहन बढ़िया।
1: तो अब जो है कार्यक्रम कैसा लागत है आपका?
0: बहुत बढ़िया लागत, हेलो प्रोग्रामो सुने थे, हिम्मत से बदल बदल के आवा करती है ना रोज डेली।
1: हाँ,
0: सुना का एक बराबर, हम लोग ज्यादातर लखनऊ सुने थे।
1: तो हौसला भैया आपसे बात करके बहुत निक लाग, और बार फिर से जो है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा हुए के उपलक्ष्य में आपों का और सब श्रोता पंचन का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: एक और बहुत पुराने श्रोता जुड़े हैं, तो आओ इन्हों से बातचीत की जाए और जाना जाए कि आकाशवाणी के साथ में इनका कितना पुराना नाता है। तो भैया अपन नाम बतावें।
0: हमारा लल्लू राम नाम है।
1: तो लल्लू राम भैया ये बतावें कि आकाशवाणी के साथ में आपके कितना पुराना जुड़ाव है?
0: हम बहुत बचपन से जुड़े हैं इसमें भैया, जब से सुख सहारा है
1: हाँ,
0: तब से हम बाजा के बड़े शौकी बचपन से हैं, तब से हम बाजा के बड़े शौकी हैं, बाजा ना अगर हमारे पास रहा तो हमका फिर कुछ समझो को हमारे लगे कुछ है ही नहीं है।
1: तो अभिनव बाजा रखे हैं?
0: हाँ
1: अच्छा, तो सुनत है कार्यक्रम?
0: हाँ, कार्यक्रम सब सुनते हैं भैया,
1: अच्छा,
0: कार्यक्रम कोई बाकी नहीं कि ना सुने हम। हाँ, खाली 1 घंटा बाजा नहीं रहता, 2 घंटा मेरे पास बस, हम बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ नहीं ले जाते, बाकी बाजा के बिना हमारा दिल नहीं लगेगा कहीं पर। हम तो कम से कम 3 घंटा हम 4 बार खत्म कर दिया, ये भी रिटायर होने वाला है।
1: तो दूसरा लावे की तैयारी है?
0: हाँ, दूसरा लेने के लिए सोचे तो हमें, अच्छी होली में ले ले, मगर कहे कि चल जाए थोड़ा, और दीदी तो बहुत शौकी रही बाजा को, हरदम अकेली है बैठी रहत रही,
1: हाँ
0: लेकिन खत्म हो गई तो वो हम रखी चले गए अपने, अब तो लड़कियां अपने अपने घर की हैं, तो हम अपन बाजा खोल दिया, बैठे काम कर रहे हैं, बोल बतला रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको
1: तो
0: सुन रहे हैं, किसान कार्यक्रम हमका पलटू रहे, और अम्बे बहन रही, कम्मू दीदी रही, ये सब लोग रहे, इनके प्रोग्राम बहुत आवत रहे, बहुत अच्छा लगता था।
1: आप जो ना आवत हैं वो कौन कौन कार्यक्रम आपका अच्छे लग रहे हैं?
0: फरमाइशी गाना आते हैं ये वाले हलो वाले, एक ये है नवा गाना, ये दोपहर में आते हैं 12:30 बजे पहले, 1 बजे से 1 बजे तक।
1: तो पुराने गाने अच्छे लगत हैं या नए गाने अच्छे लगत हैं?
0: नहीं, हम तो पुराने ही गाना हमका पसंद है भैया।
1: तो ये बताओ लोकगीत जो हम लोग कार्यक्रम में सुनाई थे अपने खेती किसानी कार्यक्रम में लोकायतन कार्यक्रम, ये किस लागत है?
0: ये बहुत अच्छे लागत है, इसका तो इंतजार करे हम, और लोकगीत जैसे इतवार के दिन आते हैं, इनको समय से देखा कर इंतजार करे कि अब लोकगीत आई है, अब 10 बजे तक आई है, 9 से 10 तक 10 से 10:30 तक का, 11 तक का और है, लोकगीत हम बहुत सुंदर अच्छा लागत है, वैसे कभी कभी नौटंकी वोटंकी आती रही तो वो ज्यादा अच्छा लागत रहा, बहुत अच्छा लागत रहा।
1: तो ये बताओ कार्यक्रम में आप और कौन चीज ऐसा सुनना चाहते हैं, कौन बदलाव की जाए कि और रोचकता बढ़े कार्यक्रम में?
0: अब हम कहा बता दे, अब उम्र हमारी कहा बढ़ा दे कि अब सुनाओ हमका, आप यही ठीक है जो चल रहा,
1: हाँ,
0: यही सही,
1: तो यानी कि जो कार्यक्रम आ रहे हैं सब अच्छे आ रहे हैं?
0: ये सब अच्छे आ रहे हैं, ठीक है,
1: बहुत
0: बदलाव
1: बहुत
0: कोई।
1: धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से मैं आपका और सब श्रोता पंचन का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो देखो यही क्रम में हमारे साथ में एक और बहुत पुराने श्रोता जुड़े हैं जो उनकी आकाशवाणी के साथ में उनका बहुत पुराना नाता है, तो आओ

0: इनसे बात करिए और जाने इनके नाम का है। भैया अपन नाम बतावें।
1: जी सर, हमारा नाम हाफिज कुतुबुद्दीन है। जी,
0: तो आकाशवाणी के साथ में आपका कितना पुराना नाता है?
1: वैसे तो हम आपको बताएं सर, हमारा नाम हाफिज कुतुबुद्दीन है और गांव का नाम हमारे मोहम्मदपुर कादी है और जिला सुल्तानपुर
0: जी
1: है और हम नेत्रहीन है। रेडियो से हमारा नाता सर तकरीबन सन 91 से है।
0: तो कौन कौन कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: रेडियो हमारा जान लीजिए कि एक जीवन साथी की तरह है। हम लोग जो है रेडियो से बहुत ही फायदा उठाया है और रेडियो हम लोगों को एक साथ हमेशा बना रहता है। कार्यक्रम सुनने का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम लोग कृषि चर्चा सुनते हैं और विविधा है, उर्दू प्रोग्राम, जिले के हलचल है, घर आंगन है, लोकार्पण, खेती किसानी है, संडे को आता है संकल्प प्रोग्राम सर। ये सब हम लोगों का पसंदीदा हमारा प्रोग्राम है। जो भी पेश करने वाले लोग हैं मेहनत से करते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है और उसका लाभ भी हम लोगों को मिलता है, उठाते हैं। सर जी, हम आपको बताएं हमें रेडियो से क्या फायदा मिला है।
0: जी
1: हम जैसे हम ब्लाइंड हैं तो हम लोगों की ब्लाइंड थे तो हमारी शादी हुई तो हम लोगों को नहीं पता था कि हम विकलांगों के लिए राज्य सरकार से क्या स्कीमें चलती हैं और हम विकलांगों की शादी के बाद कुछ अनुदान टाइप का कुछ भी मिलता है। तो हम रेडियो एक दिन सुन रहे थे संकल्प प्रोग्राम सुना। हाँ, जब किसी विकलांग की शादी होती है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 10-12 हजार का अनुदान मिलता है। हम उसी को सुन के अप्लाई किए और हमें एक साल के अंदर वो अनुदान विभाग से मिल गया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी और हम रेडियो से सुन के बहुत से फायदे उठाए हैं सर। हम एक एनजीओ चलाते हैं तो वही रेडियो आकाशवाणी से सुनकर ही कि एनजीओ कैसे बनता है या कैसे चलाया जाता है, तो उसी से हम प्रेरित होके हमने एनजीओ खोला, एनजीओ को रजिस्टर्ड कराया तो एनजीओ चलाते हैं।
0: अच्छा लगे सुन के कि आप जो है आकाशवाणी के कार्यक्रम ना खाली सुनत हैं बल्कि वका जो है सुन के जो जानकारी मिलत है वका अमल में लावत हैं और उसे फायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बार फिर से आपों का और सब श्रोता उनका जो है इसमें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। एक और बहुत पुराने श्रोता हमारे साथ में है और इन्हों से बात की जाए और जाना जाए कि आकाशवाणी के साथ में इनका कितना पुराना जुड़ाव है। भैया अपन नाम बतावें।
2: हौसला मौर भैया, हमारा पूरा नाम है कुलदीप कुमार तिवारी, ग्राम नरहरपुर, तहसील सफीपुर, ब्लॉक सफीपुर, जिला उन्नाव है सर। और आप ये समझ गए सर जी कि आकाशवाणी से हमें बहुत प्यार है और आकाशवाणी से बहुत कुछ हमने सीखा है। आकाशवाणी ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम उसका कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं, आप ये समझ लें। रेडियो हमारी समझो जीवन रेखा है, ये कहने की हमारी अगर सांसें हैं तो हमारा रेडियो है सर।
0: रेडियो से कितना पुराना लगाव है, कब से जुड़े हैं?
2: सन 85 से हम सुन रहे हैं सर। अब आजकल वो सीरीज आ रही है जो जो पुराने प्रसारक हैं उनकी भेंट वार्ताएं आ रही हैं, हमको इतना अच्छा लगता है।
0: एक और महिला श्रोता हमारे साथ में है और इन्हों से बात की जाए।
3: मेरा नाम नीलिमा बेटी है, ग्राम खुश मोहलारा, तहसील रामकने का, जिला बाराबंकी।
4: नीलिमा जी, रेडियो कब से सुन रही हैं?
3: मैं बचपन से सुन रही हूँ और खास बात यह रही कि जब मैं कक्षा 3 में थी मैंने सबके आखर पढ़ी के लिए पत्रों को लिखना शुरू किया।
4: रेडियो के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं?
3: हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कार्यक्रमों की वजह से हम कभी मतलब बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और रेडियो के कार्यक्रमों को सुनकर हमने उसे अपने पत्र मतलब जो प्रश्नोत्तर होते थे उसमें डाल दिया है।
4: कौन कौन से कार्यक्रम सुन रही हैं?
3: इस समय तो अपराजिता है, घर आंगन है, मन भावन है और किसानों के लिए कार्यक्रम और लोकगीतों के कार्यक्रम है, सभी सुन रही हूँ।
4: सारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं?
3: जी जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं और खास बात ये है कि एक कार्यक्रम आता है पानी की कहानी, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है।
4: बहुत अच्छा लगा कि आप ये नियमित श्रोता हैं और सारे कार्यक्रमों को बहुत बारीकी के साथ में सुनती हैं। एक बार मैं फिर से आपको भी और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा हमें कि आकाशवाणी से आपने हमें याद किया, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: तो आज के ई कार्यक्रम में बस इतने, यही के साथ में आप सब श्रोता पंचन का एक बार फिर से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा हुए के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।
5: वारियर्स भैया, कितनी बढ़िया बातचीत रही कि जो है देखो अपन सफ़र कितना बचपन से सुनने वाला और आगे सफ़र निरंतर जारी रहा है, यही के लिए भाई हम सब के लिए और हम सबका बधाई और सबका बधाई और शुभकामनाएं।
0: एक बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से शुभकामना आपो का और सब श्रोता पंचन का। अब देखो अपने श्रोता पंच इंतजार कर रही हैं कि सरला बहनी कोनो बढ़िया सा गौने लेके आई हैं। तो
5: हाँ रियाज भाई, हम गौने लेके

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: रियाज भैया,
3: हाँ, देखो सरला बहनी,
2: गीत गवनर भी सुन लेंगा, है ना? हाँ। और कितनी बढ़िया गवनी रही। और लेकिन कि अब बात करी जाए अपने खेती पाती का।
3: बिल्कुल, कहे से खेती पाती के अगर बात ना कीन जाए तो अपने खेत में का हो रहा है, खेत में का कर ही जाने ना मिले।
2: तो यही लिए भैया, लेकिन हम तो भैया पूरा ध्यान रखा था अपन संजा सवेरे, अब यह समय तो बहुत ज्यादा ध्यान देख जरूरत है। अब खरीफ फसल का जो है अपन तैयारी करे खाए, है ना? तो अपन खेत का जुताई, गहरी जुताई हो गया भैया, है? अब यू छोड़ देना है खेत की जो है कैसे जो है जुताई हो गया है, अब फसल लगाओ के लिए खेत पूरी तरह तैयार रखे का है।
3: बिल्कुल तैयार रखे का है कि कहे से कि जो है होशियार किसान वही है कि जो उन फसल बोवे का है वह के योजना पहले से बनाए के रखे है। ऐसा ना हुए कि जब खेत खाली हुए तब सोचे कि अब हमें काब हुई,
2: नहीं। तो यही लिए भैया पहले तैयार होने की जरूरत है, है ना? तो आप जो है सबसे पहले बात तो ये भैया कि जो है भूमि और बीज शोधन,
3: हाँ,
2: है ना? तो बीज शोधन जो गाती जो है अपन बीज है उसका शोधित हो चाहिए, वो तैयार रह चाहिए। और जैसे अब जो है बेरन डाले रहा है मैंने, है अभी जी की बेरन नहीं पड़ी है, तो वो भैया जो है धान जो डायरेक्ट है खेत में उसका जो है पहले भिगावे से पहले छाने से पहले हम 10-15 दिन पहले देख ले कि जो है स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, कहाँ से हम बीज बो रहे हैं और आगे फसल तैयार करे कहा। यही लिए हम सबका जो है जरूरी है कि अपने बीज शोधन भी कर ले और अपने खेत की पूरी तरह तैयारी कर ले,
3: तैयारी कर ले। अच्छा, एक चीज और है कि यह देखा जाता है कि कुछ पंच जैसे घर के बिया रखे रहती उसके बाद में फिर वक्के जो है बुआई कराती, तो ये ध्यान रखा जाए कि सबसे पहले उसका ये जाँच ली जाए कि बिया जो है वो स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। तो देखो अपने पंच का पानी में डाल थी, जो उतरा आवा था दाना वो का हटाई दिया थी, और जो बढ़िया मजबूत दाना रहा था वो का रख के जो है शोधित करके अपने जो है रख देती बेरन लगावे के लिए।
2: तो यही लिए जो है पहले से हम सबका तैयार रखेगा और तैयार रहा थी भैया, हम सब पंच तैयार भी रहा थन। और देखो एक चीज और है, यू ये है कि भैया जो है हम सब फसल लगावे थन, है? तो समय, हर समय अलग अलग फसल लगावे थन, लेकिन अब जो समय है तकनीक इतनी ज्यादा आगे हो गया है कि हम सबका जो है हर मौसम में अपने हिसाब से और कुछ न कुछ फसल हम सब लगा सकते हैं, उनके साथ और भी काम कर सकते हैं। और जरूरी है अपन खेत का बचा ले।
3: बिल्कुल, खेत बचाओ बहुत ज्यादा जरूरी है, काहे से कि जौन हिसाब से हम पंच अंधाधुंध रसायन के इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यहाँ पर अंकुश ना लगा तो समझ लियो कि ना खाली अपन खेते जो है खराब हुए बल्कि जौन अपन सेहत है वो गड़बड़ाए जाते हैं।
2: तो ये लिए भैया हम सबका यू चाहिए कि जो है घूर खाद डालो अपने खेत में, है जो है राहत है तो घूर के खाद इकट्ठा भईन रात भैया, तो ये समय रहते कि जो अपने खेते में डाल के जुताई करवा दियो और जो है वो सबसे बढ़िया रहा था। और फसल देखो रसायन डालती हो और यह खेते में अपने जो है घूरे खाद डालती हो, कितना फर्क।
3: अच्छा, एक तो घूरे का खाद ही है, एक साथ में जो अपने हरा चारा वो हरी खाद का जो उपयोग करती, सबसे बढ़िया तो तरीका वही है कि एक बार जो है सनई ढैंचा के बुआई करवाए के उसके बाद में वका खेत में 45 दिन में जो है पलटाए दिन जाए, जोतवाए दिन जाए, तो समझ लियो कि जौन पोषक तत्वों के अपने खेत में कमी रहते है वके पूर्ति हो जाते है। और साथ साथ में जो अपने जेब के ऊपर अतिरिक्त भार आवत है रसायन के यानी खाद के जो खरीदारी पड़ा था वह से हम पंच बच जाए थे।
2: और कितनी अच्छी बात है भैया कि जो है अपनी माटी स्वस्थ रहा था, है ना? हाँ। अलग अलग फसल लगाए से और रसायन के कम उपयोग करे से, भाई जरूरत है तो डायरेक्ट पड़ जाते, लेकिन कि कम से कम उपयोग,
3: कम से कम और बहुत सीमित मात्रा में वह जो अगर डाले की जरूरत है तो सबसे पहले जो अपने कृषि विशेषज्ञ हैं वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह मशवरा ले ली जाए भैया कि हम कौन दवाई डाली जाए और कितनी मात्रा में डाली जाए और हम कौन कौन सावधानी बरती जाए।
2: बिल्कुल भैया, और देखो गर्मी बहुत जो मौसम है यह समय इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि जो है भाई सवेरे संझा सिर्फ बाहर निकल सकते हो, दोपहरियम तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। और जो है जब दोपहरियम भाई निकरे है भाई, जब काम पड़े तो निकरे पड़े मने का, लेकिन जब निकलो तो भाई पानी ले के निकलो, है ना? और
3: हाँ, बिल्कुल
2: सिर पे बांध के निकलो, ये सब काम करके निकरे चाहिए।
3: अच्छा, एक चीज और है, बाहर निकलो मूल एक चीज और ध्यान रखो कि अपनी जो सरकार की तरफ से तमाम तरीके की योजना चला करत है वह अगर लाभ लिए का है तो जो सरकार कह रही है कि किसान रजिस्ट्री कर बहुत ज्यादा जरूरी है, वह का हम पंच ध्यान रखी वह रजिस्ट्री जरूर करवाई।
2: रजिस्ट्री कराओ भैया।

0: बहुत जरूरी है। और देखो गर्मी कहा था, गर्मी खूब हो रही है, तो ये सब जो अपन घर हरा गोरु हैं उनका यही समय है कि उनका जो है चारा की कमी हो जाता है
1: बिल्कुल
0: ना, हरा चारा कम मिल पावत है, तो जो है वह समय वाला वही सूखा भूसा ये सब है, लेकिन कि कमी ना हो पावे यह खातिर जो है हम सब अगर वह खातिर अपने खेत में कोनो हरा चारा बोए दी तो ये जो गर्मी का मौसम है वो आसानी से उनके चारा पाने के लिए हो सकता है।
1: तो बिल्कुल जो है कि हरा चारा की आप बात की हो, तो यही विषय पर एक जानकारी अपने पंचन के लिए करवा दी जाए कि पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन, ये विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार राय भैया, और इनसे बतकही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ ये बतकही सुना जाए और जाना जाए कि हरा चारा उत्पादन करे के लिए कौन कौन सावधानी बरतब जरूरी है और क्या क्या तरीका है।
0: सुना जाए भैया, और पंच भैया भी सुने।
1: बिल्कुल
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती का जुड़वा भाई पशुपालन है। पशुओं में हरा चारा का उत्पादन स्वस्थ पशु के लिए यह आवश्यक है कि उसकी खुराक हरे चारे के रूप में दी जाए। तो पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास डॉक्टर एस के राय साहब, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब ये बताएं कि पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन कितना महत्वपूर्ण है।
3: नमस्कार पशुपालक भाइयों बहनों। सबसे पहले तो अगर आप पशुपालन का कार्य कर रहे हैं या पशु पाल रहे हैं, चाहे वो छोटे पशु हों या बड़े पशु हों, हरे चारे का बहुत सारा महत्व है। हरा चारा पशुओं के चारे का एक अभिन्न अंग है, जिसमें कैल्शियम, मिनरल, विटामिन्स सारे तत्व पाए जाते हैं। और अगर आप हरे चारे की आपूर्ति करें तो अगर दुधारू पशु है तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा। अगर छोटे पशु हैं तो उसके मांस उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से हरा चारा महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा एक परिदृश्य बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अगर हम हरे चारे की बात करें तो हमारी जितनी आवश्यकता है, हमारे पशु की संख्याओं के अनुसार हमारी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार 44% की अभी भी कमी है। मतलब जितना उत्पादन होना चाहिए उसका 44% अभी भी कम है। और अगर हम सूखे चारे की बात करें, जैसे पुआल, भूसा, इनकी बात करें, तो लगभग 21.4% की अभी भी कमी है। और ये हमारे लिए, हमारे पशुपालन विभाग के लिए, हमारे कृषि विभाग के समन्वय स्थापित कर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि पशुओं का मुख्य अगर आहार है तो वो हरा चारा है, जिससे हम पशु का स्वास्थ्य जो है सही रख सकते।
2: तो खरीफ की बात करें कि किसान भाई पूरे साल हरा चारा मिले, पशुओं के लिए हरे चारे की बात चल रही है डॉक्टर साहब, तो ये बताएं कि पूरे साल हरा चारा मिलता रहे ताकि दुधारू पशुओं का दूध भी कम ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और पशु आहार भी कम देना पड़े, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे।
3: देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश चारा नीति लागू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हम 3 योजनाएं चला रहे हैं। और उस योजनाओं के अंतर्गत हम पशुपालकों को निःशुल्क हरे चारे का बीज या हमारी नेपियर घास है जो बहुवर्षी घास होती है, जैसा अभी आपने बताया कि अगर वर्षों तक जो है हरा चारा मिलता रहे तो उसका हमारा जो सबसे अच्छा अगर कोई विकल्प है तो वो है नेपियर बाजरा हाइब्रिड रूट स्लिप। रूट स्लिप का मतलब होता है उसकी जड़ें लगाई जाती हैं, उसके
2: जी
3: बीज नहीं होते, उसकी जड़ें लगाई जाती हैं। और जड़ों को जो अगर लगाया जाए तो एक बार अगर लगा दिया जाए तो 4 से 5 साल तक ये जड़ें चलती हैं। वो एकदम बिल्कुल एक झाड़ियों की तरह होती हैं, 20 से 25 दिनों में वो फिर एक बार अगर आप कटाई कर लें तो फिर वो दोबारा तैयार हो जाती है।
2: यानी
3: अगर
2: सालों साल ये हरा चारा
3: अगर
2: मिलता।
3: 1 हेक्टेयर में आप हरा चारा बो रहे हैं, मान लीजिए, या 1 एकड़ में या 1 बीघा में बो रहे हैं, एक तरफ से आप कटाई करना शुरू करिए, जब तक आप दूसरे छोर तक पहुंचेंगे तब तक पहले छोर पे वो चारा फिर तैयार हो जाएगा। इस तरह से 4-5 एक बार अगर आपने बुआई अगर कर दी तो आपको वर्षों तक जो है ये हरा चारा मिलता रहेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी उत्तर प्रदेश चारा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत मैं अभी अपने पशुपालक भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा कि प्रदेश स्तर पे हम लोग किस तरह से जो है हरा चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। पहली हमारी जो योजना है वो अतिरिक्त चारा विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत हम प्रदर्शन के रूप में हम मिनी किट बांटते हैं
2: हर जनपद में
3: हम मिनी किट बांटते हैं। रवि में अगर हम बात करें तो बरसीम का हम मिनी किट बांटते हैं। 2.5 किलो का यह मिनी किट होता है, मतलब कि 2.5 किलो का एक थैला होता है जो हम एक पशुपालक को देते हैं।
2: और खरीफ में
3: हम जो है 3 किलो का, चाहे वो एमपी चरी हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो बाजरा हो, इस तरह के जो है हम बीज जो है 3 किलो के बीज हम उपलब्ध कराते हैं।
2: मिनी किट निःशुल्क
3: मिनी किट हम उपलब्ध कराते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम 2025-26 में हमने 24,896 बरसीम के मिनी किट अपने पूरे प्रदेश में किसान भाइयों को बांटे हैं। दूसरा, अगर हम खरीफ की बात

0: तो 16,667 हमने मिनीकिट किसान भाइयों और बहनों को
1: पिछले
0: हमने
1: वर्ष
0: पिछले वर्ष में हमने बांटा है।
1: और इस
0: और
1: बार भी योजना होगी?
0: ये अगर हम टोटल हम आंकड़े की बात करें तो ये 41,653 हमने मिनीकिट पिछले वित्तीय वर्ष में हमने बांटा है। और ये मिनीकिट 0.1 हेक्टेयर, मतलब लगभग अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो लगभग 10 बिस्वा में इसको लगाया जाता है। और 10 बिस्वा में 5 पशुओं को चारा खिलाने के लिए किसी भी पशुपालक भाई के पास, जिनके पास जो है 5 पशु है, उनको खिलाने के लिए यह जो है पूरी तरह से पर्याप्त
1: पर्याप्त
0: होता
1: है।
0: है, पूरी तरह से पर्याप्त होता है। इस वित्तीय वर्ष की खरीफ की अगर हम बात करें तो हमारा अभी अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर हम 33,300 मिनी किट सिर्फ खरीफ में हम बांटने जा रहे हैं।
1: जी
0: 33,300 मिनी किट, 3 किलो की मिनी किट, ज्वार की मिनी किट हम बांटने जा रहे हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों और
1: यानी
0: बहनें,
1: बहु
0: इससे
1: कटान वाली ज्वार।
0: बहु कटान वाली 4 से 5 कटान इसमें होती है, और इससे हम पशुपालक भाइयों और बहनों को लाभान्वित करेंगे। दूसरी हमारी जो योजना है वो नेपियर रूट स्लिप योजना, जैसा अभी मैंने बताया कि नेपियर एक ऐसी बहुवर्षीय घास है जिसको एक बार लगाने के बाद ये झाड़ियों की तरह तैयार होती है। अगर आप एक जड़ लगाते हैं तो एक साल में यह जो है कम से कम 100 जड़ों में यह परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि आप चाहें तो इसका क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाएं। आप एक बार अगर जड़ लगाएं यह झाड़ियों की तरह तैयार हो गया एक,
1: स्लिप्स के माध्यम
0: हाँ,
1: से।
0: स्लिप्स के माध्यम से, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोपागेशन कहते हैं। तो हम जो है अपनी जमीन का क्षेत्रफल जो है इस रूट से हम बढ़ा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद में यह जो है 4 से 5 वर्षों तक चलती है। हमने अभी पिछले वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 230 हेक्टेयर के लिए 60 लाख हमने नेपियर रूट स्लिप अपने किसान भाइयों को निःशुल्क बांटी है
1: पूरे प्रदेश में,
0: पूरे प्रदेश में। और जिन पशुपालक भाइयों को हमने लाभान्वित किया है उनको 4,000 रुपया हमने 0.2 हेक्टेयर की एक यूनिट, मतलब एक पशुपालक भाई या बहन को लाभान्वित करने के लिए हमने 0.2 हेक्टेयर का हमने जो है मानक रखा है। और 0.2 हेक्टेयर में 6,000 रूट स्लिप लगाई जाती हैं, उनको हमने निःशुल्क 4,000 रुपया भी उनको दिया है, ताकि जो है उनको मेड़ बनाने में या उसकी जुताई करने में या सिंचाई करने के लिए उसमें मदद मिल सके। इस 2026-27 में हम 260 हेक्टेयर के लिए ये योजना लाए हुए हैं,
1: नेपियर
0: नेपियर रूट स्लिप की योजना, जिसमें हम 78 लाख रूट स्लिप बांटने जा रहे हैं। जैसे ही बरसात शुरू होगी, क्योंकि बरसात के मौसम में यह रूट स्लिप इनकी जड़ें अच्छे से लग जाती हैं, तो जैसे ही बरसात शुरू होगी हम जून लास्ट या जुलाई के महीने में हम जो है पशुपालक भाइयों को, किसानों को हम ये रूट स्लिप उपलब्ध कराएंगे निःशुल्क।
1: तो ये जो मिनी किट है पूरे प्रदेश के हर जिले के हर राजकीय पशु चिकित्सालय के माध्यम से मिलेगा?
0: बिल्कुल, इसपे आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तीसरी हमारी योजना है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, गौशालाओं में संबद्ध चारागाह की भूमि। हमारे गौशालाओं में आपको पता है कि पूरे प्रदेश में 7,600 गौशालाएं हैं, जिसमें लगभग 13 करोड़ के आसपास पशु संरक्षित हैं। और इन पशुओं के अगर संरक्षण है तो इनके लिए भी हरे चारे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हमने एक योजना गौशालाओं से संबद्ध चारागाह की भूमि की योजना हमारे पास है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारी कब्जा मुक्त सिंचित चारागाह की भूमि है उसमें हम चारा लगा करके उन पशुओं को का भरण पोषण हम हरे चारे के माध्यम से करते हैं, जिसमें हमने 2025-26 में 2,954.5 हेक्टेयर में 22,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने संबंधित ग्राम पंचायत के, जहां पे गौशाला संचालित है, संबंधित ग्राम पंचायत को हमने उपलब्ध कराया है, ताकि वो हरा चारा का उत्पादन करके संरक्षित गोवंशों को खिला सके। इस वित्तीय वर्ष में हम 13,850 हेक्टेयर में भी जो है फिर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चारे का बीज, उसकी जुताई, उसकी सिंचाई के लिए धनराशि 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उपलब्ध कराएंगे। और इन तीनों योजनाओं के अतिरिक्त हमारे राजकीय प्रक्षेत्र कुल 10 हैं। इन 10 राजकीय प्रक्षेत्रों में हम जई का, लोबिया का तथा ज्वार के बीज उत्पन्न करते हैं, अपने ही प्रक्षेत्र की जमीन पे उत्पन्न करते हैं, और बहुत ही न्यूनतम दरों पर हम ये पशु चिकित्सालयों पे उपलब्ध कराते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 8,388.84 हेक्टेयर के लिए हमने जो है जई का बीज, चाहे लोबिया का बीज, चाहे ज्वार का बीज हमने उपलब्ध कराया है, जो बहुत ही न्यूनतम दरों पे उपलब्ध होता है पशु चिकित्सालयों पे। तो पशुपालक भाई और बहन इन बीज को भी प्राप्त करके हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 790-58-74-521, 790-58-74-521, 790-58-74-521।
1: डॉक्टर सुनील कुमार राय साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन कैसे करें पशुपालक भाई बहन, और उत्तर प्रदेश चारा विकास नीति के तहत कौन कौन सी सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरला वहनी,
3: हरी आज भैया।

0: देखो, पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन विषय पर कितनी बढ़िया जानकारी दीन डॉक्टर सुनील कुमार राय भैया, और वही तिना से बढ़िया तिना से इनसे पूछिन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो इतनी बढ़िया बात कही सुनवाई के लिए इनका दोनों पंचन का बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और देखो, फिर समय है मनोरंजन के, तो अपने पंचन का सुनवा दीजिए खमटा झुलनिया झोंकेदार। सुना रहे हैं दीपक सिंह, तो सुना जाए, आनंद लीन जाए।
1: सुना जाए भैया।

0: पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से।
2: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: सरला बहनी।
8: हाँ भैया।
7: देखो, जो अपन खेती पाती है वो मौसम पर आधारित रहता है। जिस मौसम रहता है वही के हिसाब से हम पंच अपने खेती पाती का योजना बनाई तो काम करी थे।
8: और यह समय भैया बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन क्या आप बताओ कि क्या हाल चाल है मौसम के?
7: तो मौसम की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहे। बाकी जो है आज से लेके 14 तारीख तक जो है कहूँ कहूँ वर्षा और गरज चमक के साथ में बौछार पड़े के संभावना है। तो ई तो रही मौसम की जानकारी। अब अपने पंचन का ही बता दीन जाए कि जोन आपन कृषि उत्पाद है, जोन हम पंच पैदा कर रहे हैं अपने खेत में, वो के बाजार में का दाम मिल रहा है?
8: भैया हम लेके बैठे हैं बाजार भाव, और बाजार भाव है लखनऊ, कानपुर, गोंडा, अयोध्या, चार मंडी के थोक बाजार भाव। लखनऊ मंडी में गेहूँ दड़ा है 2,590 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में है 2,585 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 2,530 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में है 2,585 रुपये प्रति क्विंटल।
7: चावल मोटा की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में 3,480 रुपया, कानपुर में 3,450 रुपया, गोंडा में 3,000 रुपया और अयोध्या मंडी में 3,070 रुपया प्रति कुंतल रहा।
8: सरसों काली लखनऊ मंडी में 6,750 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में है 7,300 रुपये प्रति कुंटल और अयोध्या मंडी में है 6,600 रुपये प्रति कुंटल।
7: मटर सफ़ेद की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में 4,450 रुपया, कानपुर में 4,500 रुपया और गोंडा में 4,230 रुपया और अयोध्या मंडी में 4,270 रुपया प्रति कुंतल।
8: चना छोटा लखनऊ मंडी में 6,680 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में 6,375 रुपये प्रति कुंटल और गोंडा में है 6,750 रुपये प्रति कुंटल, अयोध्या में 6,400 रुपये प्रति कुंटल।
7: आलू का दाम रहा लखनऊ मंडी में 800 रुपया, कानपुर में 710 रुपया, गोंडा में 925 रुपया और अयोध्या मंडी में 900 रुपया प्रति कुंटल।
8: टमाटर का भाव लखनऊ मंडी में 1,550 रुपये प्रति कुंटल, कानपुर में 1,350 रुपये प्रति कुंटल, गोंडा में 2,000 रुपये प्रति कुंटल और अयोध्या मंडी में 1,650 रुपये प्रति कुंटल।
7: बैंगन की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में रहा 1,700 रुपया और कानपुर में भी 1,700 रुपया, गोंडा में एक दाम रहा 2,475 रुपया और अयोध्या मंडी में 2,000 रुपया प्रति कुंतल।
8: प्याज के भाव लखनऊ मंडी में 1,350 रुपये प्रति कुंटल और कानपुर में 1,290 रुपये प्रति कुंटल, गोंडा में 1,600 रुपये प्रति कुंटल और अयोध्या में है 1,300 रुपये प्रति कुंटल।
7: लहसुन की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में 7,200 रुपया, कानपुर में 8,200 रुपया, गोंडा में 9,000 रुपया और अयोध्या मंडी में 7,090 रुपया प्रति कुंतल।
8: और यार भैया मिठास की बात की जाए तो गुड़पारी और गुड़पारी का भाव लखनऊ मंडी में है 4,650 रुपये प्रति कुंटल और कानपुर में है 4,300 रुपये प्रति कुंटल और लखनऊ मंडी में 4,650 रुपये प्रति कुंटल।
7: तो ये तो रहा थोक मंडी बाजार भाव जो कि प्रति कुंटल में रहा। अब अपने पंचन का ही बता दी जाए कि कल जो उन कार्यक्रम प्रसारित हुए उमा का अपने पंच सुनिए। तो लोकायतन के बात की जाए तो उमा अपने पंच वार्ता सुनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य तंत्र, ई विषय पर जानकारी दें पुष्पावती बहिनी, और खेती किसानी कार्यक्रम अपने पंच सुनी है, खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग, ई विषय पर जानकारी दें यतेंद्र कुमार भैया और इनसे बतकही करिए डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
8: भैया ये तो कितने जो है बाजार भाव रहा, मौसम की जानकारी रही और कल अपने बैठक में काका हुए ई रहा। मतलब कि जो भैया देखो बार बार यही कहा जाता है कि जो है यह समय जो है बहुत विकट गर्मी पड़ रही है, तो हम सबका अपने सेहत का ध्यान रखे का है, अपने घर के बुजुर्ग का ध्यान रखे का है, लड़का बच्चा का ध्यान रखे का है और सबसे जरूरी है जो अपने खेती के साथी हैं हरहा गुरु उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
7: बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। खास बात ये ध्यान रखा जाए कि जो उनका पानी पिलावा जाए, साफ पानी पिलावा जाए, स्वच्छ पानी पिलावा जाए और जो है बीच बीच में उनका पानी दिखावत रहा जाए। कहूँ अगर

0: बहरावे लेके जाए की जरूरत है तो सबसे पहले पानी उनका दिखाए दीन जाए, पानी पियाए दीन जाए, तब बहरे लेके जावा जाए। ऐसा ना हुए कि उनके प्यास लगी हुई जब बहरे निकली तो कहूँ भी गढ़ा वढ़ा में पानी पावे उनका पी लिए।
1: अब बिल्कुल यह बात सही है। और दूसरी बात ये भैया कि ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो है हरा गुरु का कहाँ हम नहला रहे हैं, गंदे पानी में नहीं नहलाया है, घरे से नहला के ले जाएं या फिर जो है घरे लेके आवें। संझा बेरी तो सबसे अच्छा समय रहा था कि जो है संझा बेरी अपने जो है हरा गुरु को नहला दिन जाए, तब चारा पानी दे के तब एक जगह बढ़िया छाया में बांध दिन जाए।
0: और एक साथ में यो ध्यान रखा जाए कि जहाँ पर उनका बांधा जाता है वहाँ पर ही ध्यान रखा जाए कि गंदगी ना हुए। रोज जो है उनका बिछौना निकाल के बाहर घाम दिखाए दीन जाए, सुखवा लीन जाए, रोज बदल के जो है उनका जो है सूखे में रखा जाए। ऐसा ना हो कि नमी बराबर बरकरार जब रहा है तो तमाम तरीके के ऐसे संक्रामक रोग रहते हैं जो उनके अंदर पनपे की संभावना रहा है, तो वह से बचप बहुत ज़्यादा जरूरी है।
1: और रियाज भैया जो है यह समय हम सब बेरन अपने खेत में डारे हैं, है ना, तो ये बात का ध्यान रखे का है कि संझा के बेरी पानी लगाओ की जरूरत है, है ना, दोपहर में बिल्कुल नहीं, सवेरे के समय बिल्कुल नहीं। जो है संझा के अगर वो पानी लगा दें तो अपने जो है बेरन के लिए बहुत फायदेमंद हुए। और अपन जो खेत है यह समय मेड़ के मेड़ बंदी उका जो है मेड़ बांधे वाला कि हाँ, जो है बरसात आए तो उके पहले हम सब इका अगर बांध लिए थे खेत के तैयारी कर लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया रहा था।
0: तो बिल्कुल ही तो बढ़िया रहता है। एक और अपने पंचन से हम ये आग्रह करबे कि अपन कार्यक्रम किस लागत है यह के बारे में अवगत जरूर करावें, और कार्यक्रम और का सुना चाहती हैं और कौन कौन सुझाव है वह जो है चिट्ठी पाती के माध्यम से अवगत करावें, और एक और जो डिजिटल माध्यम है यानी कि ईमेल भी अपने पंच कर सकते हैं। तो पहले ईमेल आईडी बता दीजिए अपने श्रोता पंचन का कि farmandhome@gmail.com यानी कि farmandhome@gmail.com।
1: और तो, पता पर चिट्ठी भी लिखे भैया हाँ, तो और अब घरे चले के बेरिया हो रही है
0: तो पंचन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद, हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का

0: सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
3: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
4: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचार

0: का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि

0: शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा,
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
7: चलो,
6: कहाँ
7: एडमिशन कराने?
8: खाता हुआ एक्टिव,
9: RBI कहता है।
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:32 हुए और प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता, जिसका विषय है दवाओं को लेने का सही तरीका। वार्ताकार है डॉक्टर OP पटेल।

नमस्कार। आज हम दवाओं के उपयोग करने के सही एवं सुरक्षित तरीके के बारे में एक चर्चा करेंगे। दवाइयां शरीर की बीमारियों को ठीक करने एवं शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए दी जाती हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि डॉक्टर पर्चे में दवा लिख देते हैं, परंतु रोगी एवं तीमारदार के मन में संशय बना रहता है कि दवाओं का उपयोग कैसे करें। यदि दवाओं के उपयोग सही तरीके से न किया जाए तो वो या तो कम फायदा करेंगी या फिर बिल्कुल ही हो सकता ना फायदा करें या नुकसान भी कर जाएं। तो हमको दवाओं के सर्वोत्तम प्रभाव के लिए दवा लेने का सही जो तरीका है वो पता होना चाहिए। अगर हमें वो सही तरीका नहीं पता है तो हम दवा का सही प्रभाव नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हम अपने डॉक्टर से या फार्मेसिस्ट से पूछ सकते हैं कि हमें दवा कैसे लेनी है। अब बात करते हैं कि जो दवाएं हैं हमारे शरीर में किन किन मार्ग से प्रवेश करते हैं। तो पहला है इंटरनल मार्ग। इंटरनल मार्ग मीन्स जो दवाएं हमारे पाचन तंत्र के रास्ते शरीर में जाती हैं, उसमें भी कई कैटेगरी होती हैं। जैसे एक मुंह से लेने वाली दवाएं जिनको हम मुंह से खाते हैं, तो कुछ दवाएं होती हैं जो पूरी निगल ली जाती हैं, जैसे टैबलेट लिया पानी के साथ पूरी खा लिया। कुछ दवाएं होती हैं जिनको हम चूस के खाते हैं, कुछ दवाएं होती हैं जिनको चबा के खाते हैं। तो अब यदि हम कोई दवा पूरी निगलने वाली है और उसको हमने चबा लिया तो उसका प्रभाव पूरा उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, उसका प्रभाव कम पड़ जाएगा। इसी के उलट यदि हम कोई चूसने वाली दवा जैसे उल्टी की दवा हमको चूस के खानी है, चूस के खाएंगे तो वो जल्दी फायदा करेगी, लेकिन उसको हमने पूरी पूरी स्वालो कर लिया, पूरी निगल लिया, तो वो देर में काम करेगी। तो हमको जो दवा जैसे बताई गई है वैसे ही लेना होता है। अब अगला आता है सब लिंगुअल, जबान के नीचे रखने वाली दवाएं, जैसे हृदय रोग की दवाएं होती हैं, नाइट्रोग्लिसरीन है, सॉर्बिट्रेट है, ये कार्डियक बीमारियों में दी जाती हैं। तो इसको हमें जबान के नीचे रखना होता है, ये जबान के नीचे घुल के सीधे खून में मिल जाती हैं। तो इससे हम जल्दी कार्य करती हैं और साथ में ये पाचन तंत्र को बाईपास कर देती हैं, मतलब ये दवा पेट में न जाके सीधे खून में जाती है और जल्दी काम कर देती है। इसी तरह एक कैटेगरी होती है बकल, यानी गाल और मसूड़े के बीच में रखने की दवा, एक मिर्गी की दवा मिडाजोलाम आती है, तो वो हमारे बक्कल में रखी जाती है, वो वहां से अब्जार हो जाती है, वो जल्दी काम करती है। और अगली कैटेगरी है रेक्टल, गुदा द्वार के माध्यम से देने वाली दवा, जैसे पेट ना साफ हो रहा हो तो सपोजिट्री, एनिमा, ये हमारे सीधे गुदा द्वार से दे दी जाती हैं तो पेट साफ हो जाता है। अब इसके बाद एक अगला मार्ग आता है पैरेंट्रल, यानी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाने वाली दवाइयां। तो इसमें भी कई अलग अलग कैटेगरी है, जैसे इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में लगने वाले इंजेक्शन, इंट्रावेनस नस में सीधे लगने वाले इंजेक्शन, एक कैटेगरी होती है सबक्यूटेनियस चमड़ी में हमारे खाल में जो इंजेक्शन लगते हैं जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन, और एक इंट्राडर्मल होता है जो सीधे त्वचा के ठीक नीचे, जैसे कुत्ते काटे का इंजेक्शन जो लगता है एंटी रेबीज, वो हमारा सीधे त्वचा के ठीक नीचे लगता है। अब इंजेक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि इंजेक्शन हमेशा किसी प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे डॉक्टर हैं, फार्मेसिस्ट हैं या नर्सिंग स्टाफ, इन्हीं से लगवाना चाहिए। अगर आप किसी अप्रशिक्षित से लगवा लेते हैं तो हो सकता है कि वो नुकसान कर जाए। अगली एक इन सबसे अलग कैटेगरी होती अदर्स में, जिसमें अलग अलग आते हैं, जैसे टॉपिकल मतलब शरीर के बाह्य भाग में लगाने वाले दवाइयां, जैसे क्रीम है, जेल है, टॉपिकल लोशन है, मेडिकेटेड शैम्पू है, तो ये सब शरीर के बाह्य भाग में लगाए जाते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाला, जैसे कोई क्रीम है वो फोटोसेंसिटिव क्रीम है, तो आपको उसको दिन में नहीं लगाना है, उसको केवल रात में लगाना है। उसको रात में लगाने के बाद सुबह मुंह धुल देना ताकि वो क्रीम हट जाए, नहीं तो वो रिएक्ट कर सकती है। अब आते हैं एक कैटेगरी इनहेल, मींस सांस से लेने वाली दवाइयां जो हम सांस से लेते हैं, जैसे इनहेलर्स हैं, इनहेल करने में कुछ कैप्सूल्स होते हैं, उनको हम सांस से खींचते हैं। ये दवाइयां सीधे फेफड़े में जाके और सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं, तो ये भी हमारे पाचन तंत्र से बाईपास हो जाते हैं। अगला आता है आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स। इसमें एक बताने वाली चीज है कि कुछ आई ड्रॉप्स ऐसी होती हैं जो आंख और कान दोनों में यूज होती हैं, उसमें लिखा भी होता है आई ईयर ड्रॉप्स, लेकिन जो केवल ईयर ड्रॉप्स होती हैं उसमें नहीं लिखा होता कि आई ईयर ड्रॉप, वो केवल कान में डाली जाती हैं। ज्यादातर तो लोगों में ये भ्रांतियां होती हैं कि जो कान आंख की दवाएं होती हैं लगभग सेम होती हैं, तो कई बार वो कान की दवा भी आंख में डाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने हमें आई ड्रॉप दी है तो आंख में डालनी है, और अगर ईयर ड्रॉप दी है तो उसको कान में ही डालना है। अब हम बात करते हैं कि दवाएं किस समय पर और कैसे लेनी चाहिए। जैसे दवा हमें डॉक्टर साहब ने पर्चे में लिख दी, तो उसे पहले हमें अच्छे से समझना होता है, फार्मेसिस्ट से या डॉक्टर साहब से समझ लेना है कि ये दवा हमें कैसे कैसे लेनी है, और हमें उसको अच्छे से याद करके ही खाना है। जैसे कुछ लक्षण

0: दवाएं होती हैं। अगर हमें बुखार आ रहा है तो बुखार आने पे ही दवा खानी है, दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दर्द होने पे खानी है। उसको नियम बना के नहीं खाना है, सुबह दोपहर शाम खा ही रहे हैं, बुखार नहीं आ रहा है तो नहीं खाना है। लेकिन अगर उसमें एंटीबायोटिक लिखी है तो वो डॉक्टर साहब ने एक निश्चित अवधि के लिए और निश्चित समय अंतराल पे लिखी होगी। तो जैसे उन्होंने सुबह शाम लिखी है तो आपको सुबह शाम खाना है, उन्होंने 7 दिन के लिए लिखी है तो 7 दिन खाना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। उतनी खाने के बाद आपको डॉक्टर साहब से पुनः मिलना है और अगर वो आगे बोलते हैं तो खाना है। इसी तरह बीपी की दवाएं, शुगर की दवाएं, थायराइड की दवाएं, ये सब एक निश्चित समय पर लिखा गया है तो उसी समय के लिए लेना है। जब तक कहा ना जाए तब तक दवाएं केवल पानी से ही लेनी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि हमें चाय से लेनी है, दूध से लेनी है। जैसे स्पेशली बोला जाए कि ये दवा चाय के साथ ले सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो, तो लेनी नहीं, आपको सादे पानी से दवा लेनी है। कुछ दवाएं जैसे आयरन की दवा है, इसको दूध या चाय से कदापि न लें, ये उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। आयरन को कैल्शियम के साथ नहीं लेना है, ये एक बहुत भ्रांति है लोगों में कि जैसे ताकत की दवा लिखी है आयरन और कैल्शियम तो लोग एक साथ ले लेते हैं, नहीं लेना है। आयरन को एंटासिड दवाओं के साथ नहीं लेना, जो हमारी एसिडिटी कम करने की दवा आती है डाइजीन है, उसके साथ नहीं लेना, इनको अलग अलग लेना है। अगर एक दवा अभी ले रहे हैं तो एक दवा 1 घंटे 2 घंटे बाद लेना है। कुछ दवाएं खाने के पहले खाली पेट ली जाती है ताकि उनका अवशोषण अच्छा हो सके, जैसे थायरॉक्सिन थायराइड की दवा होती है तो उसको कम से कम सुबह उठ के दवा खा लिया, 1 घंटे तक कुछ नहीं खाया, तब फिर कुछ भी खाएंगे तो वो दवा अच्छे से पेट में अवशोषित हो जाएगी। कुछ दवाओं के लिए बोला जाता है कि अगर वो आप खाने के साथ खाएंगे तो उनका प्रभाव और अच्छा होगा, तो उसको खाना खाने के साथ लेना है, जैसे डायबिटीज की दवाएं। कुछ दवाओं को दुष्प्रभाव कम करने के लिए हम खाने के साथ लेते हैं, जैसे पैरासिटामॉल है, डाइक्लो है, ये खाली पेट खाने से पेट में जलन होती है, एसिडिटी करती है, तो इनको रिकमेंड किया जाता है कि ये आप खाना खाने के बाद लें ताकि आपकी जो एसिडिटी है वो ना हो या कम से कम हो। अंत में मैं एक बात अपने श्रोताओं से और कहना चाहता हूं कि जो दवाएं आप उपयोग कर रहे हैं उनका स्टोरेज यानी भंडारण बिल्कुल सही तरीके से करें, धूप और नमी वाली जगहों पर ना रखें। यदि कोई दवा जैसे इंसुलिन है या फ्रिज में रखने वाली दवा कोई है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसको फ्रिज में रखना है, तो उसको फ्रिज में रखें, यूज करने के तुरंत बाद फिर फ्रिज में रख दें, क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री में रखना है तो फ्रिज में रखना पड़ेगा। दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, दवाएं ऐसी जगह रखें जहां बच्चे उनका दुरुपयोग न कर पाए, कहीं गलती से अगर उनके हाथ में पहुंच गए नुकसान कर सकते हैं। अंत में यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो हमें दवाओं का सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त होगा। धन्यवाद।
1: दवाओं को लेने का सही तरीका, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओपी पटेल की वार्ता। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गर्मियों में आंखों की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचना अग्रवाल से की गई वार्ता।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना अग्रवाल एडिशनल प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, और आज मैं यहाँ आई हूँ आपको बताने कि गर्मी में आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले गर्मी में कोई भी बाहर निकल रहा है तो आंखों की बचाव के लिए यूवी रेस बहुत स्ट्रांग होती है, तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस पहने, बाहर धूल और गर्म हवा से बचने के लिए छाता, कैप या स्कार्फ का भी उपयोग कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से आंख धोना चाहिए, इससे राहत मिलती है। पानी ऐसा नहीं कि आप नल के पानी से धो रहे हैं आंख, आपको आरओ वाटर या फिर मिनरल वाटर या फिर एक्वा के पानी से आंख धोनी है ताकि और एडेड इन्फेक्शन ना अपनी आंखों में डाल दें। सबसे इम्पोर्टेंट गर्मी में क्या होता है कि हमारा इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी का, तो ऐसे में पानी की कमी पूरे शरीर में हो जाती है, तो बहुत जरूरी है कि हम पर्याप्त पानी पिएं ताकि ना ही शरीर बल्कि आंखों में भी सूखापन ना हो। आप जूसेस पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, बेल का शरबत पीजिए। गर्मी में निकलने से पहले अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेट करके निकलिए। गर्मी में अक्सर पसीना बहता है या आंखों में प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी आंखें रगड़ देते हैं। आंखें रगड़ने से ना केवल इन्फेक्शन बढ़ सकता है बल्कि आंखों की जो लेयर्स है उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सभी एसी में बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन, तो एसी में क्या होता है, पूरे दिन बैठने से हमारा एसी एक तरह का डिह्यूमिडिफायर है जो कि पूरे कमरे की नमी कम कर देता है और इससे आंखों में सूखापन और बढ़ जाता है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो यंग यूथ हैं वो कंप्यूटर या चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल तो हर कोई लगातार मोबाइल ही देखता रहता है बिना किसी ब्रेक के, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में एक ब्रेक लें और हमें 20-20-20 का नियम अपनाना चाहिए। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर को देखना चाहिए। इससे लगातार हमारी आंखें एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, इससे सिरदर्द से बचाव होता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाव होता है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं

0: पसीना आता है, तो बेटर ये है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस कम देरी के लिए पहने गर्मी में, और बीच में आप सफाई से उसको पहने और सफाई का पूरा ध्यान रखें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गर्मी का, स्विमिंग पूल, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, हर कोई गर्मी में स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तैयार रहता है, खासकर बच्चे। लेकिन स्विमिंग पूल करते समय हमें कुछ एहतियात बरतने पड़ते हैं। एक तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मात्रा बहुत होती है, तो उससे आंखों की एलर्जी का रिस्क हो जाता है, तो हमें स्विमिंग करते समय गॉगल्स पहनने बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, आंखों में फालतू पानी नहीं जाता है और आंखों का प्रोटेक्शन होता है और आंखों में किसी भी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। स्विमिंग पूल में प्रोटोजोअन अकैंथमीबा का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, तो वो अगर आपके आंखों में जलन है, लाली चल गई है या फिर आपके कीचड़ आ रही है, तो ऐसे में स्विमिंग तुरंत छोड़ दें और एक नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। हम अपने आहार में गाजर, हरी सब्जी, फल और विटामिन ए युक्त भोजन शामिल करें, जो कि आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जहां धूल प्रदूषण वाले इलाके हैं वहां अगर बहुत जरूरी ना हो तो ना जाएं, और अगर जाना भी पड़े तो चश्मा पहन के या आंखों को कवर करके जाएं। अपने इंडिविजुअल सारी चीजें अलग रखें, क्योंकि इससे हमें एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। आप सनस्क्रीन लगाते हैं बाहर जाते समय, अगर आप सनस्क्रीन उपयोग कर रहे हैं तो बेटर यह है कि अपनी आंखों के पास सनस्क्रीन ना लाएं। गर्मी में क्या होता है कि इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है, चाहे आपके शरीर का पानी हो या कुछ भी हो, इसी तरह आंख में जो होता है टियर फिल्म होता है, इवेपोरेशन की वजह से उसकी जो आउटर लेयर है वो इवेपोरेट कर जाती है, तो उसकी वजह से खुश्की या फिर ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे एक बार ड्राई आईज होती है तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, तो वो एलर्जी बहुत कॉमन है, प्लस हम लोग रगड़ देते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि गर्मियों में ज्यादा कॉमन है। वैसे तो सभी को बराबर प्रभावित करता है, लेकिन कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लगातार एसी में लोग बैठते हैं क्योंकि गर्मी है, तो क्या होता है कि वो भी नमी कम करता है, प्लस हमारी गर्मी भी है, तो उससे ड्राइनेस और इंक्रीज कर जाती है। प्लस आजकल की जो जनरेशन है, चाहे वो बड़े भी हो, हम लोग खुद ही मोबाइल बिना पलक झपके बिना कुछ वो किए हम लगातार देखते रहते हैं, और उससे ड्राइनेस और ज्यादा पड़ गया है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, अभी भी पड़ती है, लेकिन प्रदूषण अब बहुत ज्यादा पड़ गया है, तो प्रदूषण की वजह से ड्राइनेस और ज्यादा एग्रीवेट हो गई है। पहले जहां ओपीडी में 10 में से 2 ड्राई आईज आती थी, अब ओपीडी में कम से कम 10 में से 5 लोग, तो इस वजह से है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्लस गर्मी का मौसम तो है ही, तो ये सब मिला के ड्राई आईज और एग्रीवेट हो जाती है। प्लस मैंने आपको बताया मोबाइल कंप्यूटर का एक्सेसिव यूज, ये भी ड्राई आईज को एग्रीवेट करता है। आजकल आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं और उनमें नॉन प्रिजर्वेटिव वाले आते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो वो हम अपनी आंखों में कितने लंबे समय तक डाल सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म डाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्टरी सलाह के, जो कार्बोक्सी मिथाइल होता है विदाउट प्रिजर्वेटिव, क्योंकि सिर्फ ड्राइनेस हो या कुछ और है कि हम डॉक्टरी सलाह के बाद ही कोई ना कोई ड्रॉप अपनी आंख में डालें। कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करें धूल में, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेंगे और आपको रगड़ना पड़ा तो फिर वो आंखों में और जख्म कर सकते हैं, तो ये पहले तो सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर आप चले ही गए और धूल चली गई तो साफ पानी से तुरंत धोनी है। अगर ज्यादा रगड़ हो गई और कॉर्निया पे प्रभाव हो गया तब तो डॉक्टर के पास फौरन जाना होता है, क्योंकि इससे कॉर्निया में जख्म हो जाता है। कोल्ड कंप्रेशन एक अच्छी चीज है, क्योंकि ठंडी सिकाई ऑलवेज बेनिफिट, खासकर गर्मी में। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, गर्मी का मौसम है तो बहुत सावधानी बरतनी है, और धूप में ज्यादा ना निकले, घर में रहने की कोशिश करें, और अगर निकले भी तो सावधानी के साथ निकले, प्रॉपर हाइड्रेटेड निकले, सनग्लासेस पहन के निकले, अच्छा विटामिन ए मतलब पानी युक्त खाना खाइए। ऐसे में फल भी हमारे तरबूज खरबूज सब पानी वाले आते हैं, तो खूब अच्छे से उनको एंजॉय कीजिए, और अब तो आम का सीजन है, आम खाइए। तो थोड़ी सी सावधानी और सही आदतें अपनाकर आप गर्मी में अपनी आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: गर्मियों में आंखों की देखभाल, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रचना अग्रवाल की ये वार्ता, और इसी के साथ ही आज का स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। जयराज का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं खेसारी लाल यादव, मासूम शर्मा और देव नेगी की। फिल्म का नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी।

गुंडे फिल्म के इसी गीत के साथ ही अब वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजने को है हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई

0: के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है लेकिन आपको ज्यादा मालूम है, हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
1: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है क्या इतना लोकप्रिय होता, कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे, इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी, इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के

0: रख पाए अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोलें सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आया ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साथ। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है।

0: गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
0: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। वेव्स है रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी, और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी, और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करें।
1: जी।
0: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के DG ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलोअप, उसने कहा क्या फॉलोअप, आपने कहा था गोवा CM डेड, उसका फॉलोअप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उस समय भी ऐसा होता था। पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो TV के चैनल्स हैं उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम TV के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो

0: अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
1: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है
1: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे
0: जी।
1: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए।

0: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
1: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों
0: जी
1: को,
0: पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा, सबने,
1: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
0: हाँ।
1: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
0: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया लेकिन

0: साल पहले, 35 साल पहले, बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैटर रिकॉर्ड हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
1: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना
0: जी कीजिए,
1: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे
0: जी।
1: और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहे।

0: समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे। और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी। और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहां से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए, टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ। तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए, हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत

0: गहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजो कर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं 12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंजन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछना चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।

0: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला ही है और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ।
1: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
0: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं
1: अच्छा
0: उसके लिए मैं उनको
1: अच्छा
0: धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
2: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का, वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था, उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
3: जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
2: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय है। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
4: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में, सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति।
4: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
1: बिल्कुल।
4: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो,
4: तो
1: रेडियो
4: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर
1: सकता।
5: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
5: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे।
1: अच्छा।
5: सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
6: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
2: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी

0: रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है
0: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि मन ने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
2: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
5: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

0: और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में एक

0: सौ औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले

0: ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
1: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Though every medium, Akashvani,
1: has
0: continued to provide news, information and entertainment in the voices of people living in every corner of the country.
2: Samachar, Suchnaye aur Manoranjan Akashvani deti rahi.
3: India recorded the biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. India ended their campaign at the inaugural World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Barraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हसूल में अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपये तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने

0: हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। NTA ने वाजह किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट UG का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में NTA ने 12 मई को मनसूख कर दिया था। CBI इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
2: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़िराअत से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर्स है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और DMK ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
4: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
2: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए BJP तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
5: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
2: भारत ने मगरबी एशिया में ताजा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि ये ताज़ा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वजारत ने सब सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की भी अपील की ताकि खत्े में अमन इस्तेकाम फिर से कायम हो सके। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिज़ाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में जंग बंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सिफारतखाने ने भी ताज़ा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। भारतीय

खाने ने ये सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफ़र के दस्तियाब वसाइल से ईरान से चले जाएं। कॉमर्स और सनतों के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने आज मुल्क भर के 100 सनती पार्कों की तरक्की में तेज़ी लाने के मकसद से भव्य पोर्टल का आगाज़ किया। नई दिल्ली में इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भव्य पोर्टल का मकसद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ मरबूत सनती इको निज़ाम, काबिल एतबार यूटिलिटी निज़ाम, डिजिटल हुक्मरानी मैकेनिज़म, कारकुन इमदादी बुनियादी ढांचा और पायदार तरक्की खसूसियात तश्कील देना है। जनाब गोयल ने कहा कि यह पहल सरमायाकारी के लिए तैयार सनती बुनियादी ढांचे की तश्कील के जरिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले कदम की अक्कासी करती है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में खास खास खबरें।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और साथियों कार्यक्रम में गीत संगीत और ईमेल्स और भी शामिल किए जाएंगे। फिलहाल आप सुनिए एक आवश्यक सूचना। यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 10:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं, आपके सवालों के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। हमारा फोन नंबर एक बार जरूर नोट करें जो कि है 0522-2238-845 और साथ ही एक और नंबर भी नोट करें 0522-2238-852। सही जानकारी बेहतर स्वास्थ्य आकाशवाणी के साथ। तो सुनना ना भूलें हमारा ये विशेष कार्यक्रम FM रेनबो पर।

और साथियों कार्यक्रम में अभी वक्त हो गया है 9:37 और जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के पहले ईमेल को जो कि हमें आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप जी ने ये हमें ईमेल भेजा है। साथ ही कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी ने हमें ये मेल भेजा है और ये सुनना चाहते हैं सरगम फिल्म का गीत। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

साथियों, एक शानदार गीत की फरमाइश के बाद हम वापस आ चुके हैं कार्यक्रम में। और साथियों, आपको बता दें कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि भावनाओं का भी साथी रहा है। कभी सुबह की खबरें, कभी शाम के गीत, तो कभी त्योहारों की विशेष प्रस्तुतियां। आकाशवाणी हर घर की पहचान रहा है। और देखिए, हम तक एक प्यारा मैसेज आ चुका है एक गाने की फरमाइश के साथ। और ये मैसेज हमें ईमेल के जरिए भेज दिया है किसान रेडियो क्लब से, ग्राम पोस्ट ललोहा, जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम शिखा, ऋचा गुड़िया, राजेश कुमार और विजय पांडे जी ने। और ये लिखते हैं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आपको और आपके समस्त आकाशवाणी परिवार को, समस्त श्रोता भाई बहनों को, जितने भी लिसनर्स हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इन्होंने भेजी हैं। तो हमारी ओर से भी हम आप सभी लिसनर्स को, जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमें ईमेल्स भेजते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं, उनको हमारी ओर से भी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आपकी पसंद का ट्रैक सुनवा देते हैं। आपने सुनने की फरमाइश करी है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को फिल्म जंगली में।

दोस्तों आज की इस विशेष कार्यक्रम में आप हमसे जल्दी जल्दी ईमेल करके बता दीजिए आपकी अपनी आकाशवाणी या रेडियो से जुड़ी प्यारी प्यारी सी यादें। और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। फिलहाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को, जो कि हमें लिख भेजा है जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु राम शंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्य राम सागर साहू रसूलपुर वाले मिर्जा इमरान बेग। और ये सब सुनना चाहते हैं देखा प्यार तुम्हारा फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

मैं आप सबका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। साथियों, 90 वर्षों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने सिर्फ संगीत ही नहीं सुनाया बल्कि समाज को जागरूक भी किया है। कृषि हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर कार्यक्रमों ने लोगों के जीवन को दिशा दी। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये यात्रा, ये सफ़र, ये 90 वर्षों का सफ़र कैसा रहा। तो हमें जल्दी से ईमेल करके अपने बारे में अपनी कुछ यादें साझा करिए। आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर ईमेल करके, और साथ ही सुनिए आपके फरमाइशी गीत भी। कबीर रेडियो श्रोता संघ से आ चुका है हमारा आज का अगला ईमेल, डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से। और ये ईमेल हमें लिख भेजा है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा राधिका और प्रभा देवी तामुरिया ने। और भाई, कार्यक्रम में वक्त बहुत तेजी से क्योंकि भाग रहा है, तो जल्दी से एक और ईमेल को भी शामिल कर लेते हैं जो कि हमें आया है छत्रपति संभाजी नगर से। और इसे हमें लिख भेजा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश जी ने। और आपको हम सुनवाते हैं जीत फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। हमें ऐसे ही ढेर सारे ईमेल करते रहिए और साथ में अपनी स्टोरी आकाशवाणी को ले करके ज़रूर साझा करिए।

दोस्तों, बदलते दौर में तकनीक बदली, लेकिन रेडियो की आत्मीयता आज भी वैसी ही। यही वजह है कि रेडियो आज भी दिलों के करीब है। कहते हैं, आवाज दिखाई नहीं देती लेकिन दिल तक जरूर पहुंचती है। और श्रोताओं, आकाशवाणी ने देश के कोने कोने की आवाज को मंच दिया है। नई प्रतिभाओं की पहचान दिलाने में इसकी भूमिका हमेशा याद रहेगी। इसी खूबसूरत सफर को सलाम करते हुए पहुंचते हैं हमारे आज के अगले ईमेल की ओर। और ये ईमेल हमें आया है नथाना पंजाब से, जिसे कि लिख भेजा है हरजिंदर छिंद्रा, जसवीर जस्सी और सीता गीता जी ने। और ये सुनना चाहते हैं हीना फिल्म का गीत। तो लीजिए, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

तो दोस्तों अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की इस विशेष प्रस्तुति में साथ देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है संगीत और यादों का ये सफर आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आपका प्यार यूं ही बना रहेगा। मुझे यानी मीनू को दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। और श्रोताओं, अब समय है एक आवश्यक सूचना का। यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है, तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सका है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं, आपके सवालों के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना न भूलें आकाशवाणी पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। और जल्दी से हमारा अपना जिज्ञासाएं, अपने सवालों को पूछने के लिए हमारा जल्दी से फोन नंबर नोट कर लें, जो कि है 0522-2238-845। और एक और नंबर भी है जिस पर कॉल करके आप जान सकते हैं अपनी समस्याओं का हल, तो वो नंबर है 0522-2238-852। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ। तो सुनना ना भूलिएगा दिन बुधवार दिनांक 10 जून सुबह 11:00 से FM रेनबो पर। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:00 हैं और अब प्रस्तुत है रूपक।
1: प्लास्टिक की भयावहता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया ये रूपक विकल्पों के द्वार। आलेख कीर्ति श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर नवनीत मिश्र और कुमकुम धर, प्रस्तुत करता है अतीश कुमार श्रीवास्तव।
2: सन 1907 दुनिया में पहली बार एक ऐसी चीज का आविष्कार हुआ जो न गल सकती थी, न सड़ सकती थी, न हजार वर्षों तक नष्ट हो सकती थी, और कीमत महज चंद सिक्के। तब शायद खुशी की कोई सीमा न रही होगी, ऐसा लगा होगा जैसे दुनिया जीत ली।

0: आप जानना चाहेंगे वो आविष्कार क्या था?
1: वो आविष्कार था प्लास्टिक, जिसने आज इतने सालों में दुनिया को कचरे के ढेर पर बिठा दिया है। हमारे महासागरों में प्लास्टिक के अरबों खरबों टन कचरे ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। अगर ये इसी गति से बढ़ता रहा तब शायद हमारी सांसें भी खुल जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में बहने वाले छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव ही बनाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तब वो दिन दूर नहीं जब समुद्र की सतह पर प्लास्टिक की मोटी परत जमने से सूरज की रोशनी इनके पास तक नहीं पहुंच पाएगी और रोशनी के अभाव में ये पौधे नष्ट हो जाएंगे। पूरी दुनिया के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा।
2: अब समय बैठकर चिंता करने का या रोने का नहीं है, बल्कि त्वरित गति से विकल्पों को तलाश कर उन्हें अपनाने का है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्लास्टिक के बहुत से विकल्पों पर काम हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक इस तरह से हमारी जिंदगी में रचा बसा है कि इससे पूरी तरह से निजात पाने के लिए हमें प्रबल इच्छा शक्ति दिखानी होगी, संवेदनशील बनना पड़ेगा।
0: आवश्यकता है नए नजरिए के साथ पुरानी परंपराओं को अपनाने की, अतीत में झांकने की, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं के समाधान हमें वही मिलेंगे। और यकीन मानिए आज के समय में प्लास्टिक के जो भी विकल्प सामने आ रहे हैं वो सब हमारी उसी पुरानी जीवन शैली का आधुनिक रूप है जो कि विज्ञान और तकनीक के संयोजन से गढ़े जा रहे हैं।
2: आपको याद है

0: वो जूट के भारी भरकम बोरे अनाज और सब्जियां रखने के लिए इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माना कि इधर बहुत सालों से प्लास्टिक के बोरों का भी इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन फिर भी अपनी उपयोगिता के कारण ही जूट के बोरे पूरी तरह से कभी गायब नहीं हुए और आज वही जूट नए रंग रूप में सजकर हमारे पास आ रहे हैं। मॉल में, बाजारों में जूट के बैग और थैले बिक रहे हैं। ये वाकई एक सुखद अनुभूति है।
1: हाँ, लेकिन तब और ज्यादा अच्छा लगेगा जब हर व्यक्ति घर से निकलते समय अपने साथ एक जूट का या कपड़े का थैला रखने की आदत विकसित करे, जैसे कि पुराने समय में बड़े बुजुर्ग करते थे। फिर आप कोई भी सामान खरीदें, आपको दुकानदार से पन्नी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: लेकिन अब जूट सिर्फ थैले तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आधुनिक रूप में बहुत सारे चोले ओढ़ कर आया है और सब पर्यावरण के हितैषी हैं, चाहे वो जूट से बने सैंडल हों या लैपटॉप और मोबाइल कवर्स या घर सजाने का सामान, ज्वेलरी, यहाँ तक कि कूरियर के लिफाफों में जो जाली लगी होती है वो भी जूट से बनी होती है।
1: वर्तमान समय में पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए नदियों के किनारों पर जूट की मोटी चटाई बिछाई जा रही है। जूट की चटाई की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ समय बाद मिट्टी में घुलकर खाद बन जाती है और जूट से बने सारे उत्पाद बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
0: अब हम बात करते हैं अपने रसोई घर की, जहां पर खाने के सामान से ज्यादा तो प्लास्टिक का सामान है, लेकिन अब सरकार और जागरूक लोगों के द्वारा भी इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत से स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो बहुत ही आकर्षक रूप में हर साइज और डिजाइन में स्टील, कांच, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।
1: अगर हम कांच के बर्तन में खाना खाते हैं तो ये अपने किसी भी रसायन को भोजन में मिलने नहीं देता, इसलिए भोजन पूरी तरह शुद्ध रहता है। अपने अक्रिय गुण के कारण ही कांच हमारी रसोई के लिए बहुत उपयोगी है। अब अगर हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों की बनावट सूक्ष्म रूप से छिद्रपूर्ण होती है। मटेरियल साइंस के अनुसार ये भोजन के एसिडिक स्तर यानी कि पीएच लेवल को प्राकृतिक रूप से संतुलित रखती है। समय की मांग के अनुसार मिट्टी के बर्तन भी आधुनिकता के साचे में ढल गए हैं। आज इनके विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बिना बिजली वाला फ्रिज, वाटर कूलर, प्रेशर कुकर, वाटर बॉटल और भी बहुत सारे रूप।
0: इन बर्तनों का इस्तेमाल करना हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्टील और कांच दोनों को हजारों बार रिसाइकिल करके नए रूप में ढाला जा सकता है, तब भी उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। जब हमारी रसोई के लिए हमारे पास इतने स्वास्थ्यप्रद और पर्यावरण हितैषी विकल्प मौजूद हैं, तब हमें प्लास्टिक को गुडबाय कह देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान देने योग्य है, हम खाना रैप करने के लिए अल्युमिनियम फॉइल, क्लिंग फिल्म्स, प्लास्टिक कोटेड बटर पेपर यूज करते हैं या बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो भी प्लास्टिक के डिब्बे में आता है। ये भी स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं है।
1: लेकिन अब इनके विकल्प भी बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारी परंपरागत भारतीय रसोई में रोटी को सूती कपड़े में लपेटकर बर्तन में रखा जाता था। अब विज्ञान और तकनीक के मेल से इसका रूप आधुनिक हो गया है, जिसे बीज वैक्स रैप का नाम दिया गया है। जब सूती कपड़ों के टुकड़ों को मोम, राल यानी प्राकृतिक रेजन और जोजोबा ऑयल के मिश्रण में डुबोया जाता है, तब कपड़ा एक ऐसी त्वचा के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसमें अगर आप खाना रैप करें तब ये प्लास्टिक की तरह खाने से चिपक जाता है और खाने को फ्रेश भी रखता है। इन्हें काफी लंबे समय तक धोकर सुखाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने देश में ये तकनीक काफी लोकप्रिय हो रही है, कई स्टार्टअप इसे बना रहे हैं। ऑनलाइन साइट्स पर भी ये खरीदी जा सकती हैं। फ्रिज में फल सब्जियां रखने के लिए कॉटन की जालीदार थैलियां भी मार्केट में आ गई हैं। कॉटन के पोटली, बैग और पाउच भी बन रहे हैं। आजकल प्रीमियम ब्रांड्स के गहनों, जूतों और कपड़ों की डिलीवरी में इनका काफी यूज हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बने सैनिटरी पैड्स और दोबारा इस्तेमाल होने वाली बेबी डायपर्स भी बाजारों में अपनी दस्तक दे चुके हैं, जो त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित है।
0: अगर वास्तव में समस्याओं का समाधान खोजने की इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। हमारे देश के तटीय शहरों में सदियों से पत्तलों में खाना खाने की परंपरा रही है। केले के पत्ते, पलाश के पत्ते, सुपारी के पत्ते और साल के पत्ते, इन पत्तों में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण

0: करेगी। पलाश और केले के पत्तों में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जब इनमें खाना गर्म सर्व किया जाता है तब इसके पोषण तत्व खाने में मिलकर खाने के स्वाद को बढ़ा देते हैं। देश के बहुत से युवा इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। विज्ञान और तकनीक का प्रयोग कर इन पत्तों को आधुनिक रूप में ढाला जा रहा है। पत्तों को सुखाकर इन्हें हाइड्रोलिक हीट प्रेस मशीनों के जरिए डिस्पोजेबल बर्तनों का रूप दिया जा रहा है। आजकल शादी और पार्टीज में प्लास्टिक के स्थान पर ज्यादातर इन्हीं पत्तों से बने डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है और भी बहुत से उपयोगी सामान बन रहे हैं। पहले केले की फसल कटने के बाद उसके तने को बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इस तने के कचरे से मजबूत कार्डबोर्ड, कूरियर बैग, एग ट्रे और पेपर बैग्स बन रहे हैं। सुपारी के पत्ते जब सूख कर पेड़ों से गिर जाते हैं तब इनके निचले हिस्से का इस्तेमाल करके बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी, फूड पैकेजिंग बॉक्स, मिठाई, फल और होटल का खाना पैक करने वाले कस्टमाइज्ड डिब्बे बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन्हें इस्तेमाल के बाद मिट्टी में फेंक दिया जाए तो ये बस कुछ ही हफ्तों में गलकर खार बन जाते हैं।
1: सच में प्रकृति ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संतुलन स्थापित कर रखा था। हम इंसानों ने ही प्रकृति से छेड़छाड़ करके असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर दी है, लेकिन अब समय है अपनी भूल को सुधारने का, वातावरण को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का। इस दिशा में हमारे देश के जागरूक युवा प्रयास कर भी रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ युवा उद्यमियों से जिनका ध्येय व्यवसाय द्वारा सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है बल्कि दुनिया को प्लास्टिक मुक्त बनाना है।
2: मैं अंजलि सिंह, संस्थापक हूँ जूट फॉर लाइफ की। और आज जब पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रही है तब हम सभी की जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट के अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। इसी सोच के साथ वर्ष 2009 में जूट फॉर लाइफ की हमने शुरुआत की। हमारे द्वारा निर्मित जूट बैग, जूट ज्वेलरी, गृह सच्चा उत्पाद और अन्य विविध उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुँच रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी कारीगरों द्वारा बनाई गई राखियां भी अयोध्या में रामलला तक पहुँच चुकी हैं। जूट फॉर लाइफ ने पिछले वर्षों में तकरीबन 7,500 से अधिक महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। तो आइए आज हम सब मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर जूट और अन्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपनाने का संकल्प लेते हैं।
3: मेरा नाम राकेश शुक्ला है, मैं सिहोरा जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। लकड़ी की मैं कंघी बनाता हूँ और बनवाता हूँ। जब कोरोना के बाद मेरे बाल झड़ने लगे थे तो मैंने विकल्प तलाशने की कोशिश की। जब ध्यान आया कि 50 साल या 40 साल पहले हम लकड़ी की कंघी से हमारे यहाँ कंघी होती थी, तो फिर मैंने उस विकल्प को ढूंढा और जो उनको बनाने वाले को ढूंढा और फिर उनसे बनवाया और खुद भी बनाया, तो लकड़ी की कंघी का इस तरीके से पुनर्जीवन मेरे हाथ हो गया। मैं प्राकृतिक चीजों में काम करता हूँ। तुलसी अर्क बनाता हूँ, ब्राह्मी का अर्क बनाता हूँ, हल्दी का अर्क बनाता हूँ, मिट्टी का इत्र बनाता हूँ। अच्छी चीजों का रिस्पांस सकारात्मक होता है और प्राकृतिक चीज का आप कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी ही मिलती है। मेरा ऐसा अनुभव पिछले 5-6 साल में रहा है।
0: सही मायनों में देश का भविष्य देश के युवाओं के हाथों में है। हमारे देश के युवा इतने संवेदनशील, इतने जागरूक हैं कि अब हम अवश्य ही निकट भविष्य में एक प्लास्टिक मुक्त दुनिया का सपना देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बायोप्लास्टिक के बारे में, जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग में हमारा प्रमुख हथियार है। बायोप्लास्टिक दो प्रकार से बनता है, पहला PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, दूसरा PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्किनोइड। PLA बायोप्लास्टिक नवीकरणीय जैविक स्रोतों जैसे कि मक्का, गन्ना, आलू के स्टार्च से बनाया जाता है। सबसे पहले इनका स्टार्च निकालकर ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, फिर विशेष बैक्टीरिया द्वारा इनका फर्मेंटेशन कराया जाता है जिससे लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड के अणुओं को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आपस में जोड़कर एक लंबी चेन बनाई जाती है, इसे ही PLA यानी पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। और दूसरा PHA बायोप्लास्टिक जिसे कि बैक्टीरिया वाला प्लास्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष जीवाणुओं को गन्ने के रस या वनस्पति तेल पर पाला जाता है। ये बैक्टीरिया जब इस भोजन को पचाते हैं तब अपनी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा को एक प्राकृतिक पॉलीमर के रूप में एकत्र कर लेते हैं। बाद में इन्हीं कोशिकाओं को तोड़कर शुद्ध PHA बायोप्लास्टिक निकाल लिया जाता है। भारत में इन दोनों बायोप्लास्टिक का निर्माण कृषि और उद्योगों से निकलने वाले कचरे से होता है। चीनी मिलों से निकलने वाली गन्ने की खोई, शीरा और देश में जो फसलें और सब्जियां खराब हो जाती हैं उनके वेस्ट स्टार्च का इस्तेमाल बायोप्लास्टिक बनाने में हो रहा है।
1: पूरी

0: विश्व में बन रहे बायोप्लास्टिक के लगभग 41% भाग का उपयोग सिर्फ पैकेजिंग उद्योग में ही हो रहा है। भारत में भी कंपोस्टेबल शॉपिंग बैग, फूड पैकेजिंग, बॉटल्स का निर्माण बड़ी मात्रा में हो रहा है। पैकेजिंग के अलावा भी सिंगल यूज कटलरी, स्ट्रॉ, नर्सरी में इस्तेमाल होने वाले छोटे गमले और खेतों में नमी बनाए रखने और खरपतवार रोकने के लिए बिछाई जाने वाली मल्चिंग शीट्स का भी निर्माण हो रहा है। अच्छी बात यह है कि फसल काटने के बाद इसे हटाने की जरूरत नहीं होती। मेडिकल क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो रहा है। शरीर के अंदर लगने वाले टांके और दवाइयां पहुंचाने वाली प्रणालियां जो समय के साथ खुद ब खुद शरीर में घुल जाती हैं, सब बायोप्लास्टिक से बन रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी बायोप्लास्टिक धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। मोबाइल कवर, कीबोर्ड के पार्ट्स और हेडफोन के बाहरी हिस्से और गाड़ियों के निर्माण तक में बायोप्लास्टिक का यूज हो रहा है, जैसे कि डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स, कार की सीटों के कवर इत्यादि। लेकिन इसमें मुख्य रूप से टिकाऊ और मजबूत बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है।
1: यहाँ पर एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है, पहले बायोप्लास्टिक व्यावसायिक रूप से अधिक स्थापित और सस्ता है, इसीलिए बाजार में दिखने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट इसी से बनते हैं, जबकि पीएचए बायोप्लास्टिक का उत्पादन बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण काफी महंगा होता है। इसका उपयोग अभी उस क्षेत्र में ही अधिक किया जाता है जहां उत्पादन का प्राकृतिक रूप से जल्द ही नष्ट होना आवश्यक हो, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में खुलने वाले टांके, दवा पहुंचाने वाले कैप्सूल आदि। पीएचए बायोप्लास्टिक से बनती है।
0: अब चलते हैं अपने खेतों की तरफ, जहां हर वर्ष हम लाखों टन पराली जलते हुए और उसके धुएं से अपने शहरों को प्रदूषित होते हुए देखते आए हैं। लेकिन अब हमें यहाँ भी एक सुखद एहसास की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। सरकार के सहयोग से हमारे देश के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, जो खेती के कचरे को बायो कंपोजिट तकनीक के जरिए महत्वपूर्ण उत्पादों में परिवर्तित कर रहे हैं। गेहूं और चावल की भूसी से बनी होती है। थर्मोकोल जैसे कुशनिंग पैड्स बनाए जा रहे हैं, जो भारी सामान की पैकेजिंग और सुरक्षित डिलीवरी के क्षेत्र में बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। गेहूं की भूसी और चावल के छिलके के गूदे से शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल बर्तन बन रहे हैं, जो पूरी तरह वाटरप्रूफ और माइक्रोवेव सेफ होते हैं। साथ ही मजबूत बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। गेहूं की भूसी के पाउडर में प्राकृतिक रेजन को मिलाकर, जैसे कि लंच बॉक्स, चाय के कप, बच्चों के सिपर और पानी की बोतलें और मोबाइल कवर भी बन रहे हैं। ये सभी उत्पाद दिखने में बेहद आकर्षक हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी और ऑफिस प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। फाइल, फोल्डर, डेस्क ऑर्गेनाइजर, क्लिप बोर्ड और पेपर वेट जैसे उत्पाद अब राइस हस्क कंपोजिट से बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे पेन भी मार्केट में आ रहे हैं जिनकी बाहरी बॉडी गेहूं की भूसी से बनी होती है। ये सब उत्पाद बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। इन उत्पादों की सबसे सुंदर बात ये है कि जब इनका जीवन चक्र पूरा होता है, ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी के ही हो जाते हैं।
1: निर्माण के क्षेत्र में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। चावल की भूसी को रिसाइक्लेबल प्लास्टिक या बायोपॉलीमर के साथ मिलकर WPC बोर्ड बनाए जा रहे हैं, जिनका उपयोग दरवाजे, खिड़कियों के फ्रेम, आउटडोर फ्लोरिंग और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ये वाटरप्रूफ और दीमक रोधी होते हैं। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इन निर्माण से जुड़े उत्पादों को बनाने में रिसाइक्लेबल प्लास्टिक और बायोपॉलीमर का भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सीधे मिट्टी में डालने से नष्ट नहीं होंगे। इन्हें नष्ट करने के लिए इन्हें औद्योगिक कंपोजिट प्लांट तक ले जाना होगा।
0: हमें इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक ही हमारे और हमारे वातावरण के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि प्लास्टिक का हर रूप विनाशकारी है। इसके बारे में बता रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर जी।
2: अभी कुछ महीने पहले मैंने माइक्रोप्लास्टिक पर एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया था, तो जिसको रेफर करते हुए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ही वॉज वेरी हैप्पी। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हैं कि प्लास्टिक से संबंधित सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अभी वास्तव में इस बात से ऐसा लगता है कि हमें प्लास्टिक के बारे में जानकारी ही नहीं है। हम किस तरह से एक प्लास्टिक एज में जी रहे हैं। आप सरप्राइज होंगे कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से प्लास्टिक हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पहुंच रहा है।
3: प्लास्टिक की जो

0: असल प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक का यूज है। प्लास्टिक का एक गुण है कि एक प्लास्टिक की बोतल में पानी लिया हुआ है आपने, थोड़ी देर बाद उसके माइक्रोन और नैनो साइज के कण जो है पानी में माइग्रेट कर जाएंगे अपने आप, और अगर पानी गर्म हो जाए तो ये क्रिया तेज हो जाएगी, और अगर पानी एसिटिक है या कोरोसिव है तो ये क्रिया और तेज हो जाएगी। मान लीजिए हमें ये ज्ञान हो गया कि भाई प्लास्टिक बहुत खराब चीज है, तो हम जब प्लास्टिक को जो है डिस्कार्ड करते हैं तो अपने घर से बाहर निकाल देते हैं उसको, लेकिन जो प्लास्टिक आप अपने घर की सफाई से घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, जब लौटता है तो आपके घर में नहीं लौटता, वो आपके ब्लड में लौटता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक शुरू शुरू में बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे रखे हुए वो अपने आप सूरज की रोशनी में आकर के वो ब्रिटल हो जाता है और टूटता है, और टूटते टूटते वो नैनो और माइक्रोन साइज का हो जाता है। तो जब बारिश होती है तो ये बहकर हमारे नदियों में चला जाता है, नदियों से हमारे समुद्र में चला जाता है, और ये नैनो साइज के और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि जब वेपोराइजेशन होता है तो ये वेपर के साथ बादलों में चले जाते हैं और सुदूर हमारे ग्लेशियर्स में, हमारे पहाड़ों में, हमारे जो है फॉरेस्ट में, वहां जाके बरस जाता है। तो ऐसी जगह पर भी नैनो और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक पहुंच गए हैं। डुंड्रा से लोग आए थे, वो साइबेरिया से मेरे पास, कि यहां पर माइक्रोप्लास्टिक कैसे आ गया, यहां पर तो ह्यूमन रहता नहीं। अब समुद्र का पानी खारा हो तो उसमें अगर कोई प्लास्टिक किसी भी रूप में जा रही हो तो टूट करके उसको नैनो और माइक्रोन साइज की होनी है। और कई प्लास्टिक ग्लोमरेट मैंने डिस्कवर किया था अंडमान में, जो पहाड़ी चट्टान का रूप ले लिया था, वहां पर जो कैल्सिफाइड जो रॉक्स थे उसमें मिक्स होकर के रॉक का रूप ले लिया, पहाड़ी का रूप ले लिया था जो है प्लास्टिक का। हमारा जो फूड चेन है उसकी जो सबसे पहले स्थान पर एल्गी हो, तो जो समुद्री जीव होते हैं वो एल्गी को खाते हैं, तो ये जो प्लास्टिक है इतना छोटा है कि वो उसी एल्गी में इन्वॉल्व हो गया है, तो वो उनके शरीर में, उनके ब्लड में ये पहुंच जाता है। तो जो ऊपर वाला जीव है वो जब उसको खाता है तो उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो इस तरह पूरी फूड चेन में ये पहुंच गया है, सबसे खतरनाक बात। अब आपने जो बाहर फेंका, अब वो बारिश में भी चला गया, आपके ग्राउंड वाटर में भी चला गया, जब आपके पीने का पानी आया आपके टेबल पे जो है आपके खाने के प्लेट में पहुंच गया, वो ये इतना खतरनाक है।
1: अब ये समय है जब हमें शर्मिंदा होना चाहिए और रुक जाना चाहिए।
2: डॉक्टर अजय सोनकर की बातें सुनकर आप जरूर समझ गए होंगे कि प्लास्टिक हर रूप और हर अंश में कितना घातक है। प्लास्टिक के सभी विकल्पों को अपनाकर ही हम एक प्लास्टिक मुक्त दुनिया बना सकते हैं। वास्तव में हमारी समृद्ध विरासत में जीवन को सही ढंग से जीने के लिए हमेशा से इतना कुछ रहा है कि अगर हम खोजने निकले तो शायद नए कीर्तिमान कर लेंगे। हम बात करते हैं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे बांस के बारे में। वैज्ञानिक इसे कोई पेड़ नहीं बल्कि घास की एक प्रजाति मानते हैं। बांस को काटने के बाद दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपनी जड़ों से स्वतः उगाता है। ये पारंपरिक पेड़ों की तुलना में 10 गुना अधिक बायोमास यानी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करता है और पारंपरिक पेड़ों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ता है। बांस स्टील जितना ही मजबूत होता है। अभी तक घरों और होटलों में पीवीसी के वॉल पैनल, सोफा, कुर्सी आदि बनते रहे हैं, लेकिन अब बांस के रेशे और बायोरिजिन को मिलाकर बनाए गए सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, अलमारी, डिजाइनर लैंप और घर सजाने के सामान भी बन रहे हैं। बांस के रेशे से ही टूथब्रश, होटल कटलरी, रिजुरेबल स्ट्रॉ, बांस के रेशे से बने कपड़े और हल्के वजन वाले मोबाइल और लैपटॉप कवर भी बन रहे हैं। बांस में भारी धातुओं और हानिकारक रसायनों को सोखने की क्षमता होती है, इसीलिए कारखानों के प्रदूषित पानी और सीवेज के पास बांस के पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये पानी में मौजूद नाइट्रोजन या फास्फोरस को अवशोषित कर पानी को शुद्ध रखते हैं। इसलिए बांस की खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये हमारे हवा पानी को शुद्ध रखेंगे और दूसरी तरफ इनके उत्पाद बनाकर हम प्लास्टिक मुक्त भी रह सकेंगे।
3: भारत के तटीय नगरों में नारियल का कचरा बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है। अब यही नारियल का छिलका मानवता के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि प्लास्टिक और थर्माकोल को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो वेस्ट नारियल पानी और बैक्टीरिया की मदद से चमड़े जैसे बायोडिग्रेडेबल उत्पाद बना रहे हैं। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ, लचीला और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इस मटेरियल से बैग, पर्स, वॉलेट, जूते, सैंडल, बेल्ट, घड़ी के स्ट्रैप, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जैसे कि पासपोर्ट होल्डर, कीचेन, लग्जरी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए

0: बॉक्स कपड़ों पर लगाने वाले स्टिकर बनाए जा रहे हैं। इस मटेरियल की खासियत ये है कि इस्तेमाल के बाद जब इसे फेंका जाता है तब ये मिट्टी में मिलकर 60 से 90 दिनों में पूरी तरह डीकम्पोज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नारियल के छिलकों से निकलने वाले मजबूत रेशों में प्राकृतिक रीजन या सिंथेटिक रीजन को मिलाकर मजबूत शीट बनाई जाती है। इसमें दीमक भी नहीं लगती और यह पानी और नमी को सोख लेती है। हमारे घरों में जो कॉयर मैट्रेसेस यानी कि नारियल की जटा वाले गद्दे इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें इन्हीं शीट्स का यूज होता है। आज के समय में प्लाईवुड के विकल्प के रूप में इनका इस्तेमाल अलमारी के दरवाजे और केबिन के पार्टीशन बनाने में हो रहा है। कारों और बसों की सीटों में कुशनिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। नारियल की जटाओं से सुंदर गमले भी बनते हैं और इनके सख्त छिलकों को तराश कर कस्टमाइज कटोरे भी और हमारे घरों की सजावट के लिए सुंदर आर्ट पीस भी। सच में बड़े कमाल का है ये छोटा सा नारियल का गोला। केरल की एक कंपनी नारियल के छिलकों से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है और ऑनलाइन साइट्स पर भी नारियल से बने प्रोडक्ट मिल रहे हैं।
1: अब हम बताने जा रहे हैं मशरूम माइसेलियम के बारे में, जो कि वास्तव में मशरूम की जड़ों का एक पूरा जाल होता है। जब इसमें धान का भूसा या लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है तब ये कुछ दिनों में ही उस कचरे को जकड़कर एक बेहद मजबूत लेकिन हल्के ढांचे के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो कि भारी सामानों की पैकेजिंग के क्षेत्र में थर्माकोल का एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं बल्कि इस उत्पाद से लेदर जैसे जैकेट और वॉलेट भी बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम इसे तोड़कर मिट्टी में डाल देंगे तो ये कुछ ही हफ्तों में खाद बन जाएगा।
0: अभी तक हमने उन विकल्पों और तकनीकों के बारे में बताया जिनका की व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। अब हम उन विकल्पों और तकनीकों के बारे में बताएंगे जो अभी या तो अपने प्रारंभिक स्तर पर हैं या जिन पर अभी प्रयोग हो रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ जंग में अब समुद्र भी हमारा साथ दे रहा है। जी हाँ, सी वीड यानी कि समुद्री घास और काई जिनके अंदर एल्गिनेट और कैरेगीगन जैसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और इनका ही उपयोग करके ऐसी पतली झिल्लियाँ बनाई जाती हैं जो पानी या जूस को होल्ड कर सकती हैं और जो पूरी तरह से खाने योग्य भी हैं। सी वीड से बने पॉलीमर से पानी के कैप्सूल बनाए जा सकते हैं। कचरा शून्य वातावरण का ये एक अच्छा उदाहरण है। सी वीड के साथ ही एल्गी यानी कि शैवाल का भी यूज हो रहा है। एरिजोना की एक कंपनी ने शैवाल से ऐसे जूते बनाए हैं जो अगर नदी में गिर भी जाए तो मछलियों का भोजन बन जाते हैं।
1: भांग की एक प्रजाति का नाम है हेम्प, जो आज के समय में प्लास्टिक का एक अच्छा विकल्प बनकर हो रहा है। हेम्प के मजबूत रेशों से हेम्प प्लास्टिक बनाया जाता है। इतना मजबूत होता है कि इससे कारों के बम्पर, बड़े बड़े डैशबोर्ड, निर्माण कार के ब्लॉक और भारी डिब्बे बनाए जाते हैं। लेकिन अपने देश में ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। यहाँ पर इससे बस कुछ लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज ही बनाई जा रही हैं। लेकिन हाँ, निकट भविष्य में इसके व्यापक स्तर पर उपयोग की बहुत संभावनाएं हैं।
0: स्कॉटलैंड और यूरोपीय देशों में मछली के प्रोटीन से चश्मों के फ्रेम, बटन और लग्जरी पैकिंग के डब्बे बनाए जा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की लैब में दूध से मिलने वाले केसीन नामक प्रोटीन से एक ऐसी पन्नी बनाने पर काम हो रहा है जो नॉर्मल प्लास्टिक की तुलना में 500 गुना बेहतर तरीके से ऑक्सीजन सोख ले। इसके अंदर पैक किया गया खाना खराब नहीं होगा और ये 100% खाने योग्य है। मतलब अगर इसमें सूप का मसाला पैक किया जाए और आप इसे गर्म पानी में डालें तो पन्नी पानी में घुलकर प्रोटीन बन जाएगी और सूप मिलने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा।
1: खुली आंखों से अगर दुनिया देखोगे तो हर तरफ चांदनी ही पाओगे, क्योंकि कुदरत ने इतना कुछ बिखेर रखा है धरती के दामन में हमारे लिए। तो अब बात करते हैं स्टोन पेपर तकनीक की, जो कैल्शियम और चूने से बनता है। ये कागज इतना सख्त होता है कि न तो फटता है और न गलता है। पानी के अंदर होने पर भी इस पर लिखा जा सकता है। भारत में अभी इस तकनीक की बस शुरुआत ही हुई है, लेकिन निकट भविष्य में इससे बहुत ही उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि लग्जरी डायरियां, टिकाऊ नोटबुक, कूरियर बैग, फील्ड वर्क के लिए वाटरप्रूफ डायरियां, कॉपियां, हैवी ड्यूटी शॉपिंग बैग्स, फूड रैपिंग पेपर्स, सेना के लिए वाटरप्रूफ मैप, ट्रेवलर के लिए वेदरप्रूफ नक्शे आदि बहुत से उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
0: आपने आइसोमॉल शुगर एल्कोहल के बारे में तो सुना होगा ना, जिसका उपयोग केक सजाने और फिल्मों में टूटने वाले नकली शीशे बनाने के लिए किया जाता रहा है, क्योंकि ये दिखता सिर्फ कांच जैसा है, इसमें धार या पैनापन नहीं होता।

0: होता है। लेकिन अगर इसमें प्राकृतिक एडिसिव जैसे कि लकड़ी के बुरादे को मिलाते हैं तो ये एक बेहद मजबूत और हल्का मटेरियल बन जाता है जो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा दिखता है। इसे बिना किसी केमिकल यूज के बार बार पिघलाकर नए नए उत्पादों में ढाला जा सकता है। वैज्ञानिक इसे डिस्पोजेबल बर्तन, पैकेजिंग सामग्री, होटल यूज की छोटी बॉटल जैसी चीजें बनाने के विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
1: सरकार के प्रयासों और समाज की भागीदारी द्वारा ही प्लास्टिक से जंग जीती जा सकती है।
0: अब जानते हैं पर्यावरण संरक्षक श्री कृष्णानंद राय के विचार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज को जागरूक बनाने में लगा दिया।
2: प्लास्टिक का तो निवारण है कि जैसे हम घर से चलते हैं तो मोबाइल चेक करते हैं, मोबाइल मेरे पास आया कि नहीं। ये देखना है हमको कि हमारे हाथ में कपड़े का झोला आया कि नहीं आया। एक बड़ा झोला में छोटे छोटे झोले भी आप रख सकते हैं, टमाटर के लिए, धनिया के लिए, मिर्चा के लिए। एक आदमी अगर सिपाही बन जाए पर्यावरण का कि हमें स्वच्छता अपनाना है, नदियों को बचाना है, तो आज सरकार की भी जिम्मेदारी है, जनता की विशेष जिम्मेदारी है। प्लास्टिक को लेकर के अभी महाकुंभ 2025 बीता था, उसमें मैं पूरा

0: लायक नहीं। ये देखना है हमको कि हमारे हाथ में कपड़े का झोला आया कि नहीं आया। एक बड़ा झोला में छोटे छोटे झोले भी आप रख सकते हैं, टमाटर के लिए, धनिया के लिए, मिर्चा के लिए। एक आदमी अगर सिपाही बन जाए पर्यावरण का कि हमें स्वच्छता अपनाना है, नदियों को बचाना है, तो आज सरकार की भी जिम्मेदारी है, जनता की विशेष जिम्मेदारी है। प्लास्टिक को लेकर के अभी महाकुंभ 2025 बीता था, उसमें मैं पूरा प्रयास किया। मैं तो बहुत दिनों से जिद बिगा रहा हूँ, झोला लेके जइहा बजरिया असाफर ही गौवा सहरिया, पोलोथीन से पटलवा नदी नाला नहरिया, तनी बदला आपन नजरिया, पर्यावरण स्वच्छता का लेला खबरिया, झोला लेके जइहा बजरिया साफ रही गौवा सहरिया, साफ रही गौवा सहरिया।
1: बहुत सुंदर विचार। अगर प्लास्टिक मुक्त देश बनाना है तो दादी का झोला वापस लाना ही होगा।
2: वास्तव में धरती में कचरा कुछ भी नहीं है।
1: हाँ, हर पदार्थ बस अपना रूप परिवर्तित करता है और हर रूप की अपनी उपयोगिता है।
3: अभी आप सुन रहे थे रूपक विकल्पों के द्वार। आलेख कीर्ति श्रीवास्तव का था। वाचन स्वर थे कुमकुमधर और नवनीत मिश्र। प्रस्तुतकर्ता अतीश कुमार श्रीवास्तव।
4: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निशांत खान का राग चांदनी कल्याण में सितार वादन।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को

2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन में?
1: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन। पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
0: जी,
1: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
0: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
1: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो
0: जी।
1: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू किए, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश किए। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
0: जी,
1: कोई भी स्कीम हो।
0: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के

0: किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है।
1: जी
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं। हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद, और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज
1: जी
0: तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना, और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो, जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन
1: हाँ
0: जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए, और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो
1: जी
0: इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी
1: हाँ
0: नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरू बात होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं,
1: जी
2: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस, और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्व

0: महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनील जी, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश

0: उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है, या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन, 2.5 टाइम्स इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड, एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है,
1: जी
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में।
1: जी
2: नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: सो
2: पैक
1: पैक्स जो
2: से
1: आप कह रहे हैं कि
2: अपेक्स का
1: प्राइमरी
2: अप्रोच,
1: एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
2: क्रेडिट सोसाइटीज। जी
1: जी
2: बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में, अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक
1: जी
2: तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
2: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं, इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन

0: मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में, और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये
1: जी
0: तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए। ये
1: जी
0: फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
1: जी
2: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?

0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है पीयूष को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं, और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती हैं और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का, तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 इयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
0: सी, फर्टिलाइजर इन इंडिया इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट यूरिया पर्टिकुलरली। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट रेज्ड द प्राइस फॉर पास्ट टू डिकेड्स और सो, एंड यूरिया करेंटली इज अवेलेबल एट 267 रुपीज पर बैग ऑफ 45 केजी। लास्ट इंटरनेशनल प्राइस एट व्हिच इंडिया बॉट यूरिया वाज $954 पर टन। So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range,
1: right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: मीडियम वेव 401.6।

947 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं और अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।